लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

हो न जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो न जब

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: system that is love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: just smack them back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: बच्चे ने तो बाहर ही जाना है। अब ये आपको पता होगा कि टॉस्टोप में जनवरी में एक केस हुए थे जहां पे बच्चों ने एक दूसरे को मारा था, नीचे हुआ था। वो 16 साल
1: जी
0: का लड़का है, उसको भी रिलीज कर दिया हुआ। और उसके वालदेन है कि जो एडवाइजर थे और जो वो एडवाइजिंग टीम थी उनका मुझे पता था। उसने कहा हम माँ बाप को जा बताते थे कि हमारी हेल्प करो अपने बच्चे को कंट्रोल करने में, ये करने में। कहता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इसके अंदर ये बनता है कि जब कोई बंदा आपके पास आता है, आपको क्राइम कराने की चीज बताता है, तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब हमें डजन ऑफ पता है कि छोस तो भूल कर में क्या हो रहा है, लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जिनकी कुछ लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसको वो सीरियस ले ही नहीं रहे। जब उनने सीरियस नहीं लिया तो आप देखे कि छोस तो भूल कर में रात को जाना हो तो बंदे को देख के जाना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि एक माहौल वो गलत बन गया। और जब वो माहौल ही गलत बन जाए तो बंदा उसको
1: तो फिर
0: ना पता
1: हालात
0: इसमें
1: ठीक नहीं
0: चले
1: होते, कानून
0: गए।
1: हरकत में होता है। कोई नौजवानों के बारे में कोई लीडर भी तो नहीं बोलता ना, तो कि नौजवानों को समझाए, नौजवानों के बारे में बात करे। खामोशी से बातें होती हैं। मैं मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, जिनका तल्लुक SF से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेनमार्क के सदर भी हैं। मुजीब साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरम राजा साहब और मेरे बड़े प्यारे भाई तोकीर शाह साहब और बुरखुरदार अदनान साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी
1: वालेकुम
2: दस
1: अस्सलाम।
2: दस मिनट पहले आपको ज्वाइन किया है, आपको फोन जब आया तो मैं थोड़ा रास्ते में था, तो मुझे डिबेट में सुन रहा हूँ। माशाल्लाह शाह साहब भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदनान भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये चीजें हमें पता चलनी चाहिए। मैं तो एक नुक्ते पे खाली सिर्फ चीज कहूंगा कि जहाँ पे बंदे ने रहना होता है, जैसे हम डेनमार्क में रह रहे हैं, तो हमें डेनमार्क के कानून की जी एहतराम करना चाहिए। और क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और कानून पे अगर कानून का एहतराम करेंगे तो मेरा ख्याल है जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो कम होंगी। तो सबसे जरूरी है कि हम बूढ़े सीनियर क्या, जो जवान है वो क्या, जो लड़कपन वाले हैं वो क्या, सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। बाकी है कि जैसे मोहतरम शाह साहब और नान जो है वो उन्होंने नजर रखी होती है हर चीज पे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो वो तो आपको पता है कि दुनिया के हर ममालिक में ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन हमारे यंगस्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तो अगर अगर आप उसमें 100% में से अगर कोई 5-10% अगर हो जाता है तो हमें उनको भी प्यार से, जैसे अदनान ने कभी एग्जाम्पल दी कि उस बच्चे को विश कर दिया गया, तो अगर हम बड़े समझाएं बताएं और ये बस ध्यान में डालें कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करना है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो मैं तो यही कहूंगा जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, जो जितनी मेरी चीज मैंने सुनी है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां पे भी रहना हो इंसान ने उस मुल्क के कानून का एहतराम करें।
3: ये
1: शाह
3: अमरा
2: साहब, जरा
3: मुजीब
1: मैं बात
3: कुरैशी
1: को
2: साहब,
1: थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। रेडिकेल वेंस्टा की जो मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, जो हैं वो अपना सुमैरा नवा, उनकी मैं बयान देख रहा था। वो फरमा रही थी जो मौसम गर्मा की शानदार खबरों में उनका जिक्र है कि डेनमार्क की लेबर मूवमेंट की बिजनेस काउंसिल का आज तजिया पढ़ना कितना अच्छा लगा, जिसकी सुर्खी से खैर मगरबी पस मंज़र रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। शाह जी, ये तो भी तो खबर ही है ना, ये तो रेडिकल व्यवस्था की तरफ से कहा जा रहा है।
3: ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो असल सब्जेक्ट है जिस पे अदनान ने अभी रोशनी डाली है, ये मैं सवाल मुजीब कुरैशी साहब से भी पूछूंगा और अदनान से भी। असल में बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने पहले क्राइम किए थे, तो उनको उलविस कर दिया जाता था या उनके फैमिली पे कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जो इन्होंने 2024 में जो कानून बनाया, जो पहली जनवरी 2026 से लागू हुआ है, उसके मुताबिक ये है कि अब बोली सेल्स के जो है, ये अगर कोई बच्चा बार बार मना करने या पुलिस अनमेल्ट होता है या उसके ज्यादा जरायम हो जाते हैं, तो वो बोली सेल्स के जो है उसको बगैर नोटिस दिए एक 15 दिन के वार्सल से घर से निकाल सकते हैं और पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये फैमिलीज जो अपने बच्चों को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर रही, वो किस कम्यून में जाएंगी, कौन उनको एक्सेप्ट करेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये मैं मुजीब कुरैशी साहब से भी पूछना चाहता हूँ और इतलान से भी।
2: मोहतरम शाह साहब, ऐसे है कि मैंने अभी थोड़ी देर जो ना

0: क्योंकि मैं हम जो तजिया करते हैं या हम जो देखते हैं खबरें, हमारे लोगों की तादाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर कानून बन गया तो कानून कोई पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं बना ना, वो तो सबके लिए है, वो तो डेनिश डेनिश कम्युनिटी के लिए भी ये है। ये अगर मेरे पास डेनिश पासपोर्ट है, अगर मेरे घर में कोई ऐसी बात होती है, ये तो नहीं कहेंगे कि जी आप डेनिश हैं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। ये कानून तो पूरे मुल्क के लिए, तो पूरे मुल्क में अगर कानून है, तो मैंने पहले अर्ज किया कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, हमें कानून की चीजों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, और हमें उसमें उसके अंदर रह के इस मुल्क में रहना चाहिए ताकि हम अपनी चीजें बेहतर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इसलाह करनी, अपनी भी इसलाह करें, अपने बच्चों की भी इसलाह करें, और जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी भी हम देखें, उनकी भी इसलाह करें। इसलाह करने से कानून में भी बेहतरी आती है और लोगों में भी बेहतरी आती
1: अदनान अदनान सवाल ये है कि अगर
0: है।
1: हम रेडियो पे बैठ के ये कानून की बातें नहीं करेंगे तो आम आदमी को जो घरों में बैठा है या काम करके अपने घर में चला जाता है या गाड़ी में बैठा हुआ काम कर रहा है या ट्रक में बैठा हुआ है तो उसको किस तरह समझ आएगी? उसके पास तो टाइम नहीं कि वो कानून को कंगाले या इस चीज को समझे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि हम लोग इसको इस तरह के कानून जो बन रहे हैं उनको डिस्कस करें और पब्लिक के सामने लेके आए ताकि वो मुताहत रहे? क्या मैं सही कह रहा हूँ?
2: आपकी बात कोराइट है। मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो पूरा कानून बना था ना 2024 में, और ये जो जब बनाया गया था, तो ये कानून जब बनाया गया था ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये वार्निंग देंगे, और वो वार्निंग को सीरियस बंदा नहीं लेगा तो फिर बंदा घर से बाहर निकल सकता है। और ये कानून इसलिए बना था कि ये जो क्या कहते हैं ना, कंट्रोल, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। मगर उसके अंदर अभी भी मसला ये है कि ये कानून जो है ना, इस कानून को चैलेंज किया गया हुआ है, और दो केसेस हैं जो मेरे ख्याल से सलेनसाट के बाद हॉयसलाट में है। और जब ये हॉयसलाट में वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि दो बंदे इस कानून को चैलेंज कर चुके होंगे, क्योंकि ये कानून किसी ह्यूमन राइट्स और किसी के अगेंस्ट भी जाता है। तो अब देखते हैं इस कानून के साथ क्या है। मगर बात वही है जैसे मेरे बुजुर्ग ने भी कहा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, क्योंकि हम रिस्पेक्ट लॉ करेंगे और हम उस चीज में रहते हैं तो हमें उस मुल्क को देख के चलना होता है। जिस मर्जी कानून हो हमें उस चीज को फॉलो करना होता है, और हम कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो हम इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। हमें इस मुल्क में रह के हमें आइन और कानून जो होते हैं ना वो ही फॉलो करने होते हैं। और लोगों को बहुत सारे कानूनों का पता भी होता है और लोगों को अंदाजा भी होता है कि कानून कैसे हैं। तो ये कानून तो हमारे लिए नहीं बने, ये सबके लिए कानून बने हैं। मैं रिसेंटली 10 दिन पहले एयरपोर्ट पे गया हुआ था और वहां पे मैं देख रहा था कि फॉरनों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी पड़ी, क्या कहते हैं, चेकिंग में, जितनी घोड़ों को प्रॉब्लम पड़ी हुई थी, क्योंकि घोड़े जो हैं वो पुराने कानून से जा रहे थे तो उनको भी नहीं था पता। सो एवरीबॉडी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ। और यहाँ पे ये फर्क नहीं करते कि गोरा कौन है, रा चिट्टा कौन है, रा कौन है, ये देखते हैं लॉ को सबसे पहले। और
0: अदनान, आप
2: इसीलिए जो
0: कानून कायदे की बात कर रहे हैं, शाह साहब आपके लिए भी ये सवाल है, मजीब साहब के लिए भी सवाल है, आप तीनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र भी रखते हैं कि कम्यून के इलेक्शन के बाद जब सारे मामलात सारे सेट हो गए, तो अगर पिछले 3-4 महीने की या 2 महीने 3 महीने की एक्टिविटीज़ देखी जाए, तो शाह साहब जो हमारे गैर मुल्कियों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली आप अपने ग्रुप्स की बात करें, तो हम जो जिस तरफ लगे हुए हमें तो पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है।
1: ये बिल्कुल बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और इस तरह लग रहा है पुरसराज किस्म की खामोशी है, जबकि दुनिया भर के हालात जो हैं वो बड़े टेंस में है। डेनमार्क के हालात बड़े टेंस में है। यहाँ आप देखेंगे दुकानों पे जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट है उनके ऊपर खाने की चीजों की कमी है, उनके अंदर काफी चीजें जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है, लेकिन आवाम क्योंकि छुट्टियों पे चले गए डेनिश, और कुछ लोग जो है इस दफा छुट्टियां नहीं मना सके क्योंकि महंगाई महंगाई की वजह से भी। तो हमारे लोगों को जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए लोगों को। ये इलेक्ट इसलिए होते हैं कि ये इन्फॉर्म करते हैं बंदों को। अगर आप ये कहें कि डेनिश सियासतदान, तो डेनिश सियासतदान जो है वो चैट कर रहे होते हैं आपके साथ फेसबुक के सोशल मीडिया पे, भरी हुई है आप देखेंगे इनको चैन ही नहीं है, ना इनका सोएब को, ना मॉडर्न मास्टर स्मिथ को, ना हमारी वजीर आजम जो है उनको, ना दूसरों को। ये डेली तीन तीन चार चार जो है वो लॉज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। ये बकायदा फलके थिंग के जो डिबेट्स उलनी के बारे में वो पेश कर रहे हैं, जो फौसले नंबर 9 है उसको पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो है उलनिंग्स को जो नेशनलिटी दी जाती है उसको कैसा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसका इसका मुहावर क्या है, इसका असल बात ये है कि हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मर हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन असल काम ये है, ये इंफॉर्मेशन देने का ये काउंसलर्स का है, वो आकर बताएं कि भाई देखे कि आपने अगर कोई फेस्टिवल लगाना है या आपने कोई किसी ने कोई मेडिसिन हेल्प लेनी है, आपने कोई आपको कोई बीमारी पे है, आपने छुट्टियों में सडनली पाकिस्तान जाना है या किसी और मुल्क में जाना है, तो आप किस तरीके से कौन से पैराग्राफ पे आप छुट्टियां ले सकते हैं, किस किस तरह आप अप्लाई करेंगे, ये काम बताने का हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम क्यों बताएं जब
3: शाह साहब आप क्या फरमा रहे हैं। जी साहब देखे ना, आपने शाह साहब ने जिक्र किया कानून कायदे की, तो देखे ना कानून कायदा समझने के लिए आप देखे ना कि 8-9 फंक्शन हो चुके हैं पिछले चंद दिनों में या हफ्तों में कह सकते हैं, और आगे भी फंक्शन होंगे। तो हमारी जो तरजियात का हमें पता चलता है कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमारी सोच क्या है, थिंक टैंक। शाह साहब आप लोग इसी तरह एनालाइज करते हैं। मुजीब साहब आपने सुना,
2: मैंने एक मिनट राजा साहब मुझे एक मिनट बाहर जाना पड़ेगा टेलीफोन से, मैं आपको फिर
3: चले ठीक है ठीक है इतना आप करें। जी मुजीब साहब
0: मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जितनी इन्फॉर्मेशन आती है बड़ी अच्छी बात है, कानून के बंदों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे मोहतरम शाह साहब नजर रखते हैं हर रोज, इन्होंने सारी अखबार को देखना
3: मुजीब साहब अगर वो नहीं देना चाहते तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करती होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, पुलिस में तो नहीं है,
0: हम तो कह ही सकते हैं ना जी अगर वो नहीं देंगे तो। और नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको ना मेरे ख्याल आज से 3-4 महीने पहले आप वक्त कह चुका हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो कारकर्दगी पे होगा, अगर किसी की कोई कारकर्दगी नहीं हुई तो उन्होंने अपने सर पैर पे खुद इलेक्शन लड़ना है, तो फिर देखेंगे वो कैसे वो कामयाब होते हैं, लेकिन अगर कुछ बताएंगे कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो कामयाब ही कामयाब है। तो मेरा ख्याल है इस पे हमें ज्यादा अभी छुट्टियां हैं खत्म होने दें, तो इनशाला इसके ऊपर हम बात करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे, हमने वोट दिए हुए हैं, हमने मेहनत की हुई है, हमने पार्टियों को जिताया हुआ है, आज अगर 8-10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो खुद तो नहीं बन गए, उनको हमने बनवाया हुआ है और हमारी वजह से वो बने हुए हैं, तो अगर उनको अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो भूल जाए। मैं तो एलानिया रेडियो पे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं नहीं कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, तो उनको चाहिए कि 1 साल तो गुजर गया है तो बाकी जो टाइम रह गया उसको अपने आप को सामने लेके आए और जो जो छोटा मोटा काम हो रहा है जो भी उनकी चीज है उसको उजागर करें। आपका प्लेटफॉर्म हाजिर है और मीडिया है जिसपे मर्जी आए आके अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने एरिया में लोगों को बताएं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए, ये काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए नहीं जिस कम्युनिटी से वो मुंतखब हुए पूरी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ताकि ये तो नहीं कि खाली हम लंदन जा रहे हैं या हम पेरिस जा रहे हैं या हम बोसनिया जा रहे हैं या हम स्पेन जा रहे हैं, शहरों पर लग जाए, ऐसा काम नहीं चलता। आप काम वो वाले खत्म हो गए, यंगस्टर माशाल्लाह सब सियासत को समझते हैं और जो नेक्स्ट यंगस्टर आएंगे हो सकता है फिर जो भी यंगस्टर है उनको फिर वो छुट्टी करा दे, तो इनको चाहिए कि अपने काम की तरफ तवज्जो दे और जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दे। राज साहब ऐसे है कि मैं भी थोड़ी देर टेलीफोन से निकलूंगा, आप मुझे इजाजत दे दें तो इंशाल्लाह आप बात करें, मैं आपको रेडियो सुनूंगा जरूर, लेकिन मैं एक बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बंदा खड़ा है उसको मिलने जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपका रेडियो
3: सुनूंगा। अदनान भी आ रहा है तो अपना शाह साहब आपने बात सुनी, शाह साहब हमारी तरजियात क्या है,
0: जल्दी फारग हो गया तो मैं अंदर आ जाऊँ। ठीक है
3: ठीक है
0: ओके जी खुदा
3: हाफिज़। शाह साहब हमारी तरजियात क्या है
1: जी,
3: हमारी तरजियात क्या है,
1: हमारी तरजियात जो है वो गबियत करनी, शो ऑफ करनी, माजरत के साथ मसाइल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी डिस्कस नहीं करता, जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो किसी भी सियासी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं तो वहाँ पाकिस्तान के मसाइल जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, अगर आप किसी दोस्त को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं, यहाँ के मसाइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो मसले मसाइल है ये कह देना कि देखो जी मैं तो मेरे पे तो ये बात नहीं फिक्स हो रही, लेकिन दूसरे पे, लेकिन ये देखें कि जब एक कानून बनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बंदा सही काम कर रहा है या ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, वो तो सब के लिए है। और हादसा किसको कहते हैं, हादसा वो होता है जो सडनली होता है। ये शोर बहुत हो रहा है दौरान के रेडियो में,
3: अदनान गाड़ी का या माइक बंद करें, माइक आवाज आती है, डबल होती है।
1: और मसला ये है कि हमने जो चीजें हाईलाइट करनी है, अब आप ये देखें कि जिस पे चीज पे हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, वो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो नई टैक्सी आई है यहाँ पे ग्रीन टैक्सी, ये अब
3: और ड्राइवर भी मिल रहे हैं अभी
1: जी, नहीं नहीं ड्राइवर उनको काफी मिल रहे हैं। वो देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ड्राइवर्स का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। अब नुकसान में जो दूसरे जाएंगे, देखिए एक मैं अगर इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तो फिक्स रेट मिल रहा है, मुझे तो ये परवाह नहीं कि सवारी बैठती है नहीं बैठती, पैसे देती है नहीं देती, मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है। ये चीज जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर ये है कि अगर मैं जाता हूँ और मेरे मुझे कोई ऐसा टूर मिल जाता है, ऐसी ऐसी सवारी मिल जाती है, दे देती है कंपनी, जो कि टाइम ओवर हो जाता है, तो उसको मुझे बोनस मिलेगा कि भाई तुमने ये काम जो है ओवर टाइम लगाया, उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो ये ज्यादा ज्यादा जो है बेहतर है। और ये आगे और अब एक नई बहस चली शुरू हो गई है कि जो टेस्ला और ये दूसरे जो कंपनियां हैं ऊबर वगैरह, अगर ये बगैर ड्राइवर के गाड़ियां जो है ये सोच रहे हैं कि इस क्रिसमस में या न्यू ईयर के बाद यहाँ पे फेंक देते हैं, सड़कों पे ले आते हैं, तो फिर ये हमारे वॉनमैन हजरात क्या करेंगे। देखिए एक वॉनमैन का कम से कम जो है 30 से लेके 40 हजार करोड़ जो है सिर्फ गाड़ी का खर्चा है, और अगर उसकी गाड़ी का इतना खर्चा है तो वो कम से कम 70-80 हजार करोड़ कमाएगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे। और अगर उसको दो दो तीन तीन घंटे के बाद 200-300 करोड़ का 250 करोड़ का टोल मिलता है तो वो तो खत्म होकर रह गया। और कौन इतनी महंगी गाड़ियों को बुलाएगा जब मार्केट में आपको जो है एल्बर्स्टोन से एयरपोर्ट जाने के लिए 300 करोड़ में अगर आपको बिजी आर में गाड़ी मिल जाती है तो किसी का दिमाग खराब है कि वो इस तरह की सेल्सकेप जो नॉर्मल प्राइस पे जा रही है उसको कौन बनाएगा। तो इस तरीके से आबसलू से बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, लोगों में जो असाइनमेंट बढ़ेगी, और ये चीजें जो है ये कम्यूनों पे बड़ा असर डालेंगी। और कम्यूनों को अभी चाहिए कि ये जो काउंसलर्स हैं इनको चाहिए कि कम्यूनों पे इस पे बात उठाएं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं आबस रिलेटेड जो हैं उनको चाहिए कि अभी से ये बैठ के बात करना शुरू कर दे कि अगर यहाँ पे या तो सबके लिए एक फिक्स कर दे। अब मिसाल के तौर पर खुदा ना करे कि एक वॉनमैन फंस जाता है, वो कहते हैं जी कि काम ही कोई नहीं, अब उसने गाड़ी को गाड़ी से कैसे जान छुड़ानी है, इतने लाखों की उसने गाड़ी ली हुई है, पीछे उसके उसका सरमाया उसने देना है, फिर उसका वो किस तरीके से उसे।
3: शाह साहब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, शाह साहब एक अब कंपनियों के हाथ में सारी गेम चली गई है। आप देखें ना, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आप वाई एल को फोन करते हैं, वो बंदा आता है, वो आपके टायर पे सुराख, खड़ी गाड़ी पे टायर पे सुराख करके कहता है जब अपना वर्कशॉप में ले जाओ, बाकी जो ठीक कर लो। जब आप वर्कशॉपों में जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जी पंचर नहीं लगता, ये आपका टायर 2-2.5 हजार का है तो फिर ये आपको पंचर नहीं। शाह साहब ये पहले होता था, आते थे वो पंच टायर उतारते थे, खोल के देखते थे, पंचर लगा के फिट करके वो चले जाते थे। तो शाह साहब ये जो खेल चल रहा है ना सारा, ये खेल अब बड़ा लंबा खेल है जो हमारी लोगों की समझ से नहीं, आप क्या कहेंगे।
1: कि मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, जो अक्लमंद है वो अभी से ये सोच लें कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट है कि अगर मैं 30 हजार तनख्वाह मैं अपने मुश्किल से अपनी गाड़ी में निकाल रहा हूँ तो कई दफा मैं 30 हजार भी नहीं मुझे आ रहा, तो फिर तो 30 हजार की जो नौकरी है वो उसके लिए बेहतर है कि उसमें से टैक्स दे के तो वो अपनी जान छुड़ा सकता है, ना उसको पेंशन गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, ना उसको वर्कशॉप का खर्चा, ना कुछ। यहाँ पे तो जो मुलाजमत है, मुलाजमत के अंदर तो जो मर्जी हो जाए वो तो कंपनी का सरमाया लग रहा है।
3: चलिए अदनान से ऐसा पूछते हैं, अदनान से, चूंकि अदनान भी काफी स्टडी करते रहते हैं, मार्केट को देखते हैं। अदनान, ये नई कंपनियां आ रही हैं, हमारी जो सियासत है आपको पता है हमारी क्या सोच है, हम किस तरह सोचते हैं, हम टोटल अपना मफाद देखते हैं, बाकी जितने मर्जी कानून सख्त हो जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी ज़ात को कितना फ़ायदा होता है। जब नई ब्रांच आ गई है, इनका काम शुरू हो गया, इनकी 300-400 टैक्सियाँ खड़ी भी, इनकी पार्किंग प्लेस भी है, वर्कशॉप भी इनका अपना, सफाई भी ये खुद करके देते हैं, सहूलियात तो इदनान आ रही है, आप क्या कहेंगे?
2: साहब ये तो आ रही है और ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे जैसे ये पता नहीं, अब इनको आने तो दो पहले मार्केट में और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इनका सीधा क्या होता है, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये हाल ऐसे ही होना है जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे ये फॉस्टेनमार्क बंद हुआ था तो पत्तों का बिरार कोई थी, तो इस तरह काफी कंपनियों की वजह से आने से काफी चीजों की क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, और ये तो फिर गवर्नमेंट को और सियासी बंदों को देखना चाहिए कि किस किस को परमिशन दे रहे हैं। आपका पहला जो सवाल था कि हमारे जो काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, होपफुली वो अपनी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कमिंग मंथ है इसमें तो उन्हें काफी बिजी होना है, क्योंकि बजट का फैसले होने हैं हर कमून के, और होपफुली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब वो काउंसलर बने हैं तो बाहर निकल के अपनी कम्युनिटियों को भी बताएं कि कौन कौन सी क्या कहते हैं कमियां हैं, क्या क्या होना है क्या नहीं होना, जैसे शाह साहब मैं बैठे हुए हैं कमून के अंदर, हमारा तो अगले 2-3 साल बंदा कह ले कि हमें वो जो स्टेट पूल मिलते हैं वो ना मिले तो बजट अभी नहीं पूरे होने, क्योंकि 2031 के अंदर जाके करीबन जब ये सारे हमारे मकान वगैरह सब कुछ बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर 100% बजट हमारा बनता है। तो इसी तरह बाकी की कमूनों में मसाइल हैं, ब्रॉनबी में भी होंगे रेफिनरी कुछ मसाइल हैं, वहां पे भी क्या कहते हैं एक पॉन पिस्ता नाम हो जिसको वो पूरा कंप्लीट चेंज कर रहे हैं क्योंकि उधर भी मसला मसाइल थे, तो इस तरह की चीजें बाहर निकल के हमारे काउंसलर को बताने की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि मैंने ये देखा है 14 दिन पहले और देखा है कि जितने मैंगो फेस्टिवल पे और जिधर जिधर हम लोग गए हैं जिन जिनों को पता है वो डेफिनेटली सवाल पूछते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछे, मैंने कहा देखे हर सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी क्या कहते हैं छाव से स्प्लिट होती है, मगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लीगली होती है और मुझे पता होता है कि मैं बता सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, और मैंने जैसे अभी भी कहा है कि मेरे पास काफी हमारी जो वेस्टर्न की कमूनों में मीन बंदे बैठे हुए हैं, हमें कुछ तलावे हैं पर वो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनको बता सकते हैं और क्या है, क्योंकि काफी क्या कहते हैं चीजों में तब्दीली आएगी, काफी चीजों में बदलेगी, जैसे अब आप देखें बड़े लोगों को, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोस तो स्विम है एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मुझे एक बंदे ने उस दिन पूछा, कहता है कि ये पूरा ये जो बंद रहा है ये क्या सिस्टम है, मैंने कहा ये डैम बन रहा है, कहता है ये क्यों डैम बन रहा है, मैंने कहा डैम इसलिए बन रहा है कि पानी बचाना है, कहता है ये हम लोगों को पता ही नहीं, तो मैंने कहा ये तो फिर हम लोगों को आप लोगों को बताने की जरूरत होती है, आप लोग हमसे सवाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे, मैंने कहा ये ग्लोस तो कमून डैम बना रही है क्योंकि फ्यूचर में पानी बचाने के लिए, जब पानी की कमी होगी तो ये डैम जो है ये बारिश के पानी को बचाएंगे, मैंने कहा इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सारे, ये जो चीजें होती है ना बड़ी जरूरी होता है कि हम अपने लोगों को जाके बताएं।
3: अदनान आप ये इन चीजों की बातें कर रहे हैं तो ये आगे मैंगो फेस्टिवल कितने आ रहे हैं?
2: मैंगो फेस्टिवल अभी 2 आ रहे हैं, लाइक एक मैंगो फेस्टिवल हफ्ते को आ रहा है और एक आ रहा है आजादी के 7 मैंगो फेस्टिवल 8 अगस्त को जो उनने आजादी का प्रोग्राम के साथ मैंगो रख दिए, तो 2 मैंगो फेस्टिवल रह गए हैं, उसके बाद तो मैंगो का सीजन ही खत्म हो जाना है, तो फिर क्या कहते हैं मैंगो के इतने नहीं रहने हैं, तो इसलिए।
3: अदनान ये जो स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं तो क्या ये जो सेहत वाले होते हैं, महकमा होता है सेहत वाला, तो जिस तरह के तरीकेकार होते हैं तो क्या ये अलाउ होती है सारी चीजें लीगली?
2: इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है कमून के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रूव कर दें तो फिर कोई मसाला नहीं होता, और ऑब्वियसली वो 100% ज्यादातर अप्रूव कर देते हैं क्योंकि उनको अभी तक तो ये उनने पहले तो पता नहीं किस तरह से है, मगर आगे वो देख रहे हैं इस चीज को किसका क्या कहते हैं लॉ की इवनिंग बदलनी है क्या नहीं। तो मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा क्योंकि
3: मैं शाह साहब आप प्रोग्राम को क्लोज करें और मेहमानों से इजाजत भी लें,
2: इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।
3: थैंक यू थैंक यू।
1: राजा साहब लास्ट में मैं ये कहूंगा कि लोगों का शुक्रिया कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ये काउंसलर्स हजरात का काम है कि वो आकर बताएं कि जो पेंशनर्स हैं या बिफोर टर्म जिन्होंने पेंशन ली हुई है या वो फैमिली वाले जिनके लो इनकम है इस डेनमार्क के अंदर, और वो जो लेवेस्ट इनकम के यानी कि सबसे कमतर इनकम के अंदर गुजारा कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कोई भी काउंसलर बात नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर जितनी नई बोली अब बन रही है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज्यादा छोटी और कम और तंग कमरों वाली बना दी इन्होंने कि अगर किसी को मजबूरन वो कमरे ले लेता है तो पहले तो वो वहां पे उनको सोने के कमरे में ही बेड डबल बेड भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर जो सर रेंट है वो इतना ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका गुजारा जो है बहुत मुश्किल। और
3: तो बच्चों वाले लोग जो बन सकता किराया, हर आदमी हर कंपनी अपनी मर्जी से किराया रखती है
1: जी। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है ये 85-86 में हमने कोपेनहेगन में इसके ऊपर डिबेट की थी, लेकिन वहां पे फिर वही बात हो गई थी कि जो डिप्लोमेट्स थे जो बड़े बड़े उम्बसमैन थे वो कम्यून को चकरा गए थे और चक्कर दे के तो एक्साइट हो गए थे, तो सियासतदानों को जो काउंसलर्स थे उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो ये डिबेट्स जो है ये होनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हर कम्यून के अंदर जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिलीज वाले हैं जिनकी इतनी हायर इनकम नहीं जिस तरह अगर डेनमार्क गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, तो उनको सस्ते जो है वो फ्लैट्स जो है वो देने चाहिए और मुहैया करने चाहिए ताकि वो बच्चे जो है वो बजाय डोमेस्टिक वायलेशन या क्राइम की तरफ जाए या तरसे कि हमें बाहर गर्म मौसम है हमें आइस नहीं मिल रही फलानी चीज नहीं मिल रही। तो राजा साहब ये चीजें जो है ये डिस्कस करने के लिए हमें चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी वक्त आप बुखारी साहब को भी लाएं, किसी काउंसलर को लेके आए जो बड़े ठंडे दिमाग से हमारी बातों का जवाब दे और हमें अच्छे तरीके से ये बताए कि कौन सी कम्यून में वो काम कर रहे हैं और क्या उनकी कम्यून में ये फैसिलिटीज है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्राइम रेट को रोकने के लिए।
3: वोटर सपोर्टर को भी ये पूछना चाहिए ना कि हमने आप लोगों को वोट दी, जिस तरह मुजीब साहब फरमा रहे थे कि हमने वोटें दी हैं, तो वोटर सपोर्टर को भी चाहिए ना भाई आपको वोटें हमने किस लिए दी थी, आपको मेंबर बनाने के लिए दी थी, आपका कैरियर आपके जॉब बड़े अच्छे हैं, आपका कैरियर बनाने के लिए हमने आपकी वोटें दी थी।
1: वो अगर से क्या दे दी अंकल जी, अगली दफा मत दीजिएगा वोट, आपने दे दिया आपका शुक्रिया, अगली दफा ना दीजिएगा, हमने आपको समोसे चाय खिलाई थी बस शुक्रिया आपने इस दफा वोट डाल दिया अगली दफा बेशक आप ना दे। तो बात में असल में ये होती है कि अगर ये लोग आके लोगों को ये बताते हैं इन्फॉर्मेशन तो इससे सहूलियात जो है वो बढ़ जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि 85% या 86% लॉज जो बनते हैं यहाँ पे कम्यूनों के अंदर उनका किसी को भी इलम नहीं, और लोग बाहर आके बात नहीं करते क्योंकि लोग उसके अंदर बैठते नहीं है, बताते नहीं कि कौन सी डिबेट हुई है। आप यकीनन किसी से भी टेलीफोन पर कोई कह दे कि आए मुझे ये बताएं कि आज आप इस हफ्ते आपकी किस चीज पे डिबेट हुई है, तो वो आपको गुड़बुड़ बात करके तो भाग जाएंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें ये बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आपने हमें इलेक्ट किया है, हम इस कम्यून में गए हैं, इस कम्यून का मंशूर ये है। अब जिस तरीके से कोपेनहेगन कम्यून को आप ले लें, वहां आपको जो इलेक्ट हुए हैं उनको चाहिए था कि आपके जरिए या दूसरे मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अवाम को बताते कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अवाम के लिए, सड़कों के लिए, पार्किंग के लिए, हाउसेस के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वह वो पूरा साल वो प्रोजेक्ट पे बैठे, पूरा साल वो उनके चलता रहे, लेकिन मेजर चीजें उनको बतानी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है आप किस तरीके से अमल कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार है किस तरह आपने रायजे लेना है, किस तरह आपने करना है। ये इन चीजों पर वो तो बात ही नहीं कर रहे। जब तक लोगों को ये चीजें इलम नहीं होंगी, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। देखे फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हर मिनिस्ट्री ने बहुत सर्विस बनाई हुई है। ये वायद कोपेनहेगन की बहुत सर्विस है या वेस्टर्न की बहुत सर्विस है, जिसके अंदर सिर्फ तीन चीजें आप जाके उनसे हल करवा सकते हैं, बाकी का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने अगर खेवकार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है या कम्यून से किसी के, तो वो बाकी है उनके लिए कोई रिलेटेड ऐसा नहीं कि कोई आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, वो नहीं ले सकते। और आपको इवन आप एल्बर्सोन बॉमिस्टर को टेलीफोन करें ना, तो उसका नंबर ही कोई नहीं है। तो ये कैसी कम्यून है जिसके अंदर कोई बॉमिस्टर से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप कहीं जाकर टाइम नहीं ले सकते, आप किसी काउंसलर से नहीं मिल सकते। आप पूछे कम्यून से पूछे कि कोपेनहेगन ये अपना एल्बर्सोन कम्यून के अंदर कौन कौन से काउंसलर है, उनके टेलीफोन नंबर हमें दे, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका कौन सा ऑफिस है, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये आवाम को मिलनी चाहिए। जी राजा साहब,
3: मैं मजीब साहब की तरफ पढ़ते हैं। मजीब साहब, आप चूंकि ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, आपके घर से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डिप्लोमेसी डिप्लोमेट जो मिलती रहती हैं, लेकिन हम किसी काम की तरफ नहीं जाते मासवाय तनकीद के अलावा।
0: आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह आप देखें ना, मतलब शाह साहब बहुत से तजिया करते हैं, लेकिन हम कह के अपनी जुबानें भी थका लिए हैं, अपने गले भी खुश कर लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है असर नहीं ना, इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा। और इसका एक ही इलाज है, मैं जो समझ रहा हूँ कि बेहतर जो इसकी दवाई है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें सोच समझ के अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर कमून के अंदर कोई भी काम हो रहा, कमून के देखें जो अपने हमारे कैंडिडेट मुंतखब उनके प्राइवेट नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको ऑफिस वाला नंबर ही हमें चाहिए, वो भी नहीं उठाते। लोग कहते हैं जी आपकी खातर वोटें दी थी तो बंदे किधर है, तो हम कहते हैं जी फिर आप इस सफर तो आपने हमारी खातर दे दी है, तो नेक्स्ट टाइम आप कारकर्दगी पे दें, जो बंदा कारकर्दगी दिखाए उसको आप वोट जरूर दें, और जो बंदा नहीं दिखाए आप उसको बिल्कुल वोट ना दें। और बेशक मैं आ जाऊं, बेशक आपके पास शाह साहब आ जाए, बेशक आपके पास राजा गफूर साहब आ जाए, आपने वोट नहीं देनी, आपने वोट उसी बंदे को देनी है। और यही देखने आज माशाल्लाह अब अगस्त शुरू होने वाला है, तो अभी नवंबर तक तो एक साल हो जाएगा, तो अभी एक साल में कोई चीज मुझे किसी कमों से मेरे पास कोई ऐसी कोई ऐसी खबर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी काउंसलर ने या रीजन के बंदे ने या कोई ऐसा कोई स्टेप उठाया है कम्युनिटी के लिए, या कोई काम हो रहा है, या कोई ऐसी चीजें जो कि पाइपलाइन में है किसी का, वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ऐसी बातें तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर जो हैं, जो हमारे नए काउंसलर बने थे, उनको चाहिए कि अपनी फील्ड को और मजबूत करने के लिए मैदान में आए और अपने मीडिया पे आकर लोगों को बताएं कि भाई ये काम हो रहे हैं, ये काम पाइपलाइन में, ये काम
3: नंबर। मुजीब साहब, ये बात तो जज्बे की होती है, बेचारे मेहनत तो करते हो गए हैं, फिर वो कहते हैं हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो इनको पहले कहा जाता है सियासत में बंदे के पास टाइम नहीं, तो उसे सियासत में आना ही नहीं चाहिए।
0: देखिये जी, फैमिली के लिए टाइम जरूरी है, अपने काम के लिए टाइम जरूरी है, अपने दोस्तों के लिए टाइम जरूरी है, लेकिन अगर आपने सियासत में हिस्सा ले लिया है और एक बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आपका तल्लक है, तो फिर आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आपको उसके लिए टाइम निकालना, आप अपना एक प्रोग्राम बनाए, एक प्लान बनाए, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप उसमें से कह दें जी बस हमने 3 दिन जो है ना वो सियासत पे काम करना है, 4 दिन हमारे जो है ना फैमिली दोस्त है हमने उनके साथ गुजारे, तो फाइन। लेकिन 3 दिन जो है उसके अंदर कम अज कम इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं।
3: तो शाह साहब से पूछें, शाह साहब ये मीटिंगों में जाते हैं, ये मुफ्त जाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं?
1: नहीं जी, मैं अपना मजीब कुरैशी साहब से भी एक सवाल करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। देखिए, उडनसे में आज उसमें यूलैंड में इनसम बनी हुई है जमातें, जहां जैसे यहां पर 70s 80s में कोपेनहेगन में होती थी इनसम, यानी कि आप अकेले हैं, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आप जाके इकट्ठे बैठे और आपने जैसे लोगों से जो है वो बैठ के तो आप बातचीत करें, खाना खाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे ना वेस्टाइन में कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोपनहेगन में ऐसी चीज है। वो पैसे कहाँ गए, कहाँ गए वो पोलिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं था, क्या नाम है, वेल्सा की तरफ से मैं इलेक्टेड था, इसके अंदर इंट्रोगेशन कोपनहेगन के अंदर, तो वहां पे कुरैशी साहब के बड़े भाई भी थे। तो हमारे सामने बजट आता था कि कौन कौन सी तंजीमात हैं, किन किन को ये पैसे जो है वो मिलते हैं, और ये सारा कुछ जो था वो हमारे थ्रू, हमारे से बहस करके तो वो लेके जाते थे। तो अब मसला ये है कि ये जो चीजें हैं, ये हम लोगों ने देखना है कि ये चीजें कहाँ गई, ये पैसा सरमाया कहाँ लग रहा है, आखिर कोई ना कोई इसको उद्म्यूट कर रहा है, कोई ना कोई इससे फायदा ला रहा है, ले रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो अब ये है कि मैंने ये सोच रखा है कि छुट्टियों के बाद मैं इनको लेटर लिखूंगा, और मैं ये जो है फलके सिंह का ओम्बसमैन और जो कोपनहेगन कम्यून है उससे मैं ये इंफॉर्मेशन मांगूंगा कि मुझे ये ऑफरली बताया जाए कि यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर जमाते हैं और कौन कौन से कल्चर सोसाइटीज हैं जो किसी ना किसी बहाने में जो है वो फॉरनर्स के लिए कल्चर सिस्टम के लिए पैसा लेते हैं। तो इनको इनको जरा मुझे ये बताएं, और ये मेरा राइट है सियासतदान यहाँ पे, तो वो बताएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, और ये मैं लूंगा, क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, इनके पास पोली होता है। मैं आपको बताऊं कि 1997-98 में तकरीबन 24-25 मिलियन करोड़ जो था सिर्फ ठिंगबिया के लिए गिना गया था। आप ये हिसाब लगा लें कि ठिंगबिया जो है उसके अंदर 63% जो है वो फॉरनर्स हैं, और 37% जो है वो डेनिश हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, वहां पे जो पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है। शाह साहब,
3: बेसिक बात तो यही है ना कि जो कम्यूना में काउंसलर हजरात बैठे होते हैं, कमेटियों में बैठे होते हैं, वो जो फैसले करते हैं वही माने जाते हैं ना।
1: अगर वो वहां डिबेट लेते हो, जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, मजीब साहब बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इदलान कर रहा है, आप सवाल कर रहे हैं, अगर ये हिस्सा लेते हो, जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे साथ आके बात करें, हम इनसे सवाल करें कि भाई वो फलानी फलानी थी बात, वो उसके ऊपर आप हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, हम एक कल्चर फ्रेमिंग बनाना चाहते हैं, हम कहाँ अप्लाई करें, कौन से कितना हमें जो है वो बजट मिलेगा, किस तरीके से हम उसकी एक हिस्से और दूसरी चीजें बनाएंगे। तो ये चीजें जो है ये आपको कम्यून वालों ने देनी है, और अगर वो जो काउंसलर जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो अपने अपने दोस्तों अहबाब में और अपनी फैमिलीज में ही वो ये सब कुछ अगर लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए। ये सामने आनी चाहिए कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि ये तो मजीब साहब को भी पता है और मुझे तो 100% पता है कि मैं इतने सालों से सियासत में हूँ, ये तो मुझे 100% यकीन है कि हर कम्यून के अंदर ऐसे बजट रखे जाते हैं जो मुख्तलिफ जो फॉरनर्स है उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, उनकी मीटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं।
3: मजीब साहब, आपने शाह साहब की बातें सुनी। मजीब साहब, एक सिस्टम तो होना चाहिए। आज पुराने वक्तों की अगर आप बात देखें तो काउंसलर बड़े मेहनत करते थे, अब भी करते हैं, अब नहीं, ये नहीं कि अब नहीं करते, करते हैं सारे अपने अपने तरीक़ेकार से करते हैं। बाज का नज़र आता है, बाज कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम नज़र नहीं आता। बात तो वैसे आपकी रिकॉर्ड चलती रहती है, लेकिन मजीब साहब नौजवान बच्चे हैं, यहाँ पैदा हुए, उनको भी कानूनी राइट्स हैं, उन्हें भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और चूंकि ये यहाँ पैदा हुए, इनकी सोच जो है वो दूसरे बच्चों की, ये हमारी तरह तो सोच नहीं है, ये अपने आप को डैनिश समझते हैं, डैनिश शहरी समझते हैं, तो हकूक लेकर देना सियासतदानों का काम होता है। आप क्या कहेंगे?
0: मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जैसे मोहतरम शाह साहब ने कहा है कि किसी ज़माने में इंसान हुआ करती थी। मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप है, एल्ड्रा ग्रुप जो, जिसका नाम है सीसा, और वो जो 67 ईयर्स के बाद जो जो लोग हैं उनका, उस अभाव जो लोग हैं उस उनका ये एक ग्रुप है, और उसमें तकरीबन अगर नैरो ब्रो में देखा जाए तो ये खाली जो है फार्मर्स लेडीज जेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के, कोई वो 60 से ऊपर उनके मेम्बर हैं। वो हर ट्यूसडे को बैठते हैं काफी के लिए, बातें करने के लिए। हर महीने में एक दफा वो, या 2 महीने में एक टूर लगाते हैं चुवाली का, या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी और जगह का। ये पिछले दिनों बोनो गए हुए थे, ये बैरा रूप में, म्यूजियम में, उनको बाहर लेके जाते हैं, फिर कभी कभी उनको खाने के लिए लेके जाते हैं, फिर उनको कभी कभी फिल्म के लिए लेके जाते हैं, कभी कभी उनको थिएटर में लेके जाते हैं। यानी कि मैं कहने का मतलब यह है कि फ्रेनिंग्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे शाह साहब ने कहा है कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाए जी ऐसी आप फ्रेनिंग बनाएं और ऐसे कामों के लिए वो चीज है और उसके लिए आपको, आखिर उनको बजट मिलता है तो वो खाना भी देते हैं, काफी भी पेश करते हैं, फ्रूट भी देते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, लेके भी जाते हैं। तो ये पुलिया हर जगह मौजूद होता है, हर कमून में होता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे में वो बात आती है कि वो जो चुदराहट है ना हमारी, वो हमारे में लेके डूब जाती है। अगर शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर वो इंसान की तरह को फ्रेनिंग बनाए तो क्या होगा, पीछे दो बंदे खड़े हो जाएंगे, ना जी शाह साहब मुझसे क्यों बढ़ाते हैं, असि आप बढ़ा लीजिए शाह साहब की तरह मुझे आ गए। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि हमारी मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मैं भी ये कहूंगा सबको, कोपेनहेगन कमून वाले कोपेनहेगन में, एल्बर्टसोंड वाले अपनी अपनी एक फ्रेनिंगे बनाएं और फ्रेनिंगे बना के बैठने की जगह लें, आपस में बैठ के बातचीत किया करें, कानून को आपस में शेयर किया करें, अपनी दूसरी जो तरजीहात हैं उस पर बैठ के बात किया करें। तो ये एक हमारे लिए जरूरी है।
3: दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूँ, चूंकि आप खुद भी सियासतदान हैं लेकिन आप ज्यादा सियासत जो है वो डेनर सियासत करते हैं, तो मुजीब साहब आप सियासतदान आपस में बैठना ही नहीं चाहते। पहले लोग सियासतदान सारे बैठते थे आपस में, ये बड़े लोग देखे ना कि ये सारे आपस में बैठते हैं, जो नीचे होते हैं उनको नहीं, ये आपस में इकट्ठा बैठे, ऐसे हालात बना देते हैं कि लोग एक दूसरे को जो है ना वो सियासी दुश्मन तसव्वुर करते हैं।
0: लेकिन मैं समझता हूँ कि नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे कौंसलर रीजन में लोग हैं, उनको मिनिस्टरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ, उनको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। बार पिछली दफा भी हम कितनी दफा कह चुके हैं कि कम से कम जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हो ये अपना एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप में मतलब लोगों को शामिल करें, पढ़े लोगों को शामिल करें, उसमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, कोई कानून आता है उसके अंदर डाल दें। लेकिन जो मैं फ्रेनिंग की बात करूं, मैं बता रहा हूं कि वो फ्रेनिंग क्योंकि उस जो सिस्टम है उसका जो स्टूडेंट जो ग्रुप है ना उसका मैं उस सिलसिले में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको फंड भी मिल रहा है, उनको हर चीज मिल रही है और वो चला भी रहे हैं और उनका मतलब के लोग जो है उसके अंदर आते हैं बैठते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे तनाई है और लोग जो मतलब के इस उम्र में चले जाते हैं वो चाहते हैं कि हम बैठे आपस में कोई बातचीत करें, कोई मुल्की हालात देखें, कोई वैसे बातचीत।
3: जी शाह साहब, इसको जरा आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, आखिर में कोई शाह साहब हाल भी होना चाहिए, हमारे पास 5 मिनट
1: है। जी इसका हाल बस यही है कि लोग सामने आए और आकर खुलकर बात करें।
0: बिल्कुल
1: ये जो मुजीब कुरैशी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखें कि हर फ्राइडे को वहां पे मुख्तलिफ फाइनिंग जो है, किसी का फ्राइडे को है, किसी का ट्यूसडे को है, किसी का वेडनेसडे को है, उडनसे के अंदर, इसी तरह दूसरे शहरों के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है, वहां किसी में, जैसे मुजीब कुरैशी साहब ने बोला, किसी में चौधराहट नहीं। सारे मुल्कों की, कोई टर्किश है, कोई मराको का, कोई अल्जीरियन है, कोई अफ्रीका का, सब भाइयों की तरह है और खाना भी खा रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, किसी के जुम्मे ये चीज है, वो कोई काफी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वियतनामीज भी है, सब इकट्ठे मिलके और ये सुबह से लेके शाम तक ये इकट्ठे बैठते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके, तो उनमें काफी
3: कन्वर्सेशन। अपने पाकिस्तानी सियासत में मुलव्वस तो नहीं हो गए
1: राजा साहब? राजा साहब उसके अंदर काउंसलर भी आगे बैठते हैं, जो वहां पे इलेक्टेड काउंसलर है ना, वो भी आगे बैठते हैं, वो भी उनसे बात करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भाई आगे मसाइल क्या है, आप बताएं, आप फलाने जगह
0: के बैठ के नाश्ता करते हैं, जूठे बैठ के सारी बातचीत होती है।
1: तो अगर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे तो कौन जाएगा, कौन?
3: तो शाह साहब यहाँ आकर जो पाकिस्तान में मुजीब साहब बेहतर समझते हैं, जो जिनके लिए हम डिवाइड हो जाते हैं, वो हमें आकर क्या देते हैं?
0: वो आपकी बात दूर है, लेकिन राज साहब देखे, मैं अभी जो सिस्टम की बात कर रहा था ना, उसका एक न्यारा ब्रो का ग्रुप है, एक उसका सूद है,
3: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आप जाते हैं, आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है,
0: और उसके बाद एक आमा का ग्रुप है, अभी अगस्त के आखिर में एक नॉर्थ वेस्ट का ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं वहाँ, हालांकि आमा में और सूद में ज्यादा लोग नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप न्यारा ब्रो, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग हैं, बैठते हैं मुख्तलिफ लेकर सारे फार्मर और 67 से ऊपर आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा दो से तीन घंटे का प्रोग्राम होता है वो, 2 से 3 घंटे, तो 2 से 3 घंटे तो कम से कम लोग बाहर तो निकलते हैं ना, बाहर निकल के ये बड़ी जरूरी घरों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको घरों में बैठ के बीमारियां लगती हैं, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप बाहर निकले। तो मेरा ख्याल है इस पर सबको काम करना चाहिए अपने अपने कमूनों के अंदर, और जो कमूनों के अंदर मुंतखब हुए हैं उनको थोड़ी सी अल्लाह ताला हदायत दे दे, और उनको पता होना चाहिए कि हमारी वोटों से वो मुंतखब हुए हैं, वो कम अज कम इन चीजों के लिए अप्रिशिएट आगे आए और कहें जी आए 15-20 बंदे इकट्ठे हुए हमें फ्रेमिंग बनाते हैं, फिर उसमें आस्था से लोग बढ़ते जाएंगे। तो उसमें एक ही चीज होगी कि भाई चौधराहट किसी की नहीं है, ये सबकी फ्रेमिंग है, और सब आए बैठे काफी पिए बातें करें 2-3 घंटे मखसूस हो हफ्ते में एक दिन, सबका दिल भी खुश हो जाए और सब अपना आके एक दूसरे के साथ बेशुमार चीजें शेयर कर सकते हैं। हम टेलीफोनों पर भी शेयर करते हैं, जब एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा।
3: बड़ी अच्छी तजवीज है शाह साहब, आप क्लोज कीजिएगा।
1: जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि इंसम का मतलब होता है कि जो आप बहुत ही समफोन में बिल्कुल माशरे में अकेले रह जाते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ सकते हैं और उनके साथ फंडिंग में मेंबर बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है ये कम्यून जो है वो उसकी सपोर्ट करती है, उसके पैसे वो देते हैं। जितने ज्यादा मेंबर आपके बनेंगे उतने ज्यादा मेंबर लेडीज हो जेंट्स हो ये उनके लिए वो करते हैं। मसला भी यहाँ पे ये है कि कई लोगों ने, जिनका मुझे इल्म है कि कई लोगों ने ऐसी फेनिक्स बनाकर वो पैसा अपने 3-4 बंदों में चौधराहट में बांट लेते हैं, और उसके बाद मसला जो है वो वहीं का वहीं रहता है। वो नहीं चाहते कि कोई और आदमी जो है वो जंप करके इस तरह की चीज बनाए, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काउंसलर क्योंकि उन लोगों के अपने होते हैं वो उनको आगे नहीं आने देते, और इस तरह की फाइनिंग नहीं बन रही। लेकिन अब क्योंकि ये फेसबुक पे भी आ रहा है ये, तो ये इस चीज को डैलिश जो है सियासतदान वो भी ये चाहते हैं कि इंटरग्रेशन जो है ये स्टॉप हुई हुई है इन वादा की तरफ से, इसको बहाल करना चाहिए। और ये इसको बहाल करने का यही तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फाइनिंग्स बनानी चाहिए जिसके अंदर डैलिश भी आए, दूसरे भी आए, अपने लोग भी आए। ठीक है आप उनका टेबल आधा टेबल पर वो बैठे हैं, आधा टेबल पर आप बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़हनी तौर पे जैसे मजीब कैशी साहब ने कहा, आप बहुत अपने आप को हल्का और चुस्त महसूस करेंगे और ये आपका सिलसिला बन जाता है। अब हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि यहाँ से हम फैलियों के नाम पे पैसे लेके पीछे महल बनाए, इनको अब खत्म होना चाहिए। अब हमें यह काम करना चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें गालियां देने या बदवाएं देने की बजाय हमें यह कम अज कहें कि हमारे बड़ों ने हमें ये जो चीजें हैं, ये जो बयानात हैं, ये जो लॉज है ये हमें बता कर गए थे, और इससे हम फायदा जो है उन्यूट हम कर सकते हैं। जी राजा साहब,
0: मैं एक चीज मेंशन करूंगा क्लोज करने से पहले, ये जो मैं सीसम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये क्या इनका रिव्यू व्यू आते हैं, ये आके आपको कमून का बताते हैं जी, आप कमून के अंदर आपको क्या क्या सहूलियात हैं, आप क्या क्या मदद ले सकते हैं। बकायदा एक प्रोग्राम होता है 2-3 घंटे का, फिर आपको बताते हैं कि आपके मेडिसिन में कैसे है, यानी कि जो काम हमारे काउंसलरों के हैं वो ये आके कमून से बंदे बुलवा के बकायदा हर चीज बताई जाती है कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यहाँ तक कि आपने जो फुल बक देना होता है वो कैसे बनाना है वो कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आके ना वो इन ग्रुपों में आके देते हैं, जिससे लोग खुश होते हैं और लोगों को मजीद मालूमात मिलती है। तो ऐसी चीजों में और ऐसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इंसान को फायदा होता है, और मैं चाहता हूँ कि सारे इस पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अक्टूबर के बाद मैं अगर एक ऐसे से मेरी मीटिंग हो जाए नैरोब्रो में, जो नैरोब्रो की हमारी क्रिस है, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा कि आप इधर नैरोब्रो के अंदर ऐसी एक कोई इंसान को बनाएं कि जिसमें हम कम से कम जो लोग हैं ना उनको इकट्ठा बिठा सकें और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों पर बात कर सकें। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सीसम है और इसलिए हो सकता है ज्यादा ना बन सके, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, और उससे नुकसान कोई भी नहीं है, बेशुमार आपको मालूमात।

0: दिया कि तुम हकायक के ऊपर आ जाओ। इसलिए कुरान में जो है मुशरिकीन को उसको शिर्क से जो बाजी बाज रखा और तरदीद की, तो बार बार जो है अल्लाह पाक ने जो है शिर्क करने वाले से ये कहा कि भाई जिसकी तुम पूजा कर रहे हो देखो ये तेरी बात सुन भी सकता है, ये तुम्हारी बात का जवाब दे सकता है। ये तो एक चीज बनाई है जो तुमने खुद बनाई है ये है। और इस तरह से यहाँ तक कि कोई इंसानों में भी हो, कब्र है, कब्र के आप कर रहे हो, तो कब्र वाला तो खुद जो है ना चाहते हुए मिट्टी के नीचे चला गया है और अपना पता नहीं था, तो वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। तो ये सारे शिर्क ये चीजें हैं कि आप जो है हकायक से जो है आप जो है मुंह फेर देते हो और हकायक से हट जाते हो और इस तरह से ये बातें करते हो, तो ये चीजें सारी तवहुमात में है। तो इस तवहुमात की वजह से लोग, क्योंकि दुनिया भी तबाह हो जाती है, अभी तवहुमात में से सुबह शाम सुनते हैं जो फ्रॉड चक्कर होते हैं लोगों के, और जो लोग कितने लोग जो है पाकिस्तान के नौजवान जो है वो जाया होते हैं कि वो गलत लोगों हथे चढ़ जाते हैं, तो वो भी यही एक तवाहुम होता है कि ये अगर पैसे दे दूं उसका ये हकायक नहीं, हकायक को देखो जो असबाब इख्तियार कर रहे हो ये तबाही के असबाब है, बर्बादी के असबाब है, क्यों ऐसी चीजें करते हो ये। इस तरह से एक मिसाल ये भी है कि देख लें कि ये जो लोग ये जो है ड्रग्स का काम करते हैं ये करते हैं, तो आप ड्रग्स जो है ये खतरनाक चीज है, इस्लाम ने शिद्दत से मना किया, लेकिन बाद लोग करते हैं, तो होता है क्या ये जितना ये लोग करते हैं इस किस्म के तो उसका अंजाम क्या होता है, वो तबाही बर्बादी होती है, वो सड़कों में पड़े रहते हैं, या उसका अंजाम हर एतबार से तबाही बर्बादी, कभी वो खैर नहीं होती है, उनकी नस्लों तक जो है उसका असरा चले। तो ये क्या होता है कि जो इस्लाम ने सही असबाब आपको बताए हुए आपने उस असबाब को इख्तियार करना है तो अब अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएंगे, लेकिन सही असबाब को छोड़ करके आप दूसरे रास्ते पर चल जाएंगे तो वो गलत रास्ते, और उसमें तवहुमात भी होते हैं कि जहां अल्लाह ताला ने लिखा है कि इसमें कामयाबी नहीं होगी तो आप वहां से कामयाबी कहाँ से मिलेगी आपको। तो ये इस्लाम का एक ये बुनियादी अकीदा ही, काश के मुसलमान को अगर ये बात समझ आ जाए कि इस्लाम तवाहुम का दीन नहीं है, इस्लाम एक हकायक पर कायम दीन है। इसलिए आप दुनिया के जितने भी मजाहब हैं उन मजाहब को आप देखेंगे कि उनके पास अपने मजहब की जो है इबादत का कोई फायदा का कोई अकली चीज जो है जो अकल कबूल करती कोई चीज नहीं होती है, लेकिन इस्लाम में हर चीज जो है वो अकल को अपील करती है, अकल के मुताबिक होती है, दलाइल पर कायम होती है, इस्लाम के इबादात हों, इस्लाम के अकायद हों, उसके मुताबिक होती है ये। हत्ता के जो लोग आजकल एक ये भी एक फितना चला आ रहा है कि जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद से इनकार करने का, तो ये सारी वो चीजें हैं जो तवहुमात होते हैं और हकायक से जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है और इंसान उन वहम में रहता है, तो उसकी वजह सारी ये तबाहियां बर्बादियां आती हैं। और इसी तवाहुम में से इसी वहम में से एक ये भी है कि जो मुसलमान आज ये चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, मुसलमान जो है जिनके लिए अल्लाह ताला ने कामयाबी के वादे किए हुए हैं और दीन इस्लाम जो सच्चाई का दीन मजहब है, तो आज मुसलमान उसके लिए परेशान है सब, तो उसकी परेशानी यही है कि उनका एक वहम है, वो ये चाहते हैं ये हो जाए लेकिन ऐसे होता नहीं है। ऐसी तवहुमात में से एक ये भी है, देखें आज दुनिया जो है उसके अंदर बद अमनी फैली हुई है, सारी दुनिया आज जो है वो एक आग में, बद अमनी के आग में जल रही है, कहीं जंगें लगी हुई हैं और जहां जंगें नहीं लगी हुई हैं वहां सब परेशानियां हैं, और मुसलमान खास करके मुसलमान मुल्क जितने भी हैं आज इंतहाई परेशानी के हालत में है, लोगों के पास माल दौलत होते हुए लोग सख्त परेशान हैं, उनके लिए कोई अमन नहीं है, उनको कोई पता नहीं कल उनके साथ क्या होने वाला है, और बाज मुल्क ऐसे हैं कि वहाँ महंगाई का एक तूफान है और बाज मुल्क ऐसे हैं कि वहाँ अंदरूनी इतना इंतशार खलफशार है खुद हमारे पाकिस्तान के अंदर के लोग जो है वो इंतहाई परेशानी के आलम है। तो ये सारी परेशानियां इसी वजह से हैं कि वो लोग वहम में रहते हैं, तवाहुम में रहते हैं, इनके हुक्मरान जो है मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, अल्लज़ीन आमनु व लम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व उला व हुम मुहतदून, फरमाया कि जो लोग ईमान लेके आए हैं और इस ईमान के साथ जुल्म नहीं किया, यानी ईमान तो है लेकिन उसके साथ जुल्म किसी पर नहीं करते, تو ایسے لوگ جو ہے فرمایا انہی کو دنیا میں اور آخرت میں امن کا حق ہے، انہی کو امن کی زندگی دنیا میں ملے گی آخرت میں ملے گی، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے یہ. لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ظلم بے انتہا، جس کے پاس جو طاقت و قوت ہے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر دوسرے سد کو رونتا جا رہا ہے، اس طاقت و قوت کی بنیاد پر اس کے اندر نہ کوئی انسانیت اور نہ کوئی اخلاقیات نہ کوئی دین، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے وہ، اور وہ ظلم ہو رہا ہے اور اس جو ہے بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیا جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ جا رہا جا رہا ہے، عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی امن نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں امن اگر چاہیے تو تمہیں جو ہے عدل انصاف لانا پڑے گا، اور اگر عدل انصاف نہیں لاؤ گے تم پریشان رہو گے، تمہیں چاروں طرف سے خطرات ہی خطرات ہوں گے، اور تم جو ہے ہمیشہ اس طرح سے بد امنی میں خود بھی رہو گے اور وہ بھی رہے گی. آج بد امنی قرآن کے کیا اصول بتائے، مثلا قرآن نے یہ بتایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صاف قرآن نے بتا دیا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوں گے، تم سے راضی خوش کبھی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہو گئے تم سے. کہ تم ان کو خوش کرنا چاہو کہ خوشی کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہیں کوئی تمہارے خلاف کوئی چالے نہ چلیں، تمہیں نقصان نہ پہنچائیں اور تمہیں اس سے امن ہو جائے، یہ ایسے نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. چاہے تم کتنی ان کی چاپلوسی کر لو، کتنے ان کے نیچے لیٹ جاؤ، کتنے ان کے جوتے پالش کر لو، ان کے شکل و صورت بنا لو، ان کا نظام لے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا یہ. تتبع ملتهم یہاں تک کہ تم اعلان کر دو کہ ہاں میں یہودی بن گیا ہوں یا میں عیسائی بن گیا ہوں، تو پھر شاید یہ ان کے خطرات سے تم محفوظ ہو سکو گے اور یہ تمہارے خواب کو چالے نہیں چلیں گے. لیکن اگر تم نے یہ کر لیا یہودی یا آپ انہی کے دین مذہب کو تم نے اختیار اگر کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اگر تم انہی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا بعد الذی جاءک من العلم، کہ تمہیں دین حق آنے کے بعد پھر ان کی خواہشات پر اگر چلنا شروع کر دو گے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اب اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. ہاں تم نے ان کا نظام تو لے کے آئے ہو، تمام جو ہے مسلمان ملک ہیں، آج ملک ایسے ہیں کہ اسلامی ملک نہیں ہے، صرف مسلمان مسلمان بھر رہتے ہیں، لیکن کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو، اور اس کی وجہ سے آج صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے جو ہے آپ کی بدخواہی چاہتے ہیں ان کو خوش کرنے کا آپ سب کچھ یہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم ان کو کچھ بھی کر لو لیکن اب اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ تو یہ یہ تو تو توہم میں آج رہ رہے ہو کہ فلانا نے تعریف کر لی اسے خوش ہو گئے ہو، فرمایا یہ وہم سے کام نہیں چلے گا، اس وہم میں رہو گے ہمیشہ جو ہے اس توہم میں رہو گے لیکن تمہیں کبھی خیر نہیں ملے گی. تو مسلمانوں مسلمان جو ہے آج قرآن کی صاف واضح تعلیمات ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس واضح تعلیمات جو روز روشن کی طرح سے واضح ہیں، ان تعلیمات جو حقائق پر قائم ہیں، ان تعلیمات پر کوئی اگر عمل کرے گا تو اس کے لیے دنیاوی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے. نہیں تو اب جو پریشانیاں آج لاحق ہیں، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج کا مسلمان یا آج کا انسان ایک توہم میں وہم میں رہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جو ہے وہم کے جو اندھیروں سے نکال کر کے نور حق حق کی روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئے، حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم حق کو دیکھنے والے بن جائیں. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے فرمایا اللہ ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے حق دکھا دے اور پھر ہمیں جو ہے اس حق کبھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وارنا باطل باطل وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کا باطل ہمیں دکھا دے، ہمیں آنکھیں بند ہیں، عقل بند ہیں کہ ہمیں باطل نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں خطرات نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں اپنی ہلاکت نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمیں دکھا دے اللہ تعالیٰ اور پھر ہمیں عقل دے توفیق دے کہ ہم اس باطل سے بچ بھی جائیں. تو مسلمانوں یہ ہر مسلمان کے فرض بنتا ہے کہ جو ہے اپنے گھر کی زندگی میں، ہم ہر انفرادی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد میری فرمانبردار بن جائے، میری بیوی جو ہے وہ میری جو ہے حقوق کو جاننے والی بن جائے، تو ہمیں اس تعلیمات کو لینا پڑے جو اسلام نے دی ہوئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے आपके भी बच्चों को उनको आपका फरमाबरदार बना देंगे। लेकिन आप अल्लाह के बागी बनो और ये तवक्को रखो कि वो औलाद आपके फरमाबरदार बन जाए, बीवी आपके जो है हुकूक अदा करने वाले, ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये हकायक के ऊपर आप आज हो और आप चाहते हो कि आपकी आखिरत अच्छी हो जाए, आपकी जो है माल में बरकत हो जाए, तो आपको जो है ये इस्लाम के उसूल हैं सिद्क और सच्चाई और अमानदारी ईमानदारी, इसको अगर अपनाओगे तो अल्लाह ताला आपके थोड़े से रिज़्क़ बरकत अता फरमा दे। लेकिन अगर आपने इस सच्चाई अमानदारी को इसको छोड़ दिया और झूठ का लिबास पहन के रखा रहा, तो कुछ अर्से के बाद ये झूठ का लिबास उतर जाएगा और फिर आप सब दुनिया देखेगी आप किस तरह से लोगों के सामने भी पर्दा हो गए होइए। तो बरा इस्लाम एक हकायक की दावत देता है, इस्लाम आदमी को वहम वहम से निकालता है और हकायक पर आ जाए। और इस्लाम की यही खूबी है, इस्लाम की तारीख है कि वो लोग जो पहले बुतों को पूजा करते थे और बुतों की पूजा करते करते आपस में जो है एक दूसरे दस्त कुर्बान होते थे, खून रेजी होती थी, जब उन्होंने इस हकायक को मानना शुरू कर दिया तो उन लोगों ने दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर कर दिया। ये तो आज का मुसलमान खास करके हमारे मुल्क पाकिस्तान नए इंतहाई खतरात में है, और वो खतरात इसी वजह से है कि हमने अल्लाह की तालीम को छोड़ दिया, हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया, उस झूठ की वजह से, उस जो है अल्लाह ताला वादा खिलाफी की वजह से हमने दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगियां लगा दी, दूसरे खुश भी ना हुए और अल्लाह ताला जो है उससे भी हमारी नाराजगी हुई। आज जो है हमें हर तरह की जमीनी आसमानी सारी परेशानियां हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाज करे हर खतरा से, और अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को शफा कामिल आजरा नसीब फरमाए और अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़रत फरमाए। वाखिर दुआ अलहम्द रब्बिल आलमीन।
1: सामाईन नाज़रीन, आप समात फरमा रहे थे हजरत मौलाना फारूक सुल्तान साहब का खिताब। सामाईन नाज़रीन, आपने उनका खिताब सुना, आप भी ये कुतुब खोला करें, आप भी पढ़ा करें ताकि आपको दुनिया का इलम भी हो और बाकी चीज़ों का भी इलम हो। सब नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहे, अपनी राय देना चाहे, उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो बच्चियों ने दफ़ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया। यूँ तलअल बद्रु अलैना दफ़ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनज़र रखते हुए दफ़ के साथ नजराना अकीदत बहुज़ूर सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وعلیکم شاہ جی۔
2: وعلیکم السلام
1: شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
2: ٹھیک، تسی سناؤ؟
1: بس شاہ جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک۔ میں کہ میسج بھیجے سے ٹیکسی والا کیڑا سی کار والا
2: جی؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ تمام موسم اچھا ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور آن دا ہول بارش بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، زوردار بارشیں، چونکہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ گس چلتی شروع ہونے والا ہے۔ تو شاہ صاحب سے ہم بہت ساری خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو میرا السلام علیکم۔ موسم بہت پیارا ہے اس وقت، 18-19 ڈگری گرمی ہے اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کبھی دھوپ کبھی بادل، لیکن جو پیش ہوئی ہے کہ موسم جو ہے شام کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بادل برسیں، لیکن کس وقت برسیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور جب وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن طوفان نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کا دنیا اس کی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے۔ تو راجہ صاحب، لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اب چھٹیاں جو ہیں، کافی لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں کل سے ختم ہو رہی ہیں، کافی بان ہیون جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ لوگوں نے مختلف ٹائموں میں چھٹیاں لی ہوئی ہیں، کچھ کی چھٹیاں جو ہیں وہ کل منڈے کو ختم ہو جائیں گی، لوگ بان ہیون میں بچے جانے شروع ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگی، کچھ اسکول وغیرہ جو ہیں وہ 3 یا 5 اگست تک یہ اسکول وغیرہ بھی کھل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جو زندگی کا ایک پیا ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا۔ جی راجہ صاحب۔
1: تو شاہ صاحب، سیاسی پہیا کب چلے گا؟
2: دیکھیں جی، اس وقت دو سیاسی پیا یہاں پہ گرم ہے، ایک ڈینش سیاسی پیا اور دوسرا جو ہے وہ مینگو سیاسی پیا، اور جو مینگو سیاسی پیا ہے وہ تو 8 کو یہاں پہ البرسلون میں دوبارہ لگنے جا رہا ہے، اور وہ 8 اگست کو، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ 14 اگست منائی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے تک چلے گا۔ اور اس کے بعد
1: میرا سب سارا نام جو ہے پاکستان فیسٹیول کے نام سے آتا ہے،
2: یہ مینگو جو ہے یہ پاکستان فیسٹیول کے نام پہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو منا رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ میرا خیال میں 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کر رہے ہیں، لیکن میری نظر سے گزرا تھا کہ 19 کو بھی ایک مینگو فیسٹیول ہوگا۔
1: تو 16 اگست بھی منایا جا رہا ہے
2: جی، اب لوگ دن منائیں گے کوئی 12 کو، لیکن جو آفیشیل جن کے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، جن کا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، تو ان کا تو ہمیں علم ہو جاتا ہے، لیکن جو صرف ابھی اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
1: تو چلیں شاہ صاحب، آفیشیل تو 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں ہوتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، تو وہ تو ہر سال کی طرح اسی طرح ہوگا۔ تو شاہ صاحب، اب جو سیاسی موسم ہے یہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، چھٹیوں پہ چلا گیا ہے، خالی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاستدان؟
2: دیکھیں جی، اس دفعہ سیاستدانوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی لے دے ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ریڈیو پہ ہی ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ اب عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے ینگسٹرز کا، کیا فائدہ ایسے لوگوں کا جو اہل زبان ہونے کے باوجود ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی گڑبڑ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 دن کے اندر 11 दिन के अंदर यहाँ पे 7 छुरियों के हमले हुए हैं कोपेनहेगन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि 11 दिन में 7 हमले होना, और उनके अंदर सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स होंगे, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी करने से
1: ये
2: जो
1: जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
2: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजस की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेके तो 20 साल 21 साल की उम्र
1: तो
2: के
1: सब इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है वो भी तरबियत करे। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता तो बच्चे जो है वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
2: राजा साहब जब लुटेरे घर का सफाया कर जाएं, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अभी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान हैं, जो यहाँ कहते हैं जी ओ जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहां पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहां पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं, बाहर तो निकले अपने, ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
1: शाह साहब हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का वो आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं जरा आता हूँ महंगाई की, आपने बात की है तो शाह साहब अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 200-250-400-500 करोड़ खर्च करके आ जाता है तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा, बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1000-1200 लगा के आ जाते हैं। तो शाह साहब हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, सैर वाली जगह पे चले जाएं, झूलों वाली जगहों पे जाएं, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नजर आती है? किसी मेले में चले जाएं, कोई आपको गुर्बत नजर आती है?
2: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का ताकत या अपनी गाड़ी या दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने,
1: शाह साहब महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
2: नहीं देखे, वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा
1: तो
2: कर लेते थे
1: लोग, स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
2: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं, हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है, हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो कम से कम 25-30-50 हज़ार करोड़ का खर्चा जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ी रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाएं, आप जर्नलिस्ट हैं बाहर निकल जाएं, जाके बच्चों से पूछें आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की, वो ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है। वो अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीज़ों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं ड्रामा आपने लगाया देखा है स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं, यहाँ पे अगर आप जाकर किसी से गवर्नमेंट से बात करें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चियों के हकूक कैसे किस तरीके से पमाल हो रहे हैं, हमारी बहनों के बेटियों के हकूक कैसे पमाल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ का जो कानून है वो उसकी पमाली की जाती है। तो राजा साहब ये जो
1: शाह साहब हम कोई काम कानून के मुताबिक नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ मांस व गिले करने के अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है।
2: देखिए जी, जो भी इस वक्त बात होगी, आप किसी मैंगो फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी डिजाइनर फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी आप गाने बजाने वाली महफिल में चले जाएं, यहाँ के काउंसलर्स आए होंगे, यहाँ के सियासतदान आए होंगे, वो घूम फिर के बात होगी अपने गांव की, घूम फिर के बात होगी अपने इलाके की, घूम फिर के बात होगी कि मैं किस मिनिस्टर को मिसा, मेरा कजन कौन जनरल है, मेरा कजन कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, ये बातें आप सुनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत बिल्कुल बरअक्स होती है।
1: शाह साहब आते हैं, दोबारा वापस आते हैं, शाह साहब आपसे ये सवाल भी करते चले, शाह साहब इलेक्शन जमहूरी इलेक्शन होना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20, 20-20, 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कम्पेन में, करोड़ों अरबों का इलेक्शन हो जाता है, जलसे जुलूस हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जाते हैं, उनकी खातर तो आज़ा होती है, तो शाह साहब जब इतने अखराजात करने के बाद जमहूरियत फिर भी उस तरह की नहीं आती, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग बनते हैं जिन्होंने लगाया होता है फिर वो उन्होंने अपना पूरा भी करना होता है, और उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर देते हैं जी फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, शाह साहब अपने करतूत हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, शाह साहब इसकी क्या वजह है?
2: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शोबाजी के लिए या अपना अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को छुपाने के लिए, जो उनके जो उनका कारोबार होता है उसको छुपाने के लिए वो सियासत में आ जाते हैं, और जब वो सियासत में आते हैं तो फिर उसको ताकत देने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप ये देखें कि आपने बात की तो आपने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, वहां पे एक डॉक्टर एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो है वो एक मामूली से मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ जो उसने डिपॉजिट कराना है वो 25-30 लाख रुपया है। अब वो 25-30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, उसको कौन देगा, क्या उसको कोई बैंक एसयू मिल रही है, बैंक लोन दे रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंजीनियर, इन्होंने एजुकेशन को इतना इतना गंभीर इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि लोग जो है और बस शोशा, और कुछ सबसे बड़े मुजरम हम हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं क्योंकि मैं इस माशरे का एक हिस्सा हूं। हम लोग जब वहां जाते हैं बच्चियों की बेटों की शादियां करते हैं, एक महीने के लिए हम जाते हैं, टोयोटा लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हम वहां रेंट पे ले लेते हैं और फिर वहां पे शो मारते हैं, ये है ये हमारी कोठी। तो अब उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को ये पता नहीं कि हम यहाँ किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ किस तरह। ये अच्छी बात है कि अब आगे हमारी जो जनरेशन है सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ये अच्छे अच्छे ओहदों पे यहाँ पे लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तो हम सब मजदूर थे। यहाँ पे कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन कुछ था।
1: लेकिन शाह साहब आपसे जानना चाहेंगे, शाह साहब आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं और हकायक की रोशनी को सामने रखकर रोशन करें। शाह साहब क्या यहाँ डेनमार्क में रहते हुए अपनी सियासी जमातें होनी चाहिए या डेनिश सियासी जमातों में हिस्सा लेना चाहिए?
2: देखिए जी, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा कि यहाँ पे डेनिश सियासत जो है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खा वो पाकिस्तानी जमाते क्यों ना हो, खा वो पाकिस्तानी जमाते यहाँ रख रहे हैं, उन सबको ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आवाम के लिए यहाँ की सियासत में को सबसे पहले नंबर वन समझे, यहाँ के लोगों को इनवाइट करें जो आइन को समझते हैं, जो यहाँ के तरीकाकार को समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 90% बल्कि 90% ही 99% जिस वक्त हमारे यंग काउंसलर पहली दफा इलेक्ट होते हैं, लोगों को गुस्सा तो लगेगा लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूं, तो उनको ये नहीं पता कि उम्बसमैन जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो यहाँ हमारे कम्यूनों में या अपने मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो उनको किस तरह ट्रिकल करना है, उनसे किस तरह हमने सीखना है। वो जब सीख जाते हैं तो 4 साल गुजर जाते हैं या फिर अगली दफा 4 साल के लिए वो इलेक्ट नहीं होते बदकिस्मती से, क्योंकि उनका उनको तजर्बे थी, या फिर अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अरसे के बाद कहीं अच्छी नौकरी करने उनको मिल जाती है क्योंकि वो सियासत में रहे होते हैं। तो ये याद रखें कि हमारे लोग मेजॉरिटी जो हैं वो दो मकासद हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, एक अपने फैमिली अपने इलाके में अपना नाम रोशन करना, हालांकि ये वो ही काउंसलर हैं जो पाकिस्तान में काउंसलर होते हैं और वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं। असल में बात ये होती है कि आपका कद काठ तब ऊपर जाता है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। चलो पाकिस्तान में तो फिर वो नालियां सड़कें और लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे तो एक मिनट के लिए इनके पास टाइम नहीं कि यहाँ आकर, मैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आपके रेडियो पे ये बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के ये बात करता हूँ कि देखें कि पूरे डेनमार्क के अंदर बाओ सर्विस जो है वो उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनिंग डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्टविज वहाँ उलेनिंग डॉक्टरेट में खुद जाना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये क्यों नहीं लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे।
1: तो शाह साहब इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डेनिश की सियासत से।
2: जी एक दफा फिर कहिएगा।
1: तो शाह साहब इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा सहूलियात है, डेनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
2: नहीं जी, डेनिश सियासत में सहूलियात है अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखे। सियासत जो है आप जब अवाम के लिए, दो किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफिन जो है उनके लिए काम करते हैं, क्यों वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये चीजें जहां सियासत में।
1: तो शाह साहब चले आते हैं ये टेक्सा की तरफ, ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ कि इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
2: ये बिल्कुल, ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए, रख लिए हैं ड्राइवर। और देखें, बेशक ये कानून की खिलाफ वर्दी है कि ये 34-35 हज़ार जो मिनिमम, जो इन्होंने 47,000, अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए डेनमार्क को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे 29,000 करोड़ पे जो है ये लोगों को इन्होंने एनसेट किया, लेकिन उसके साथ कुछ उन्होंने लोजमात ये रखे हैं कि आपको हम जो है थोड़ा सा बोनस वगैरह भी देंगे तो जो है। लेकिन ये जो 29,000 की जॉब है, ये इसके अंदर आपने 5-6 घंटे काम करना है उसके अंदर, क्योंकि आपको काफी पोस्ट भी होगा, आपको फोकस पोस्ट भी होगा आपके लिए, तो वो 7.5 घंटे की जो 7 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि आपने वापस जाके उनके दफ्तर में जहाँ उनका लैगर है, जहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, वहां आपने खड़ी करनी है, तो आपको 7.5 घंटे के अंदर ये सारे मरहले तय करने हैं। तो अब वो सबसे बेहतर है कि बनिस्बत के आप, जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि एक आदमी अपना रॉसकिल्डे से 552 करोड़ के अंदर जो है वो रॉसकिल्डे से लुफ्तावन, कोपेनहेगन लुफ्तावन में टूर लेके गया, और वो भी म्यूर चीज के अंदर। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है? अगर वो वॉनमैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशहूर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात करते थे कि
1: इसका फायदा मालकान को होगा या पब्लिक को होगा,
2: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को ये है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ कर जाना चाहते हैं। आप पहली 2-3 आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2,000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1,500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1,000 में, तो वो बंदा जो है वो 1,000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ओनर भी फॉरनर्स हैं। आप यूलैंड में चले जाए, फ्यूल में चले जाए, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर्स जो हैं, इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनियां जो हैं ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगी, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं। इन्होंने कहना जी ठीक है हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं, ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1,000 का टूर मिले, 2,000 का टूर मिले, नहीं
1: टूर का मसला नहीं है। शाह साहब हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं, चूंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
3: जी अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 5-6 मिनट हैं। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटे करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं, शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% पक्ट है इसके ऊपर फॉरनर्स जो हैं वो डेनमार्क में हो जाए या यूरोप में हो जाए, खासकर डेनमार्क की जो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर्स हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपेनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपेनहेगन की बात करते हैं तो कोपेनहेगन में भी 99% ही है, और उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं। तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको। बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे, बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं, जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं, वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं। सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए, मैं क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरा पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एसएम ग्रीन। एसएम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है, उन्होंने एक ये भी चीजें मंगवाई हैं जो हमारे अपने लोग, हमारे जो हैं जिनको पता कोई से बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी, वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता, छोड़ो पड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी यही कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगलों ने आपके यहाँ आके, जबकि आप लोग क्योंकि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फ्रेनिंग बनाई मजबूत, यानी कि कोई यूनियन मजबूत, जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिशों ने, डेनिश वॉनमैनों ने जो स्टैग थी उन्होंने, जबकि तब पक्षनी भी वॉनमैन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वॉनमैन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों से के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यार ये बात है, 10 साल फिर आ गए, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन ये डेनिश लोगों की, डेनिश ही पीछे जो सिस्टम है, डेनिश मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए जहां उनको देखा कि इसके ऊपर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा, और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है, ना स्टैग यूनियन, कुछ भी नहीं है। वो उनको पता था कोई चीज नहीं उन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही। मैं खाली पक्षों की बात नहीं कर रहा, इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं, सबको ले लेता हूँ। अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे, जहरी बात है, बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है, और वो उन्होंने उन्होंने वो करना था, और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं, पहले उबर ने किया है, अब एसएम आ गई है। 600 गाड़ियों का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं वो 1000 भी लेके आ सकती हैं, और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया। अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है, पहले ये छोड़ा गया मार्केट में, क्योंकि मैं तो वहां गया हूँ और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है, और वाकई ऐसा ही है। 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है, उनके पास अभी है या नहीं है, आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के, वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा। और उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो उसके कहते हैं डेनिश में ते ओनी, वो बात की बात है। अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये कोई ऐसे नहीं है लोगों, वो जो बड़े बड़े जिन जो बड़े बड़े फंड है, ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े मीर लोग होते हैं, ये इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में। और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास, उन्होंने इधर फेंका है, यूरोप में फेंका है पैसा, यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है। उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डेनिश है वो तकरीबन सारी वो ली है, उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है कैसे करना है क्या करना है, वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं। और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना या साल तक। वो हर हर हर हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। और फिर वो, और ये भी कहा गया है, नहीं नहीं जी ये ऊबर उसका मुकाबला है यार, जो भी है आप, और मैं आपको ये भी बता दूं, एसएम ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है, ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है। ऐप और ठाक साफ ये कंग फेमस खालबो हो गई, डैन हो गई, आमा हो गई, जो भी हो गई, वो एक लहदा चीज है, ऐप एक लहदा चीज है। ऐप सब लोगों ने अपना लिया हुआ बना, लेकिन ऊबर ये एक इंटरनेशनल ऐप है। वो ऊबर ऐप जो है, जिसने बनाया था, जिस आदमी ने, उसने वो ऐप बनाने के कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में चलती थी वो टैक्सी ऊबर, उसने वो बेच दिया था। उसको फिर किसी बिजनेसमैन फंड को, बिजनेस जो उन्होंने रनिंग बिजनेस ये खरीद लिया, ये ऊबर ऊबर से खरीद लिया, जिसने ऐप बनाया था। वो सिर्फ ऐप बनाता था, वो उसको चला नहीं सका था उस तरह पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अमेरिका में चल रहा था। उससे खरीद लिया था उन्होंने गालिबन 2008-09 को ये अमेरिका में आया था, 2016-17 को ये खरीद लिया गया था। उसके बाद ये फिर बाहर निकले थे पूरी दुनिया में। ये तो ऊबर की कहानी होगी मुख्तसर। अब SM ग्रीन, मैंने फिर कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो सारा कुछ होमवर्क करके आए हैं। अब उन्होंने ये काम करना है, और यहाँ से आपकी जो बालादस्ती, जिसको मैं कह दूं, मैं ये जरादारी नहीं कहूंगा, बालादस्ती जो थी हमारी वॉन मैंने की, वो आपकी इसको ले पॉइंट को मैं, और ड्राइवरों का कुछ नहीं जाएगा। वहां पर जो ड्राइवर काम करेगा वो फर्स्ट लाइन पे काम करेगा, उसको तो फायदा है। कस्टमरों की तो बात जो कहते थे शाह, वो तो है ही है, कस्टमर को फायदा है वो तो होना ही है, वो तो ऑलरेडी उनको पहुंच रहा है उबर से भी और बॉल्ट से भी। अब इनका मुकाबला होगा, वो एक लहदा चीज है, ये प्राइसें कम करेंगे, प्राइसें करेंगे, लेकिन ड्राइवर जो उसमें चला रहा है जाके, वो वहां पर वॉनमैन आपके खत्म हो जाएंगे,
1: खत्म हो जाएंगे। शायद जरा
3: वो वॉनमैन,
1: शाह अपना कह रहा हूँ, शायद ये गाड़ियां शहर में पार कहाँ होंगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपेनहेगन में।
3: जी मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शाक्षा नेऊन थी 2018 तक, तो अब तब वो, आपने ये बार का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉनमैन पीछे थे, स्टैक फ्रेनिंग थी वॉनमैनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, वो उसके मतलब था कि वो हर साल या 2 साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की हमें जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे। और तब ये हमारे पक्ष से नहीं, हम लोग रोते थे, यार सन बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे थे, बिलिंग क्यों दें, बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है, रोड के ऊपर गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी, उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10-15-20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं, अभी 2-4 दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें, इस टाइम 4300 गड्डी है पार्टी कोपेनहेगन दे बेच, डैन टैक्सी ऊबर और ड्राइवर और आमा और ये बॉल्ट और ये सारा कुछ, ये अपना खिपना चक मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है। और हर रोज मुंशेरिंग होके आपकी 10 से 15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही हैं, क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है। और उसमें ज्यादातर, फिर मैं कहूंगा, ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है, आप यार डेनमार्क में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी ओवर 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है शुरू, वो भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन SM भी आ गई है, उसके नीचे लग के आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, जो पढ़े चला रहे हैं ठीक है, उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया मैं देख के हैरान हो गया, मैं यार ये डैनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको। उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे, कोई नहीं, जो पहले थे चंद, शाह साहब को पता है जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं, कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया। उस जो है जो जो जो दूसरी जो ओवरसीज हैं, जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन, योगोस्लाविन और मैकडोन, ये बहुत ज्यादा थे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं। लेकिन हमारे तो कहते हैं कि ऐसी ना टैक्सी छटनी है,

0: सहूलतें मिलेंगी। लेकिन जो जो फ्यूचर डार्क हुआ है वो हुआ है उनका, जिन्होंने वॉन मैन, अपने आप को वॉन मैन समझते हैं लेकिन वो वॉन मैन नहीं है, उनको एक ट्रिलैल से एक इजाजतनामा मिला हुआ है। जैसे कि हमने 10,000 दफा बताया है कि जैसे आप इंश्योरेंस से ट्रिलैल से लेते हैं कि भाई मुझे नंबर प्लेट चाहिए, मैं आपके पास इंश्योर्ड हुआ, और जिस दिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो पुलिस को कह देते हैं, उसी वक्त आपकी गाड़ी को रोक कर वो नंबर प्लेट उतार लेते हैं, आपका ट्रेल से खत्म हो जाता है। ये जो नया उबर कानून बना था, शायद मैं आपके लिए भी आपको बात बता दूं कि मैं इस चीज के मुखालिफ था कि उबर यहाँ से बाहर जाए। मैं ये कहता था कि उबर को यहाँ रहना चाहिए, अब वो आ गए हैं, ये अमीर आदमी है, इन्होंने सियासतदानों को भी खरीद लिया है, इन्होंने मार्केट को खरीद लिया है, तो अब इनको रहने दें, इनकी मुखालफत ना करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वॉनमैनशिप जो है, जो तो आपके पास जैसे लंदन में ब्लैक कैब चल रही है, जर्मनी में चल रही है ऐसी, तो मैंने कहा वो उसके साथ उबर भी चल रही है, दूसरी कंपनियां भी चल रही हैं, तो आप ऐसा करें अपनी वॉनमैनशिप जो है पुरानी इसको रखें, और बकायदा कम्यून जैसे ह्यूमन नेवन देती थी, ह्यूमन नेवन रहे, और वो जो है वो जो बिविलिंग्स है या वो टिलहाल से जो है वो इशू करें। लेकिन इन्होंने ओपन मार्केट कर दी, हम लोग लालच में आए कि हम तो बहुत ज्यादा गाड़ियां रखेंगे, उनको बेचेंगे और इस तरह, लेकिन आगे से उल्टी जूती जो है वो हमारे चेहरे में पड़ गया। मैं 50 साल से ऊपर मैंने टैक्सी चलाई है डेनमार्क के अंदर, और मैं तो इस चीज से दुखी हूं कि उस वक्त एक वॉनमैन जो था, एक कैब ऑनर जो था, उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी स्वाय अदालत के, उनका वो ग्रीन नंबर प्लेट कोई फ्यान नहीं कर सकता था। अब जो है ये सिर्फ जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो जिस वक्त दिल चाहे बंद कर दें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये डैनिश कानून है। तो सबसे बड़ी शायद इन्होंने ये बात की कि जब ऊबर को इन्होंने कहा कि आप ऑडिट है और आप यहाँ से चले जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, तो उस वक्त उबर जो थी वो ड्राइवर के रंग में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी, और उसके बाद दूसरी सेल्स के भी इसी तरीके से ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। ये इनकी मन पर इन्होंने क्या किया कि ट्रैफिक मिनिस्ट्री ने उसी दिन जिस दिन उबर को बैन किया गया, उसका हाइब्रो प्रेस पे इन्होंने कंट्रोल जो है को बंद किया, उसका जो डायरेक्टर था वो ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसने जॉब ले ली, और वो उसको डायरेक्टर टिल्सियन, ट्रैफिक टिल्सियन का जो था उसको अपना डायरेक्टर बना दिया गया। उसके नीचे ये सारे लॉस वोन और ये वाह वोन और ये सारी टैक्सी सेल्स के उसके नीचे आती थी, उसने कानून ही ऐसा बनाया। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 2019 से लेके 2023 31 दिसंबर 2023 तक हम आपको ये देते हैं कि अगर आप वॉनमैनों को इस कानून के को पसंद नहीं तो आप आए हमारे साथ बात करें, हम इसको चेंज कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें यह कानून ज्यादा मंजूर है क्योंकि अब हर कोई आदमी जो है वो टैक्सी ले सकता है, तो उसकी वजूहत जो है वो अब सामने आ गई है। और अब बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पे मैं तो अपने जितने पुराने वॉनमैन चल रहे हैं या नए यंगस्टर, उनको ये कहूंगा कि खुदा रा मत बने वॉनमैन, बल्कि आपको अगर फर्स्ट जॉब मिलती है, जो शोफर मिलती है, तो वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अप हुई, नए कानून में आप फंस जाएंगे और वो आपकी टैक्सी भी जब्त कर लेगा, और बहुत सारे वॉनमैनों की यहाँ टैक्सी जब्त भी हुई है, तो वो आपको लॉस होगा, आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। यहाँ आपने शौक पूरा करना है, जाए फिक्स तनखा ले, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो वो आपको बोनस भी देंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये जो ग्रीन टैक्सी आई है, मैं इसकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही महफूज है
1: बहुत ही
0: और
1: मुफीद है। चलें
0: फिक्स
1: शाह साहब, आ
0: पेमेंट।
1: गया मैं मियां मुनीर साहब, बड़ा तजुर्बा है, एक ब्रांच के ये दो बार जो है वो चेयरमैन रहे, सदर रहे, और उनको वसी तजुर्बा है पिछले कितने दहाइयों से। मियाँ साहब, आपको अदर आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आप यंग सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
2: जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया रा साहब, सबको बहुत बहुत सलाम, आपको,
3: वालेकुम
2: टीम
3: सलाम।
2: को, सुनने वालों को। मेरे मोहतरम शाह साहब, पिछले कुछ کو یاد

0: मिनट मिनट सुनो, इनकी गुफ्तगू आपका मौजू मैं समझ गया हूँ। स्टार्ट में दोबारा आप सबको बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जी
1: शुक्रिया मियाँ साहब, आपका बड़ा
0: वालेकुम
1: वसी
0: सलाम।
1: तजुर्बा इस फील्ड में। नई एक आ गई है टैक्सी, इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ड्राइवर को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, शहर में ये गाड़ियाँ आ जाएंगी, पार्किंग के मसाइल होंगे, क्या ये जो जॉब मिलेंगे ये पक्के जॉब होंगे, ये ना हो 2 दिन किया तीसरे दिन निकाल दिया। तो मियाँ साहब ये जब चीज़ें आती हैं, ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर मुलाजमत इख्तियार करता है, तो बहुत सारे हकूक भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी मियाँ साहब आप बताएं हमारे सामने नाज़रीन को।
0: जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, बसेस, जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें, एक टांगा से लेकर और अब जो चीज़ों में तब्दीली आई है, इतना मॉडर्न ज़माना। हमने खुद टैक्सी फील्ड में जो देखा, शाह साहब ने, मैंने, कि किस तरह की गाड़ियां थी, कौन से उसमें सिस्टम थे, रेडियो सिस्टम था, डिजिटल सारा कुछ है, आईटी, कंप्यूटर, सारी चीजें। आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हम इंसानों के लिए। अब टैक्सी की जो बात आप कर रहे हैं, टैक्सी एक जरूरत है और चलती आ रही है और चलती रहनी है, इसमें वो दूसरी कोई बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट, इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक हो चुका है। कभी भी इतनी टैक्सी नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी अब होती है। कभी भी इतना क्या कहते हैं आप, ट्रेवलिंग नहीं होती थी जितनी आज। अगर आप देखें फिगर जो आप पढ़े किसी भी एयरपोर्ट के, कोपनहेगन एयरपोर्ट के, तो एक एवरी मंथ एवरी ईयर आपको उसमें बहुत बड़ा इजाफा मिल रहा है। इसी तरह टैक्सी इस्तेमाल करने वालों में डेनमार्क में, मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ, शाह साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैंने पहले दिन से इनके साथ टैक्सी शुरू की थी। और टैक्सी में, यानी कि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि कितनी तब्दीलियां आई, बहरहाल इन जो फिगर की हम बात करेंगे, नया जैसे एक ग्रुप आया उसकी बात करेंगे, तो फिर इस तरह ही है कि कोपनहेगन में किसी जमाने में 1800 और कभी 2100, फिर 1800, फिर 1850, इस फिगर में बहुत अरसा टैक्सीज रही। वो जरूरत थी, वो कंट्रोल था, वो निजाम था, ये 13 कमूनों जो है इनका। फिर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीली आई। आज से कोई 5-7 साल पहले यहाँ ऊबर आई, या 4-5 साल पहले। डेनमार्क का एक टैक्सी सिस्टम है, एक कानून है, पहले भी इस पर बात हुई है और आज भी है। अब आज भी EU से हटकर, बाकी लोगों से या मुल्कों से हटकर, डेनमार्क का एक अपना टैक्सी लॉ है, जो उसे फॉलो करे उसमें तब्दीलियां आई हैं। जो उसे फॉलो करेगा वही यहाँ टैक्सी चला सकता है, और उसमें कुछ बिल्कुल कंडीशंस हैं। लेकिन जो हुआ ये है, मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा, बदकिस्मती से उसमें जो तब्दीली आई, उसमें ये मसलन ऊबर यहाँ आ गई, बोल्ट यहाँ आ गई, अब ये नई जो कंपनी आई इसकी हम बात करेंगे। इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं, मैं कल की बात करता हूँ, मैंने मैं यानी कि कल शाम को टैक्सी से मैंने चलाई है। मैंने देखा है कि रोड पर जब इंसान हो उस फील्ड का हो, तो फिर वो देखता है कि क्या हो रहा, यानी कि सर्विस किस तरह दी जा रही है। और शाह साहब आप देखें कि हुवक्स गेट उसे कहते हैं, कफी भिक्षा, उसके सामने मैं हूँ, गुजर रहा हूँ, तो ये दो तुर्की खड़े हैं एक लाइन में। जनाब इस तरह हो गई, निकल गई मुंह से बात, कोई भी हो सकता था, उन्होंने मुझे रोका। तो एक बंदा जो उनके साथ जाना चाहता था, वो मुझे कहते हैं कद्द से आप ले जाओ, इसलिए कि वो छोटा टूर था। इस तरह नहीं होता था पहले। ये जो चीजें मैंने इसलिए मिसाल दी कि अब वो लोग जो ना सर्विस माइंड थे, ना उन्हें वो उस कानून या उस निजाम को समझते हैं या समझना चाहते हैं, अब वो फील्ड में आ गए हैं। अफरा तफरी फैल गई है। जिन लोगों ने इसे एज ए एक बिजनेस, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, एक अच्छा निजाम बनाया था इस मुल्क के अंदर, उन चीजों को वायलेशन भी की जा रही है। उनमें बहुत सारा अपना भी वो नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये यहाँ के पॉलिटिशियन ने, आप बिल्कुल बात करते रहे, मैं सुनता रहा, मैं भी जानता था, मेरे पर एक जिम्मेदारी भी रही। हमने देखा कि यानी कि यहाँ जिस तरीके से ये दूसरी कंपनीज आई है उनके लिए क्या कंडीशंस हैं। वो पेपरों पर तो वो पूरी कर रहे हैं जो यहाँ का, वो हमारा टैक्सी लॉ है जिसके लिए ड्राइवर के लिए कंडीशंस हैं और वन मैन बनने के लिए, लेकिन इन साइड मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत सारी दो नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, गलत हो रहा। ड्राइवर सर्विस मैन नहीं है मोस्ट ऑफ देम, मैं कहूंगा थोड़े नहीं बहुत सारे। अभी हमने देखा रॉस्किल फेस्टिवल था, मैं भी फील्ड में था कि आप देखें कि मिसाल के तौर पर, फिर मैं मिसाल अपनी देता हूं कि एक बंदा मेरे पास आया मुझसे 11 लोगों से पहले जाकर, थोड़ा सा पाज था, स्टिक के साथ चलता था, पहले 11 लोगों ने उसे बिठाया नहीं गाड़ी के अंदर, अपनी टैक्सी के अंदर, इसलिए कि उसने वहां से रॉस्किल स्टेशन पर जाना था जो लेस देन 100 करोड़ का टूर था। सो ये चीजें जो है, ये है वो कि जो बेतरतीबा और बगैर कोई यानी के सिस्टम को सही मैनों में वो ऑर्गेनाइज करने की या बनाने की कोशिश या एक सिलसिला था, उससे हटकर चीजें चलेंगी।
1: अब इसका हल बताएं।
0: इसका हल ये है कि इस इन चीजों में यानी कि हम तो अपने कंपनी के अंदर भी बात कर रहे हैं, टैक्स अफिया का फेमस हाउस जो है उसकी तो एक कंडीशन है अभी तक, ड्राइवर जो है एक तो अथॉरिटी की तरफ से आपको लाइसेंस जो लेना है, फिर वो जो हमारा फेयर कोड होता है, उसके बाद शाह साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं, हम खुद टैक्सा के अंदर एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हर ड्राइवर को, और ड्राइवर ही पहले बनता कोई या वॉनमैन बनने से पहले भी सेम कंडीशन है कि वो यानी कि पहले टेस्ट देता है जिसमें जुबान का होता है, कम्युनिकेशन जरूरी है, हम डेनमार्क में रहते हैं, डैनिश आनी चाहिए, और दूसरा जो है वो उसे कोरस करवाया जाता है जिसे कि आपने किस तरह हैंडल करना है, सर्विस देनी है। ये तो थी वो, और मैं भी अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम यहाँ। अब मैं जो थोड़ा सा सुना आधा मिनट वो था शाह साहब वो ग्रीन MS जो है टैक्सी उसके बारे में बात कर रहे थे, उसका बड़ा चर्चा हो रहा है, एक नई चीज है वो जो आप देख रहे हैं इस वक्त गाड़ियां आ चुकी हैं रोड में। मैं पिछले दिन भी कहा था मेरी वर्कशॉप की सेकंड गली में उनकी गाड़ियां तकरीबन 250-300 गाड़ी पार्क है, फुली तौर पर तैयार है, अभी उन्हें ड्राइवरों की कमी है, ड्राइवर वो अब पाइपलाइन में होंगे तो फिर ही वो आएंगे ना जो मतलब गाड़ी चलाएंगे उनकी, पर वो काफी कोशिश में आ जाएंगी, कोशिश उनकी बहुत सारी है कि, और उन्होंने तनख्वाह वगैरह फिक्स और वो अच्छी अमाउंट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ सारा सिस्टम, लेकिन ओवरऑल ये क्या होगा। उबर का किसी को पता था आज से 20 साल पहले उबर शुरू हुई अमेरिका में, वो यूरोप में आ गई, इंग्लैंड में उसने यूरोप में सबसे पहले आए, आस्ता आस्ता फिर आज यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर मुल्क में चल रही है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने सिस्टम को मार्केट को कैचर कर लिया। आस्ता आस्ता यानी कि होगा यही कि वो सारी सिस्टम को कैचर कर लेंगे, फिर वो सर्विस जो मैंने कह दी है पहले जो इस वक्त चल रही है, और फिर यानी कि वो मार्केट को कैचर करके फिर ना वो डिस्काउंट रहेगा ना वो सर्विस रहेगी, सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि कितनी गाड़ियां हैं और कितनी परसेंटेज वो लेंगे, जो आज वो लेट्स है 15% ले रहे हैं, कल को वही 25% लेंगे जो किसी और ने नहीं पे करनी, मैंने और आपने एज ए कस्टमर पे करनी है। इसी तरह एक बंदा जो वियतनाम का है जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता है उन्हें पता नहीं कि कहाँ क्या, उसे किसी ने आइडिया दिया है, उसने जाकर एक कंपनी से एक कोरियन कार खरीदी है जो डेनमार्क की टैक्सी का मतलब है कि कार साइज जो कंडीशन है वो भी जरूरी है वो पूरी करती है, वहां से उसने बहुत बड़ा फेर लिया। फिर वो सबसे पहले उसने शुरू ही, दुनिया में कहीं और नहीं है ये ग्रीन टैक्सी, उसने एक आइडिया अपना बनाया कि यूरोप जो है उसके अंदर मैंने जाना, क्योंकि यूरोप का एक सिस्टम है, यहाँ एक जिसरा क्या कहते हैं, एक निजाम चलता है, निजाम जिंदगी चलता है, जिसके उस जिसकी जरूरी जरूरियात है, उस मार्केट में उसने जाना। वो हॉलैंड पहले गया, वहां के कानून जो है उसे इजाजत नहीं मिली, तो उसने जाहिर प्रोफेशनल तरीके से उसने पढ़ा कि ये डेनमार्क की चीजें जो है मैं पूरी कर सकता हूँ, यहाँ जरूरत भी शायद है, तो उसने डेनमार्क आकर अप्लाई किया, उसे इजाजत मिल गई है। अब वो टैक्सी जो यहाँ 600 टैक्सी की तैयारी में है फिलहाल, जहां तक मुझे पता है 400 350 गाड़ी जो है वो तैयार खड़ी है, जिनमें से अभी तो चंदे की चल रही है, हमें पता आ जाएंगी वो भी रोड पर।
1: लेकिन मियाँ साहब, ये
0: बॉस
1: कोपन एग्र में होगी, पार्क कहाँ करेंगे?
0: पार्क जो टैक्सी पार्क होगी रोड पर नहीं चलेगी, वो तो बहुत बड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा, इन्होंने चलना है। टैक्सियां तो मतलब पार्क तो फिर यानी के थोड़ी देर के लिए वो घूमे फिर रहे हैं, जैसे हम घूमे फिर रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, बुकिंग हो रही है, होता ही है। राय साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले आज आराम से बात कर लेते हैं। कोपनहेगन टैक्सा की जो हमारी गाड़ी है ना, मसलन लेट्स 800 है, वो 800 पार्क नहीं होती, उनमें से लेट्स से 200 गाड़ी पार्क होती है मुख्तलिफ घरों में, जैसे मेरी बार खड़ी है, बाकी जो है वो रोड पर होती हैं, जिनमें से लेट्स है कि 60% जो है जो चलती हैं वो बिजी होती हैं कस्टमर के साथ है। सो गाड़ी याद रखें, गाड़ी गाड़ी जहाज और वकील, वकील का कैलेंडर बिजी रहे, जहाज जो है ग्राउंड पर ना हो, और टैक्सी जो है वो कस्टमर के बगैर अगर खाली चलती हो तो नुकसान ही नुकसान है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ।
1: मियाँ साहब, ये तो कारोबारी बात होगी ना, लेकिन उसने दाएं बाएं मुड़ना भी है तो बाकी ट्रैफिक भी होगी, ट्रैफिक के मसाइल कैसे होंगे?
0: देखें ट्रैफिक के मसाइल तो फिर जिसे हम कहते थे कि कोपनहेगन एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें वो लंदन पेरिस की तरह बाकी मुल्कों की तरह ट्रैफिक नहीं होती, यहाँ यानी के बड़ा एक सिस्टम, बड़ा मतलब इजी चल रहा है, माहौलियात सारी चीजें बड़ा कंट्रोल है, तो वो तो चीजें फिर जाहिर है ट्रैफिक में नहीं रहेंगी, बिजी आवर में तो बहुत ज्यादा आप भी हम महसूस करते हैं। तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये चीज
1: चले
0: जानता
1: मियाँ
0: हूँ।
1: साहब, आपका वर्जन आ गया, शायद आपने बातें सुनी मियाँ साहब की, शाह साहब की भी, शाह साहब की भी तरह चलेंगे, क्लोज करेंगे बाद में वो, तो शायद आप किस तरह देख रहे हैं मियाँ साहब की बातों को, कोई और क्या इजाफा करेंगे आप?
2: राजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका मुझे सवाल एक समझ आया थोड़ा सा मेरी भी जेन में, कि आपने कहा पार्किंग कहाँ होगी, वो छोड़ो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। एवेदो हॉलमन में जहाँ पर मियाँ साहब का दफ्तर है उसके करीब ही कैनल हॉलमन है, उधर है इनका बहुत बड़ा, जहाँ पर इनकी 600 400 या 350 गाड़ियां खड़ी हैं, इससे ज्यादा भी खड़ी हो सकती हैं। और उसके बाद जो इन्होंने जो प्राइवेट पार्किंग जो उनकी अपनी है, वही उधर भी 200 300 गाड़ी खड़ी हो सकती है प्राइवेट, 15 टैक्सी हैं। और जैसे वो ग्रिल के अंदर जो फोर्ट बना हुआ है, जैसे फोर्ट खुलता है उसके बाद टैक्सी उनकी पार्क है, उधर पार्क करनी है आपने टैक्सी, जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी, जिस ड्राइवर ने काम खत्म करना है गाड़ी उधर पार्क करनी है, और उसके बाद अपनी गाड़ी वहां से अगर लाया होगा चला के ले जानी है। और स्टार्ट में ये भी है कि इफ द आउच हेल, अगर उनके पास ड्राइवर नहीं है अभी गाड़ियों में, तो वो गाड़ी अपने घर लेके जा सकता है, वो उसका पहले उसे पूछना होगा घर किधर है, किस नवाइयत का है, और वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। ये सारी बातें उन्होंने की थी, और स्टार्ट में जो एक गाड़ी के ऊपर एक शोफेर है तो वो फिर गाड़ी घर लेके जा सकता है, और गाड़ी को जो है ना उसकी देखभाल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उनकी बातों से मैं मुतफिक हूँ, जारी बात है वो इस ब्रांच से 40 45 सालों से मुंसलिक है, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये आपकी मैं फिर बताऊंगा 6 साल ने उनके खत्म होने के बाद हुई हैं, या इसको खत्म करवाया गया है जैसे भी करवाया गया है, अगर वो खत्म ना होती तो आज इसका रिजल्ट कुछ और होता। और उस वक्त मुझे याद है मेरे वाले साहब भी बताते थे, हम छोटे होते थे बताते थे कि यार वॉनमैन थे वो भी, तो वो बताते थे कि 1600 गाड़ियां हैं, 1800 गाड़ियां हैं, 1700 हैं, कभी ज्यादा से ज्यादा 2100 हुई। तो तब और उनके कंट्रोल में इसीलिए था कि आपकी 13 कमूने थी कि इस तरह का जो है जो जो गांधना मच जाए। छोटा सा शहर है, छोटा सा मुल्क है, और आज देख लें 4000 के करीब गाड़ियां हैं इस वक्त, और उसमें और गाड़ियां भी होने जा रही हैं, और ये सारा खुद कुछ बकायदा मनसूबे के तहत किया गया है। कैसे किया है ये अभी शाह साहब ने भी बताया कि उन्होंने शुरू से ही ये तैयार कर लिया था। जो बंदे थे इसके अंदर, डेनिश कुछ इन्वॉल्व, जैसे बताया कि हर मुल्क में हर चीज होती है, यहाँ पर जो है मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से गायसा करा के, दो दो पांच पांच लाख के गायसे भी होते हैं, वो गायसे इस तरह के करवा के प्यार मोहब्बत के अंदर सारे काम लिए जाते हैं, और ऊबर ने ऐसे ही पैसा फेंका है। मेरी बात को आप जरा कहते हैं फॉलो कर जाएं, और इसी तरह जो दूसरी आई है ये भी ऐसी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ आप बड़ी चीजें करवा लेते हैं उसमें। ये हमारे मुल्कों की तरह थोड़ा होता है कि वो डायरेक्ट ही हो जाए हर चीज में, तो वो फिर आपको जो है सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसमें प्यार मोहब्बत के साथ जब चीजें होती हैं, तो वो प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने करना था, और उन्होंने ये मोनोपोली खत्म करनी थी। डेनिश कुछ लोग थे, कुछ लोग इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि ये वोनमेन की जो है ना फॉरनरों के हाथ से खत्म की जाए। इसमें हम माने वो कुछ लोग थे जिन्होंने ये करवा के, पर वरना उनको क्या जरूरत थी कि बाहर से गाड़ियां लेके आए, कभी ऊबर आ गई कभी आ गई। इसकी तो हम अच्छा भला चल रहा था, इसकी मतमल नहीं थी। उन्होंने देखा यार इतने 97% 98% फॉरनर हो गए हैं, 80-90% वोमेन सारे फॉरनर है, और ये पैसा सारा इनको जा रहा है। इसकी तकलीफ थी डेनमार्क में खासकर, मैंने ये देखा है दूसरे यूरोप के मुल्कों की बनिस्बत। मेरी ये राय है, हर की अपनी अपनी राय होती है, यहाँ पर वो एक लिमिट तक किसी फॉरनर को अमीर होने की इजाजत देते हैं, और ये इनका सिस्टम है, वो फिर सिस्टम हरकत में आ जाता है, वो उसके मुताबिक वो फिर वो सिस्टम जो है ना उसको करता है फॉलो, क्योंकि ये आपको कि आगे
1: तो शायद
2: एक
1: क्या
2: मैं
1: ये आप लोगों के सिस्टम में भी कोई मीर जाफर मीर सादक थे?
2: ये तो मियाँ साहब बताए, ये तो मियाँ साहब बताएंगे बड़े हैं।
3: मैं राय साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरे बुरखुरदार शाहिद भी हमारे साथ है। मैं शाह साहब की, मैं तो अभी उठा ही हूँ, जो सच्ची बात है, ये साथ में गर्म पानी पी रहा हूँ, आपने मैसेज लिखा तो हम हाजिर हो गए। शाहिद आपको बहुत बहुत सलाम,
2: जी मियाँ साहब, थैंक
3: मैं
2: यू।
3: आपको सुनता रहता हूँ, आपका तजिया, आपके जज्बात, आपकी सोच, मैं बहुत ज्यादा उसकी कदर करता हूँ। आप एक दलेर इंसान हो, हमेशा दलेरी के साथ बात करते हो, लॉजिक और पढ़े लिखे इंसान हो। मेरे तो आप बेटे भी
1: मियाँ
3: हो,
1: साहब
3: छोटे
1: हमारे
3: भाई
1: शाह साहब उस दिल हैं।
3: भी। नहीं, शाह साहब तो हमारे बड़े हैं, ऐसे ना करें। ये जो ना, ये जो शिक्षा का आप ना किया करें, मैं उस बरखरदार की, शाह साहब के हाथों मैं जवान हुआ हूँ, वो कहते भी होते हैं
2: राजा
3: शाह
2: साहब,
3: मेरे।
2: राजा साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब की जो गोद नहीं है उसके ऊपर मैं, उन्होंने मुझे खिलाया हुआ है, पूछ लें अभी
3: मेरा
2: यार।
3: ये मुझे फखर है, इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद मिलते तो हम अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे इस बात पर फखर है कि शायद जो है ये मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, ये मेरी गोद में ये खेला है। ग्लेर सक्स वाय मेरे अंकल और इनके वालिद, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे वो बड़े भी हैं और हमने इकट्ठे इस फील्ड में काम किया है, शाह साहब भी जानते
1: अच्छा, अब
3: हैं।
1: मुझे पता चला
3: शायद
1: ये इतना समझदार क्यों है।
3: बस मुझे वो पीरों से, मेरे पीर हैं शाह साहब, उनसे ये क्या कहते हैं कि ये मिला सारा कुछ। शायद सबसे पहले तो इसके माँ बाप, जो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और उसके बाद ऐसे ही होता है। और हम जैसे जो दरमियान में, आप जैसों के साथ लड़के रहे तो फिर पीछे रह गए, तो बात तो कुछ इस तरह ही है। शायद आपने बिल्कुल ठीक बात की है, और राजा साहब ने दो तीन दफा पार्क की बात की है। अब राजा साहब शॉर्ट ये करता हूं कि जो डेन टैक्सी है, ये ग्रीन वाली, इनकी तकरीबन 1600 गाड़ी हो चुकी है डेनमार्क में इस वक्त, प्लस इससे भी प्लस है मेरे ख्याल में, मैं आखिरी फिगर नहीं जानता। लेकिन आपने देखा उनकी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, बात पार्किंग की नहीं है, बात टैक्सी सिस्टम की है। टैक्सी एक जरूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत है। उसके अंदर जो बिजनेस हो रहा था, जो निजाम चल रहा था, जो सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए कुछ कंडीशन थी, उनको किस तरह वायलेशन उसमें हुई है, और बाहर से आकर कंपनियां انہوں نے اس سسٹم کو، اس بزنس کو کیچر کر لیا ہے. پہلے ایک اوبر تھا، پھر ایک بولٹ تھا، اب ایک تیسرا فار ایسٹ سے آ کر ایک کمپنی جو ہے اس نے یہاں ڈیرے ڈالی. یہ ہے ہم لوکلز کے لیے، ہمارے لیے ایک پرابلم. اور شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اب میں کل کچھ لوگوں کے درمیان تھا جو جن کا تین چار کا کیوسک کے ساتھ تعلق تھا. آپ کو پتا کیا حال ہے ان کا؟ یعنی کہ بہت برا حال ہے. کیوں کہ یہ ساری ٹھیک ہے اوپن. میں کہتا ہوں شاید کہ جو چیز پبلک کے لیے ایزی ہو، پبلک کے لیے اچھی ہو، وہی ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں پر کنڈیشن لگا دیں، دوسروں کو آپ ریلیف دے دیں، یا نظام اس طرح بنا دیں کہ وہ ان کا سارا کچھ جو ہے وہ جاتا رہے اور دوسرے سارا کچھ لوٹ کر لے جائیں. میں یہ سوچ ہے جی.
1: میاں صاحب آپ نے بات کی، شاہ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب، میاں صاحب آپ کی سرپرستی میں، آپ کی گود سے نکلے، میاں صاحب کی سرپرستی میں شاید گود سے نکلے، تو یہ چیزیں تو بڑی اچھی ہیں. یہ 40-35 سال کا جو تجربہ ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے جب کسی انسان کے پاس تجربہ ہوتا ہے اس نے 30-40 سال پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھی ہوتی ہیں. نئے آنے والوں نے تو پھر وہ 30-40 سال لگائیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو شاہ صاحب ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
4: دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو سچی انفارمیشن دوں کہ جب میاں منیر ڈنمارک میں آیا تھا، یہ بچہ تھا اور اس نے اپنے بچپن میں ڈنمارک کی سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھا اور بڑے اس ہم فون کو اس نے سمجھنا اور سننے کے لیے اس نے ہر آدمی جہاں پہ بھی یہ ایکٹیو ہوا، سوسائٹی ہو یا ڈینش پروگرام ہو، وہاں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو یہ اس کی اپنی قابلیت ہے اور اس نے سیکھا ہے اور یہ سیکھنے سے آج یہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے. اب میں شاید کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. شاید دیکھیں، جب میں نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت 70s کے اندر یہ تھا کہ ڈینش لا یہ تھا کہ تم وہ ایک ہے میدر ان ون مین اسکیل، ایک ہے میدر ٹو ویلنگن. اچھا، یہ پورے ڈنمارک کا قانون تھا جس کے اندر کھائی اولسن نے اس وقت سگنیچر کیے ہوئے تھے، اور یہ لا جو تھا وہ یہ ٹریفک منسٹری کی طرف سے تھا. لیکن پورے ڈنمارک کے اندر آپ یوگلینڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی دو دو ون مینوں کے پاس گاڑیاں تھیں. لیکن کوپن ہیگن کے اندر جو تھی، میاں منیر صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ٹاکسا موٹر میں، دوسری جگہ کوڈن میں، آگے پیچھے ایک ایک بون مین کے پاس 50-50 گاڑیاں بھی تھی، 40-40, 30-30 گاڑیاں بھی تھی. تو یہاں پہ مونوپولی تھی. اور یہ چیز وہ واضح کر رہی ہے کہ یہاں پہ کرمینلٹی جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا کہ رائزے یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ ینگ ہیں، میاں منیر ہیں، ایسے اور چند ایک دوست مل کے ان ساری چیزوں کو، میں آپ کو ثبوت دینے کو تیار ہوں، آپ لوگ آگے جا کے ایکٹیو ہوں. تو آج بھی یہ قانون جو ہے کوپن ہاؤن ٹاکسا جو اس وقت بچی ہوئی سیلس کے بعد اس اوبر اور دوسروں سے، آپ لوگ آج بھی یہ مسئلہ پٹ اپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لاز آپ نے بنائے ہیں، یہ لا فورس لیس جو ہیں، اس کو ڈیمولش کیا جائے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ آپ یہاں پہ واپس ٹیکسی جو ہیومن نیمن ہے اس کو لے کے آئیں، تاکہ یہاں پہ جو آنے والا جو فیوچر ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آبس لوس ہوں گے جو آج کل ٹیکسی چلا رہے ہیں اور یہ جو این سیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، تو یہاں پہ یہ جو کرائم چل رہا ہے یہ اس کو روکنے کے لیے آج اگر آپ اکٹھے نہ ہوئے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اوبر بھی انسیٹ کرے گی، بولٹ بھی انسیٹ کرے گی، اور یہ جو آلریڈی ہے یا کوئی ایک اور کمپنی آ جائے گی، تو پھر یہاں پہ یہ ہو جائے گا کہ 200 crore کا ٹور کوپن ہیگن اوربین گون یا کہیں سے بھی 200 کا ٹور جو ہے میوزک چیز کے اندر آپ لے کے لفتہ من جائیں گے اور ڈرائیور بےچارے کا کیا اثر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، ایک ڈرائیور جو ہے وہ 30,000 میں سے ٹیکس دے کے ہر ایک چیز دے کے تو وہ 20,000-22,000 crore میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، اس نے فیملی لے کے چلنا ہے. تو اس کے اوپر یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ اسٹرائک تو نہیں کر سکتے، نئے قانون کے مطابق آپ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے کسی قسم کی ہڑتال یا اسٹرائک نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوگ اکٹھے ہو کے کہیں سمنگ کر کے کہیں آپ کٹھے ہو جائیں वहां पे आप जो है एक सिग्नेचर्स लेके आप फलके थिंग के जो उम्बसमैन है उनको और फलके थिंग की जो उधर है आप उनको लिख सकते हैं कि ये जो कानून है जो हम एक्टिव टैक्सी शोफेर है या वोनमैन है हमें क्या तकलीफ आता है और इसमें टैक्स पेयर के जो साथ ज्यादा हो रही है डेनमार्क में उसकी वजूहत क्या है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं लेकिन क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं
1: वाला 8,500 पे गुजारा कर सकते हैं तो ये 30,000 पे गुजारा नहीं होगा।
4: देखिए जी जब पेंशन वाला ना उसको 8,000 के साथ उसको बोली यूज से मिलता है उसको बड़ा कुछ मिलता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे तो यहाँ पे पेंशन वाला जो है वो 3-4,000 करोड़ जो उसकी फ्रॉड है उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है रह सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं मियाँ साहब या कहीं मेरे भाइयों के पास मैं बैठता हूँ तो इनको पता है कि शाह साहब की जेब में इतने पैसे नहीं है ये पेंशनर है ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं चोरी चुकारी करना शुरू कर दूं और इससे असरात जो है वो दूसरे मेरे भाइयों पर बच्चों पर पड़ेंगे जो यहाँ डेनमार्क के अंदर रह रहे हैं तो लिहाजा बजाय आप बुरा काम करें आप अच्छाई से रहे और सच बोलें तो इस सच बोलने से आपको ज्यादा फायदा है।
1: ऐसा प्रोग्राम यहाँ साहब खत्म करने से पहले आखिरी जवाब शायद भी दें और आप भी दें तो चूंकि एक आखिरी सवाल भी कर लें। एक तो मैंगो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है वो मार्केट में मौजूद हैं आ रहे हैं एक आजकल में काफी प्रोग्राम होंगे उसके बाद 14 अगस्त
4: भी आ रहे
1: इस पर भी बात करेंगे नए जनरल्स बने 4-स्टार बने कुछ सुपर सीट इस पर भी बात करेंगे कश्मीर पर भी बात करेंगे आप थोड़ी सी सियासत भी जो है वो जमहूरियत की तरफ भी दूसरी जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। जी मियां साहब
5: मैं असल में जो सच्ची बात है मैं फजर पढ़ के लेटा था तो मैंने ना अभी उठा आपका मैसेज आया
1: तो मियां साहब आप क्यों परेशानी में लेटे हैं अब आप काम सदर नहीं रहे इसलिए
5: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ना 2 बजे ईसा मस्जिद में हमारी मीटिंग है तो जोर के फौरन बाद तो मैंने वहां पहुंचना अभी कोई तैयारी नहीं अभी तो मैंने नाश्ता नहीं किया अभी नाश्ता टेबल पर आया तो मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मैसेज किया फिर शाह साहब और शाहिद की बातें सुनकर दिल खुश हुआ। मैं बड़ा शॉर्ट सा मैं माजरत के साथ उसके बाद बात हो सकती है लेकिन ये जो शाह साहब ने अभी शाहिद ने भी काफी बात कर दी मैंने भी कर दी ये सिलसिला इस तरह चलना वो शाहिद की एक बात जो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि ये ह्यूमंस न्यून का जो कंट्रोल था जरूरत के मुताबिक जो टैक्सी सिस्टम था और सर्विस देने का जो उनका एक पैमाना उन्होंने रखा था ड्राइवर को चेक कर करने का बैलेंस रखने का वो अब टूट चुका है वो खत्म हो चुका अब 2 नंबरी हो रही है वायलेशन हो रही है तरह तरह का तरीकाकार अपना लिया गया जबान आती नहीं है आगे पीछे से लोग इम्पोर्ट हो गए हैं और मार्केट जो है वो ओवर उसमें यानी के तादाद से टैक्सीज आ गई हैं। ये है शॉर्ट इसका जवाब। बाकी आपने मैंगो फेस्टिवल की कही मैं 2-3 में मैं गया हूँ और 6 जो अब तक हो चुके हैं और 2-3 अभी और होने जा रहे हैं अल्लाह ताला इन मैंगो की तादाद बढ़ाता जाए और होम पाकिस्तान में यानी के एक बहुत बड़ी ये मेरे तो इलाका जो है सर्दन पंजाब से मेरा तलक है वहाँ के मैंगो जो है सारी दुनिया में मशहूर है तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो है हर मैंगो फेस्टिवल में आते हैं जिधर भी हुआ ब्रॉन्बी हो या अर्बसनोड हो बेलरोप हो बहुत अच्छा लगा अच्छी बात है। मैं भी उन लोगों में हूँ कि इंटरटेनमेंट हो सोशल गैदरिंग हो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिला जाए एक्सचेंज की जाए अपनी अपनी क्या कहते हैं मसरूफियात हालात बात हो तो ये एक अच्छा साइन है। तो बाकी इंशाल्लाह कश्मीर की जो बात आपने की है देखें कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और उस सिलसिला में जो है अपनी अपनी जगह
1: हुकूमत बनाने जा रही है।
5: देखिए वो मैं अब इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहा मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो सफर कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 77 साल से और जो सफर कर रहे हैं हर जगह जो मुश्किल में है मैं तो उनकी आवाज उठाता आया हूँ
6: पिछले 40-45 साल से वही उठाता रहूंगा। अब 5 अगस्त आ रही है, आपको भी पता, आप इन्वाइट भी होंगे, वो इंशाल्लाह हम तरीके कश्मीर जो है वो दिन मनाने जा रहे हैं। ये आपको पता कि इस दिन स्टेटस जो है हिंदुस्तान ने 370 जो है वो चेंज कर दिया, तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह कल फाइनल होगा कि किस जगह वो मेरी वर्कशॉप में होगा या कहीं किसी और जगह जो है वो इंशाल्लाह एक हम अपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जगेती और हिंदुस्तान की जो करतूतें हरकतें जो दुनिया के सामने आ चुकी हैं उन पर बात करने के लिए और अपना मैसेज देने के लिए इंशाल्लाह एक गैदरिंग होगी। उसके अलावा तो आपको पता ही है, बाकी चीजें अगर इजाजत है तो मैं ये कहूंगा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह यौम आजादी का दिन है, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, एम्बेसी में प्रोग्राम होगा मुझे पता है, और उसके बाद इवनिंग में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी कर रही है, स्कॉलोन जो मीटअप हुआ है 9 से 13 जो जगह है उसे, वहां हम बहुत बड़ी गैदरिंग जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं, जिसमें इंटरटेनमेंट भी होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप सब होंगे, तो हम मिलकर अपने प्यारे वतन का जो जश्न आजादी का दिन है वो इंशाल्लाह हम मनाएंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ने आपको पता हमेशा अपना मरकजी किरदार अदा किया है, तो तैयारी उसकी सारी हो चुकी है, अब मेहमान जो है वो पाकिस्तान में वो भी तैयारी में है, और यहाँ हम आपकी दुआओं से आपके
1: हाल में मनाएंगे या खुली जगह?
6: नहीं जी, हमने इस वक्त जो है यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है क्योंकि वेदर और सारी चीजें जो है वो और उस वहाँ कुछ कंडीशंस भी है, हम हाल में मनाने जा रहे हैं। वो हाल जो है वो तकरीबन 1000-1200 बंदे का हाल है और वो हमने भी बुक करवाया हुआ था, तो अब हमने हमारी मीटिंग थी, हमारे सदर साहब पाकिस्तान से तशरीफ ले आए हफ्ता पहले, कल हमारी फाइनल मीटिंग थी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्कॉटलैंड में जो हाल है और उसमें करेंगे, और आप लोगों के तावन और अपने अपने प्यारे वतन के जज्बात में, प्यार मोहब्बत में, मिलीनत में, अल्लाह ताला का नाम, पाकिस्तान से मेहमान, ताजा तरीन सारी जो सूरत हाल है, और एक बेहतरीन किस्म का वहाँ डिनर भी होगा, और उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान से कुछ सिंगर जो है अच्छे वो आ रहे हैं, क्वाली का प्रोग्राम भी होगा। ये हमारा
4: मियां साहब ये भी क्लियर कर देना कि ये फैमिली प्रोग्राम होगा।
6: हाँ शाह साहब देखा ना, फिर आप बुजुर्ग है ना, ये फैमिली प्रोग्राम है, यहाँ फैमिलीज के साथ भी आप आए। मैं आपको पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से पर जोर दावत देता हूँ, हमारी बहनों बेटियों के लिए खास इंतजाम होगा, और जिस तरह भी अगर कोई फैमिली फैमिली के साथ बैठना चाहे तो उसके लिए हम उस तरह का भी यानी कि एक टेबल की शक्ल में अगर आप बैठना चाहते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि जगह काफी है, तो इंशाल्लाह शाह साहब ये
1: स्टॉल भी लगाएंगे?
6: नहीं जी, स्टॉल जो है वो हम नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि स्टालों का जो स्टाइल है वो और है, वो 6-7 पहले हो चुके हैं, 2-3 और होंगे अभी, मुझे पता है कि अलबसरून में ये हमारे चौधरी लियाकत साहब और इनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है 8 अगस्त को, तो ये सारे प्रोग्राम तो हमारे हैं ना अपने, ये एक और तरह के हैं। पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो मैं क्या कहता हूँ, मैं वो नहीं कहूँगा शाह साहब ने कल सुना था इस तरह, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस मुआशरे में जिसके अंदर रहते हैं, यहाँ की सूरत हाल से
1: देख साहब मेहमान खसूसी जो डिसाइड हुए या नहीं?
6: जी बिल्कुल हो गए, मेहमान खसूसी डिसाइड है, आपको पता चल जाएगा अभी, हम सोशल मीडिया पर तो वो तो शाह साहब ने कह दिया, आपने हमेशा तावन किया, आपने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया, मेरे अपने जहन में नहीं था अभी, तो अभी टाइम तो बहुत है, हम सारी डिटेल जो है सोशल मीडिया पर भी
1: सब, आपको तो मौका मिलता है, आप हमारे नौजवान सियासतदान हैं
6: जी, आपने हमेशा मौका दिया और हम इसका भरपूर शुक्रिया भी अदा करते हैं, अपना हक भी समझते हैं, और आप हम सब मिलकर एक दूसरे का हिस्सा है, और इसी तरह पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, डेनमार्क हो, यहाँ का मुआशरा हो, अभी हमने टैक्सी पर आप इतना दान दिया है,
1: मतलब सब आपने एक बात की है यौम यकजहती कश्मीर की, तो वो आपके दफ्तर में होगा या किसी बार पब्लिक प्लेस पे या एम्बेसी के सामने?
6: देखें
5: 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रोग्राम होगा। अब मैं क्योंकि हम तरीके हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं। अभी आपको पता हाल लेने गर्मियों की छुट्टियां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। और ये भी
1: चले मियाँ
5: डिटेल
1: साहब,
5: भी
1: आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप इसमें क्या इजाफा करेंगे?
5: मैं इजाजत चाहता हूँ, अब सॉरी मैं सुनूंगा आपको लेकिन मैं अब बात नहीं करूंगा,
1: चलें
5: अभी
1: चलें,
5: जाकर बैठ
1: ठीक है
5: कर
1: मियाँ साहब,
5: नाश्ता
1: बड़े
5: करूँ।
1: आपका मौकफ आ गया मियाँ साहब।
5: थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद शाह
4: आमीन
5: साहब और आपको और
2: आमीन।
5: सब इसको बहुत
1: शायद आखिरी
5: बहुत
1: बात करें फिर शाह साहब, आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज करें।
2: जी। राजा साहब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई?
1: जी,
2: जी क्या सवाल था आपका, मेरे जहन से निकल गया।
1: इसका मतलब आप थक गए हैं।
2: नहीं, मैं थका नहीं, मैं मियाँ साहब की बातें सुन के मजबूज हो रहा था, तो सारी बात बड़े हैं मेरे से, तो फिर उनकी जब बातों में मैं मजबूज हो गया, इतना ज्यादा मैं अंदर चले गया। फिर आप सवाल करें मुझसे।
1: आखिर में आप क्या कहेंगे, जो कुछ ये कुछ बातें हुई, हमने सब चीजों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं?
2: मैं आखिर में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उधर से शुरू करते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। जो हमारा मेन जो पर्पस था आज का, वो ये था चाकसा वॉनमैन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है,
1: हाँ, बस
2: तो
1: मार्केट
2: इसे
1: की।
2: हाँ मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा से जो कि उन्होंने बैठा दी है और उसके लिए वो दूल्हे ढूंढ रहे हैं। तो वो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि इसमें फिर यही कहूंगा कि हमारा अपना कसूर है एज ए कहते हैं फॉरनर्स का, कि हम इसके ऊपर बकायदा होमवर्क नहीं कर सके, जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज ए वोनमैन। फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा
1: शायद
2: फॉरनर थे।
1: शायद दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।
2: ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज के खिलाफ थे, बार बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुंचे हुए थे और उन्होंने लाइनों में लग के कहा, ठीक है ये उनका अपना अपना अपनी सोच है, या किसी को आप बात तो नहीं कर सकते। तो इसी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अब शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं है, यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सगे। तो आपने अपनी ही छाक्षा ने उनको तबाह किया, खुद ही अपने पैरों से कलड़ा मारकर वोन मनी के चक्रों में। और वोन मनी जो अभिषेक साहब ने बताया कि डेनिश लोग, उन्होंने इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना, 60 साल पहले, कि दो से ज्यादा या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं बन सकते। जब फॉरनर आने शुरू हो गए तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बड़े जो वोनमैन थे, जो तकाय से लेके नैरो पोर्ट तक, उससे लेके वेस्टर पोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोवा के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को, और मेरी ये सारे वोनमैन डेनिश थे, जिनकी 40 40 गाड़ियां, 30 30 गाड़ियां, और टक्सन मोटर होती थी उसके अंदर भी, अलेवन मुझे नाम भूल गया इस वोनमैन का डेनिश का, उसकी भी 60 गाड़ियां 65 गाड़ियां होती थी और उस जमाने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला, हमने, मैं यही बताऊंगा, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, जब हमने कोई स्टैक, यानी कि जो ताकतवर, हमने कोई ऐसी फाइनिंग नहीं बनाई जिसमें हम ये आगे जाके, जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपका आपने बेचारे पैसे देते हैं, और वो जो काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है, और ये लोग भी कानून के साथ करते हैं, इनके इनको पता है हर चीज, ये कानून के अंदर ही, जो इनके ये लॉज है ना, लॉज उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं ना स्कैट होल, उनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है, उनके अंदर से आप ढूंढते हैं चीजें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती है, और वो वकील ढूंढता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70 90% इसमें फॉरनर वोनमैन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, उसमें हम दूर दूर रहे हैं, तो ये फिर इसको आपको हमें आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई ऊबर चला रहा है, ऊबर में भी राम नहीं है, ऊबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाएं। ये अपने मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें सारे अपने मारे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर से पहले कश्मीर तो है, आप देखें पाकिस्तान के हालात, मुआशी देख लें पूरे पाकिस्तान के किधर हैं, किधर चले गए हैं इस 4 सालों में या 78 सालों में, कहीं नहीं बढ़े, हम पूरी दुनिया से उधार मांग रहे हैं। ये तो बात ढकी छुपी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सामने है, आपने खुद ही देखा है मीडिया पर, तो मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपको भी पता है, आप भी कहते हैं मीडिया के अंदर है, तो उधार के साथ आप कितनी देर तक चलेंगे या किसी के आगे हाथ जोड़ के कितनी देर तक चलेंगे? 28 करोड़ की वाम है, एक गयूर वाम है, आपके सूबे हैं, आपकी 7-8 लाख की फौज है, तो हमें किस काम में लगा दिया है, हमारे इदारों को किस काम में लगा दिया इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से उनको वायलेशन करनी पड़ी है इन इन क्या कहते हैं बदबख्तों की वजह से। अब अभी आपने एक सवाल किया, मैं उसका सवाल का जवाब दे, तो आपने कहा कि कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को वोट मिलेगा या वो, यार भाई एक बंदा 45 साल से लगा हुआ है करने, अभी तक यार 80 साल का हो गया, तो उसको तो भाई छोड़ देना चाहिए शर्म के मारे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैंने 45 साल से। अब वो यही कहे आके बार बार के मुझे एक मौका और दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, हर 4-5 साल बाद। अभी भाई साहब उनके हैं, वो वजीर आजम है पिछले 3-4 साल से, तो पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई देख लें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत देख लें, ये यूरोप से भी ज्यादा है, एशिया से भी ज्यादा है, आप जाके देख लें, आपको सारी फिगर मिल जाएंगे अब गूगल में, एशिया की, एशिया में पहले तो जंग का बहाना था, ये नहीं जंग का बहाना है, जंग 3-4 माह पहले शुरू हुई, जंग से पहले भी आपके तेल के यही हालात थे, आप तेल से लेके आप डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपये की कदर देख लें, सारा कुछ ही देख लें, इसको महंगाई कहते हैं। पाकिस्तान में जाए जाके रह के जाके देखेंगे आप, यहाँ से करोन लेके जाएंगे, आपका 1,000 करोन जो है वो कैसे खत्म होता है, जो रुपए में 40-50 हजार या 60 हजार, वो एक दिन में या 2 दिन में खत्म आपका हो जाएगा, इतनी सख्त महंगाई है, और लोग वहां पर कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो कोई जानता है। आपकी क्या कहते हैं मार्केट जो है हर किस्म की स्टॉक है, आपकी क्या कहते हैं ये मकान बिजनेस जो जिसके कहते हैं ये कारोबारी जो जिसमें ये दुकानें बेचने वाले, मकान बेचने वाले, कोठियां बेचने वाले, ये स्टॉक है, बिल्कुल हर चीज वहां पर स्टॉक हो गई हुई है। हाँ ये है कि सर नीचे करके अगर कोई कौम बेशर्मों की तरह चल रही है वो फिर उनका लयाफज है, वो सर नीचे नीचे करके झुका के तो कह रहे हैं जी सी एन जी खुश हैं, फिर उस कौम का जो है ना अल्लाह अल्लाह ही
1: आपको मौका आ गया। शाह साहब शायद ने कह दिया कि जब के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, अब जो है यूरोप भी तारीफ करता है, रशिया भी तारीफ करता है, अमेरिका भी तारीफ करता है, ईरान भी तारीफ करता है, तो दुनिया में नाम तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कजी खामियां तो रहती रहती हैं, आते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हर बहुत जो बात जो है वो गौर तलब है। शाह साहब आखिर में अपना कमेंट्स भी दें और प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
4: जी बिल्कुल, दुनिया सब जानती है कि जो करप्शन पाकिस्तान में है उसके वारिस हम यूरोप में भी बन गए हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पे हम ये काम दिखाते हैं। मैं अपने अल्फाज में ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि एशिया में तो सेकंड नंबर पे रिचेस्ट कंट्री है। अगर कोई मेरी बात से मुतफिक नहीं तो ये उसका अपना जहन है। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक बंदे ने मकान खरीदा है 4.5 करोड़ का, और उसने वो मोहल्ले के अंदर मकान जो खरीदा है वो 4.5 करोड़ उसने कैश पैसे दिए हैं। क्या डेनमार्क के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं क्या हमारे कोई ये साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि उसने जिस वक्त का वो डेनमार्क आया अब तक उसने अपना मकान जो है वो बैंक में किसी सूरत में रहन नहीं रखा। भाई हम किससे पे कर रहे हैं, फ्लैटों की किससे पे कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं वो किस्तों पे लेते हैं। डेनमार्क के अंदर मेरा ख्याल में 8-9% लोग ऐसे होंगे जिनको अबाई मकान मिले हुए हैं या जिन्होंने अपने कैश लेके, यहाँ तो जो मिलियार्ड के 10-12-12-20-20-40-40 मिलियन करोड़ के जो मकान लेते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने, इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो खियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाहेली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्यूनों को, मैं बताते कि यहाँ पे कितने फॉरनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते, तो ये इस तरीके के भूचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेशलूस था डेनमार्क के अंदर। इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रेजा रीजन है, क्योंकि बीबीए भी सुनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया, तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की दिन रात, 20-20 घंटे, 22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नलायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे, जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डैनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का, ये फलाना गुजरात का, ये फलाना पिंडी का, इसकी मदद नहीं, ये करनी है, वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस से लेते थे, तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पे बाई बाई, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो है, ये हमने यहाँ, हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते हैं कि अवेयरनेस दें। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाए और ये सिग्नेचर कर दे, तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए, बगैर किसी चीज के बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे, यहाँ का जो आईन है उसकी खिलाफ वर्दी हो रही है, और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी। क्यों कि सबसे पहले मैं शायद सुन रहा है, मियां साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊबर को बैन किया, तो फिर किस तरीके से सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को लॉ को वायोलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य होनी चाहिए। जब तक आपके पास भविष्य नहीं, आप बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि यंगस्टर्स आए हमसे बात करें, हम उनको भविष्य देते हैं, उनको इस बात पे कायल करते हैं कि ये देखें ये आईन है और ये लॉ फौसले है, और ये फौसले है, आप लॉ फौसले को आज भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पीछे 10 बंदे भी खड़े हो सकते हैं, तो मैं कैसे जाके अकेला जो है इस कानून के ऊपर लड़ाई करूं। ये तो चाहिए इन लोगों को जिनको अब मसला है। अब मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, ड्राइवरों के मसाइल। अब एक आदमी को टूर नहीं मिलता तो वो तो अपनी गाड़ी छोड़ के वो कहेगा कि मैं तो ये जाके जो 30,000 वाली है जब फिक्स हो जाता हूँ तो मुझे तो 30,000-32,000 यहाँ से मिलेगा, तो चलो मैं अपनी फैमिली को तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, आपको एक चीज जेन शीन करनी है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर रहना है तो हमें इस मुल्क की जो कानूनी होल्स हैं जो यहाँ के, उसको हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, वकीलों की बात हो रही है, वकील सारे हर कानून को नहीं समझते, आपको वो जो है वो इनके जो पार्लियामेंट के जो फलके थिंग के लॉज हैं उसको पढ़ते हैं, वो आइन को नहीं पढ़ते। और जब तक आप आइन को नहीं पढ़ेंगे आप लॉ के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये जो गैदरिंग है ये मस्ट करनी पड़ेगी, अगर आप जो है टैक्सियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कल को मैं देख रहा हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या होगा, जब ये 600 नई टैक्सी सड़क पे आ जाएगी, हशर क्या होगा कि वॉनमैन अपना 30-35,000-40,000 का खर्चा जो है गाड़ी का वो नहीं दे सकेंगे और वो कहाँ से कवर करेंगे, बैंक उनको लोन नहीं देगा, दूसरी चीजों पे उनको प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेंगे, वो तो बैंकरप्ट होंगे। मैंने खुद कहा अगले दिन कि मैंने 1,00,000 करोड़ फियर गांस्यू को दे के, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो मैंने अपने सेल्स केयर को, मेरे वकील ने कहा था बैंकरप्ट हो जाओ 5 साल तक कोई, मैंने कहा मैं नहीं होना चाहता बैंकरप्ट, मैं आज तक नहीं बैंकरप्ट हुआ, मैं अब क्यों हूं। तो मैंने 1,00,000 उनको कैश दे के बैंक के थ्रू से, तो मैंने अपने आप को फ्री किया। 62,000 मुझे गाड़ी का घाटा नुकसान हुआ, मैंने वो भी पे किया। बात असल में ये है कि जब लोगों को गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी लोगों की, लोग कहाँ से इनकम लाएंगे, इस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि आज आप 5-5-6 लाख की, 1-1 मिलियन की इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आप भाग रहे हैं, खुदा ना हादसा कल को आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती
1: है। बात आपकी बात में माजत के साथ बोल रहा हूँ शाह साहब, कभी खिलाड़ी भी फेल हुआ, खिलाड़ी कभी एक क्लब में बिक जाता है, कभी दूसरी क्लब में बिक जाता है, खेलने वाला खिलाड़ी कभी नुकसान में नहीं जाता।
4: जी वो आपकी बात सही है, पर ये खिलाड़ी नहीं है, हम लोग जो टैक्सी वॉनमैन है या टैक्सी ड्राइवर है, हम नॉलेज की बेस पे काम करते हैं कि हमें टूर मिले, हम काम करें, हमें ज्यादा से पैसा मिले, हमने पाकिस्तान का भी कल्चर रखना है, हमने यहाँ का भी कल्चर रखना है, हमने बच्चों की शादियां करानी है, उनको इतने इतने लाखों के जहेज देने हैं, तो ये सारा नॉलेज जो हमारे अंदर भरा है इसके ऊपर हम दिन रात मेहनत करते हैं, और उस मेहनत से जो है जो कमाई है उसका अब अजाब हमारे पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। जिन्होंने वेले लिए हुए हैं, रायका हाउस लिए हुए हैं, सब कुछ देखे, कितने लोग, ये शायद तुमको पता है, कितने लोग मूव हो गए हैं स्वीडन के अंदर, कितने लोग चले गए हैं जर्मनी के अंदर, मैं क्यों अपने बच्चों को यहाँ लेके आऊँ, मुझे नहीं रोका इन्होंने, क्योंकि मैं कानून को जानता हूँ, मैं कानून के लॉज होल्स को जानता हूँ। ये चीजें जो है जब हम इनको कहते हैं कि आओ बैठो बात करो, ये कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, और जी मेरे बच्चे भी PhD कर गए हैं, मेरे बच्चे भी बड़े पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे जब मैं उनसे कोई मदद मांगता हूँ तो वो कहते हैं फा लवे हमें, हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो हमें क्या बताएंगे, जब उनको खुद उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं है कानून एक अलग चीज है और आयन एक अलग चीज है, यहाँ का रिटर्न आयन है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, शायद को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मियां मनीर साहब को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मुझे भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ के किंग को भी उतनी प्रोटेक्शन है, कोई फोर्स केस पेंडिंग नहीं, लेकिन जो आईन है, जो लॉ है, जो इन्होंने कानून बनाए हैं उसमें फोर्स केस पेंडिंग है, ये कैसा आईन रखा हुआ इन्होंने, या ये आईन को खत्म कर दे और सारे लॉ फोर्स रहे इंग्लैंड की तरह ले आए कि जो पार्लियामेंट विल चेक करती है हम उसको मानेंगे, तो फिर आयन रखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हमने चैलेंज करना है कि क्या आप अपने आयन के को मुकद्दस समझते हैं या आप जो लॉ फोर्स बना रहे हैं इसको मुकद्दस समझते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने पोलराइजेशन पे बात की थी तो मैंने कैसे इनका मसाले दे दे के इनका मुंह बंद किया था और वो पोलराइजेशन उधर ही खत्म हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपके बात में वजन होना चाहिए। राजा साहब,
2: शाह साहब मैं एक बात ऐड करता हूँ, अगर इजाजत हो आपकी।
4: जी जी जी जी बिल्कुल।
2: शाह साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, जिसे कहते हैं ना अपने स्टाइल में ये हमारे सियालकोट के कि जी असे भी भोले बादशाह हां। शाह साहब ये एक सोची समझी स्कीम, मैं इसको साजिश नहीं कहूंगा, साजिश एक सख्त हो जाएगा लफ्ज, मैं हालांकि
4: मैं साजिश ही मैं भी वही कह रहा हूँ,
2: मैं साजिश ही कहना चाहता था, लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर हूँ, मैं एक वो कहूंगा कि सोची समझी स्कीम के तहत ये सारा करवाया गया है आप लोगों को, हमें वॉनमैनों को खत्म करने के लिए इस मार्केट से, बिल्कुल ये अपने कंट्रोल करने के लिए। डैनिश खुद कंट्रोल नहीं थे कर सकते क्योंकि वो टैक्सी से निकल गए थे, उनके यंग बच्चा कोई टैक्सी में नहीं आ रहा था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो आया ही नहीं है, अगर वो आता तो उन्होंने उसके जरिए फिर खुद ही करना था कंट्रोल डैनिश टैक्सी, लेकिन उन्होंने बाहर से फर्मे ला के ये इतनी नफरत करते हैं आपसे, ये आपको समझ नहीं अब आ रही, आपको सब कुछ समझ आ गई है, हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझ आ जानी चाहिए, जो तीसरी चौथी है ये आपसे प्यार नहीं करते, हालांकि आपने इसको कबूल किया है, इनको हम यहाँ पर रहते हैं, हमने यहाँ टैक्स दिया है 60 सालों से, लेकिन इनको ये आनी चाहिए कि टैक्स दे के कारोबार का उतना ही मौके फराहम करने चाहिए जितने आप डैनिश जो एक थे डैनिश उनको करते हैं। हमें आप डैनिश भी कहते हैं लेकिन हमारे साथ आप ज्यादती करते हैं।
1: शायद अपने खिलाड़ी जब किसी क्लबों में बिक जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं ना।
2: आपके आपका कहने का मतलब है कि मीर जाफर तो राजा साहब हमेशा हमारे सफों के अंदर पाए गए हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं हर जगह से, हर महाज पर। हाली सियासी नहीं है, दूसरे ये जो महाज अभी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक कारोबारी है ना,

0: प्रोग्राम के अंदर उसने खुद एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे हमारी एक लुबना लाही हमारी काउंसलर होती थी, उसने जाके ये बकायदा हुए नेमर के अंदर मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि इनकी वॉनमैनशिप है, बंद करे, ये सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पैसा खा रहे हैं। तो वहां पे
1: तो
0: चार
1: शाह साहब,
0: आदमियों
1: इसका
0: ने
1: अगर प्रूफ है तो बात करें, अगर प्रूफ नहीं है, चूंकि वो मौजूद नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: प्रूफ है, मैंने आपके सामने ने लुबना ने ये कहा था कि ये मैंने है वो नेमन में ये बात की थी कि इसको खत्म करना चाहिए। तो मैंने उसको कहा था कि तुम अकेली नहीं थी उस वक्त, चार आदमी थे। तो उसने कहा कि प्रूफ, मैंने कहा मेरे पास है वो, टाइमिंग है मेरे पास, तो वो खामोश होगी। तो ये आपके पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और मैं कभी ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत ना हो, और ये हकीकत है। और ये चीजें जो हुई और इसकी इसकी वजूहात जो थी वो सबके सामने आ रही है।
1: तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समय नाज़रीन, 25/7/2026 का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हफ्ते का दिन है, मौसम बड़ा खुशगवार है, बादल भी हैं और गर्मी भी है, और उसके साथ साथ सियासी गर्मी भी है जो कश्मीर से हमें आती है। और उसके अलावा सामने नाज़रीन, आपको पता है कि हम कोशिश करते रहते हैं इंफॉर्मेशन के लिहाज से, हमारे थिंक टैंक बात करते रहते हैं, और काफ़ी सालों से हम जो लोकल हमारे मसाइल होते हैं, कम्युनिटी के मसाइल होते हैं, लोकल जो पॉलिटिक्स होती है हमारे जो कोपरहेगन कम्यून में या फ्रेडरिक्सबर्ग में या आगे दूसरी कम्यून्स में भी जो हमारे साथ रिलेटेड होते हैं मसाइल, उस पर हम लोकल बातचीत करते रहते हैं। सामने नाज़रीन, टैक्सी सेल्सकेप जो है एक बहुत बड़ा कारोबारी से अदारा भी कह सकते हैं, कारोबारी कंपनियां भी कह सकते हैं, जो कुछ मर्जी आप इसका नाम दें, लेकिन टैक्स के बगैर जो है वो आवाम का गुजारा भी नहीं है। ऑफिस में बुक्स होती हैं, एयरपोर्ट पर बुक होती हैं, और काफ़ी सालों से मामला चलते रहते हैं। अब कारोबारी लिहाज से एक नई ब्रांच जो है वो आ गई है, उन्होंने 600 गाड़ियाँ भी लॉन्च कर दी हैं, और जो है वो ड्राइवर भी रख लिए हैं, और तनख्वाहें भी मुकर्रर हो गई हैं। तो समझ नाज़रीन, काम की मंडी में जब लोग आते हैं, नए लोग आएंगे, तो डेफिनेट जो है वो सहूलियात भी मिलेंगी। तो हमने कहा चूँकि हमारे बहुत सारे लिसनर जो हैं वो इस ब्रांच से तल्लक रखते हैं, और इस ब्रांच में लोग ये ना कहें अनपढ़ हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें और जो PhD वाले लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन काम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जब आपको पक्की तनख्वाह मिलेगी तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। हमें पता चला है कि कोई 29-30 हज़ार के करीब जो है तनख्वाह मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमने तकलीफ दी है सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब से। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, 18-19 डिग्री है, और बादल भी आते हैं और धूप भी निकलती है, और मौसम जो है वो बिल्कुल मरी जैसा मौसम है। हम ये समझे कि हम गर्मियों की छुट्टी में मरी में आए हुए हैं, और यहाँ की मजेदार जो हवा है उसे मजे ले रहे हैं, और ये हमारे लिए हमारी कुछ किस्मती है, खसूसी तौर पे इस टाइम को देखें जहाँ तेल बहुत महंगा हो चुका है, 17 करोड़ पर लीटर हो चुका है, डीजल जो है वो 17 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। तो इससे जो हमारी वार्म की जो या कोल्ड की जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम घरों में AC वगैरह लगाते थे, इलेक्ट्रिक तो बहुत महंगी हो गई है। ये तो अब जब हमें नए बिल आएंगे तो उसके ऊपर जो लोगों को पता लगेगा कि भाई हमने जो पंखे लगाए थे या AC लगाई थी, तो खुदा की तरफ से ये हमें कोई हमारे पे रहमत है कि मौसम सर्द है और हम लोग इस गर्मियों में इतना AC वगैरह या दूसरी जगह पंखे वगैरह नहीं लगा रहे, तो ये हमारी बचत है। और चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, और बाज चीजों की प्राइस जो है वो बहुत ही, खाने पीने की कम है, लेकिन कुछ चीजों की प्राइसेस इतनी हाई हो गई है कि लोगों की दस्तर से वो दूर है। तो जितना भी आप नजर रखें, ये ना देखें कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें ये वार्निंग दी हुई है कि आप अपने घर में 3 दिन का खाना, 3 दिन का पानी जो है इसको स्टोर करके रखें, कि खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज हो जाती है या कोई ऐसा इंटरनेट सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपके पास कुछ कैश भी होना चाहिए ताकि आप जो ग्रोसरी वगैरह खरीदे या कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो आपके पास कैश हो। तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या इंटरनेट बंद हो जाता है तो वो कंप्यूटर वगैरह तो काम नहीं करेंगे, टिल वगैरह काम नहीं करेगी, लिहाजा आप कैश दे के तो आप अपनी चीजें खरीद सकते हैं। तो राजा साहब, हमें हुकूमत की तरफ ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना और अपने बच्चों का सोचना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सोचना चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हुकूमत के जो इस वक्त एडवाइजर जो हमें वो हमें कह रहे हैं कि जो हमें वो ایک خبردار ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں, ہمیں اس پہ نگاہ ضرور رکھنی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. جی راجہ صاحب.
1: شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا بتا دیا. شاہ صاحب چونکہ آپ کا اس برانچ سے تعلق بھی ہے, ہمارے لسنر بھی کافی تعداد میں ہیں, اور یہ جو نئی ٹیکسی نئی کمپنی جو کاروباری کمپنی آئی ہے اور جس کے لیے اب خبریں ہیں کہ 600 ٹیکسیز بھی انہوں نے خرید لی ہیں اور جو انہوں نے ملازم بھی رکھ لیے ہیں, جو دوسرے ہمارے لسنر یا یہاں لوگ جو کام کرتے ہیں مختلف نیشنلٹیز کے, اس میں ہماری اپنی جو ہے وہ کمیونٹی اچھی خاصی تعداد میں شامل ہے, تو شاہ صاحب نئے جاب آ گئے, نئی تنخواہیں آ گئی ہیں, نیا سسٹم آ گیا, ذرا ہمارے ناظرین کو ہمارے سامعین کو بتائیں تو صحیح.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ 2017 سے ہم فائٹ کر رہے تھے اس ریڈیو پہ, ہر روز ہر ہفتے ہمارا یہی پروگرام ہوتا تھا کہ خدا را باہر نکلے اور پروٹیسٹ کریں کہ بھائی جو ہمارا پرانا ٹیکسی قانون ہے اس کو بچا لیں, اور اوبر وغیرہ اگر آتی ہے تو یہ جیسے انگلینڈ میں بلیک کیب چلتی ہے اور جرمنی میں جو بڑی لوکل کمپنی ہے وہ چلتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ اوبر بھی چل رہی ہے اور دوسری کمپنیاں بھی چل رہی ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنا پرانا وقار جو ہے, ہمارے جو پرانی کمپنی ہے جو قانون ہے اس کو ہم بچا لیں. لیکن یہاں پہ لوگوں نے لالچ کی, ہمارے اپنے لوگوں نے جو سب سے زیادہ تعداد میں فارنر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو پیسہ کمانے کا ایک عمدہ ذریعہ بن گیا, ہم جتنی زیادہ ٹیکسیاں لیں گے جتنے زیادہ نمبر لیں گے اس کو آگے بیچیں گے. لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے خطرہ ہے, آپ اس طرح کی سوچ مت رکھیں. آئیں اس حکومت نے 2017 سے لے کے 2023 31 دسمبر تک یہ مارجن دیا کہ اگر آپ کو یہ لا فورس نے جو ہم نے بنائی ہے اوبر کی, اس کو اس قانون کو اگر آپ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اور یہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے تو آپ اس پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا اور اس کو دولت کا ذریعہ سمجھا. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ جو نئی کمپنی یہاں پہ آئی ہے جس نے اب ایف ڈی ایم اور اس کے ساتھ گورنمنٹ اور اس کے ساتھ بی ٹی اور باقاعدہ ٹی وی ٹو اور دوسروں نے جو ایکسبلر اور دوسرے اخباروں نے اس کی تصویریں نشر کر دی ہے کہ وہ اس جمعے کو 30 جولائی سے یہ آن کمپلیٹلی آن روڈ ہو جائے گی. 590 جو ان کی اپنا گاڑیاں ہیں وہ ایز اے ٹیکسی یہاں پہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور ایودا ہال میں کھڑی ہیں اور کچھ آن روڈ بھی آ رہی ہیں. اور یہ جو ہے یہ گرین ٹیکسی جو ہے یہ ویٹ نام کی, یہ سب سے سستی ٹیکسی ہوگی. اس کو اس کے ڈرائیوروں کو یہ لالچ نہیں کہ کیا ہم کما رہے ہیں, ان کو یہ بس ہوگا کہ جو ان کی سیلس کیپ جو ہے ان کو ٹور دے گی وہ ٹور اٹھائیں گے, ان کو ان کی سردردی ختم ہے. انہوں نے 7.5 کینڈے جو کام کرنا ہے اس کی ان کو 29,000 یعنی 29,000 کروڑ جو ہے وہ فکس تنہا پلس بونس ملے گا. یہ آج کے ماحول کے مطابق یہ خوش آندہ ہے, لیکن یہ ڈنمارک کے آئین کے اور ڈنمارک کے قانون کے سخت خلاف ورزی ہے. کیونکہ چلے ٹھیک ہے جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس میں 29,000 تنخواہ اور بونس جو ملا کر اگر یہ 32-33-40-34-35,000 تک بندے کی تنخواہ نکل آتی ہے تو یہ ایک خوش آئندہ بات ہے. لیکن جو وون مین چل رہے ہیں جن کے پاس وون مین تو نہیں, جو وہ کیب آنر آپ ان کو کیا چاہتے ہیں, وہ وون مین شپ تو وہ تو ویلنگ والی تو ختم ہو چکی ہے. اب یہ جب 590 گاڑی جمعے کو سڑک پہ آئے گی تو آلریڈی یہاں پہ 3,500 سے 4,000 گاڑی جو ہے وہ کوپن ہیگن میں ٹیکسی چل رہی ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جھٹکا لگے گا, ارتھ کوئک آئے گی اور وہ کمپنی جو ہے وہ اپنے گاہکوں کو سستے سے سستا اور جو ہے روٹ وہ مہیا کرے گی. ابھی میں آج پڑھ رہا تھا ایک ڈینش نے جس نے 21 سال ٹیکسی چلائی اور اس نے آج آخری دفعہ ٹیکسی جو ہے وہ کل کھڑی کر دی اور उसने कहा कि आज के बाद मैं दूसरी जॉब करूंगा और मैं ये मेरा टैक्सी से जो 21 साल मेरा इसके साथ वास्ता रहा वो अब नहीं रहेगा क्योंकि ये टैक्सी नहीं रही। और इसी तरह एक बंदे ने ये क्ले किया है कि उसने रॉसकिल्ड से लेके लोस्तावन यानी एयरपोर्ट तक, रॉसकिल्ड से एयरपोर्ट तक 500 कुछ करोड़ में उसने फर्स्ट प्राइस पे ये टूर उठाया है। अब आप ये देखें कि एक वॉनमैन जो है, एक ये जो नई सेल्स के भाई है, इसमें अगर वो इतना टूर, इतना 500 का टूर है तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सेहत पे इसलिए असर नहीं पड़ता कि उसको फिक्स तनख्वाह मिल रही है, वो 200 से लेके जाए 400 से लेके जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदे अपनी गाड़ियां लेके चला रहे हैं, जो लोग अपनी टैक्सी लेके चला रहे हैं, उनके अखराजात जो है इस मुकाबले में वो जीरो हो जाएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब उनको याद आएगा कि कभी रेडियो आपकी आवाज पे तौकीर शाह बैठा होता था और बात करता था। ये चीजें जो है हम इनको पहले से बताते रहे हैं। अब इनके पास सबसे बड़ी जो इनके लिए प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये अब स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि ये अपनी जो सेल्स के हैं उनके साथ इनकी बैनिंग है, ये उनके साथ बाउंड हो चुके हैं, ये उनके साथ इनका वादा है कि ये उनके बगैर कोई काम नहीं करेंगे और नए कानून को एक्सेप्ट करेंगे। तो नए कानून के तहत राजा साहब ये दिल चाहे जब दिल चाहे पीछे से कंपनी इनका नंबर बंद कर दे और इनको कहे कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे लिहाजा हम आपका नंबर बंद कर रहे हैं, ये अदालत में भी नहीं जा सकते, ये अपनी गाड़ी ले घर जाए, उसकी लीजिंग देनी है, उसके पैसे देने हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें से ये निकले। क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे से इस प्रॉब्लम में से, इस नए कानून से निकला था। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे अपनी सेल्स के बंद करनी पड़ी, तो मुझे 1,00,000 क्राउन जो है वो पास से देना पड़ा सेल्स के को, फिर गांव स्वीटू को, और प्लस मुझे जो अपना कोर्स होने से और दूसरी चीजों से होने से बचने के लिए मुझे 62,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिससे मुझे गाड़ी का लॉस हुआ। तो ये जो 1,62,000 करोड़ मुझे लॉस हुआ, ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना आपको टैक्स वापस करेगा, ना आपकी कोई मदद होगी, ना कोई चीज होगी। आप लोगों ने 5-5, 6-6 लाख की, 7-7 लाख की गाड़ियां डाली हुई है, खुदारा होश के नाखन लें। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते। मैं आपको ये कभी भी राय नहीं दूंगा कि आप हड़ताल करें, आप कुछ करें, क्योंकि आपका नुकसान आपका होगा और आपका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो हम सिर्फ ये राय देते हैं कि अभी भी आप मुतहित हो जाए, अभी भी आप सिग्नेचर्स लें और आप कोशिश करें कि आप किस तरीके से इससे जान छुड़ाते हैं। अब ये 590 जो टैक्सी जो फ्राइडे से सड़क पे आ रही है, इस जुमे से जो आ रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको आप देखेंगे कि आपके नाक के सामने से उबर और ये ग्रीन टैक्सी जो है, ये 2-3 मुख्तलिफ नामों से आपके सामने आ जाएगी और ये आपके नाक के सामने से टूर उठा कर लेके जा रही है और आप खड़े हैं। आप वो जो इतनी इतनी महंगी लीजिंग गाड़ियां ली हैं, इतनी इतनी महंगी इंश्योरेंस है, वो अखराजात आप कैसे देंगे? क्या आपके लिए कोई सर्वाइवल है? इसका हल बेशक आप फिमत हाल में है या आप किसी भी सेल्स के में है, इसका हल जो है ये अब क्रिसमस से पहले सबको नजर आ जाएगा। इसका हल सिर्फ ये है कि आप अपने कंपनियों से बात करें कि वो अब इकट्ठे हो और जो एक्सपर्टीज हैं, जो इस कानून को जानते हैं कि इसको किस तरह डिमोलिश करना है, इसको किस तरह खत्म करना है, इस कानून के ऊपर बात किस तरह करनी है, सियासतदानों से बात किस तरह करनी है, पार्लियामेंटेरियन से बात किस तरह करनी है, ये जो जब तक आप आइन और जो कानून बना हुआ है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसके दरमियान जब आप इन एक्सपर्टीज को लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए अभी भी आसानी है कि आप अपनी जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राजा साहब, मैं लोगों को बताता चलूं कि 2022 और 2023 में जो थी, यहाँ से कम इनकम जो थी डनमार्क के अंदर काम करने वालों की, उनका बनता था 30,990 डेनिश क्राउन, यानी कि 30,000 नहीं होना हेल्फिम्स को होना, और उनका जो सालाना जो इनकम बनती थी वो बनती थी पर पर्सन बनती थी डेनमार्क के अंदर 371,900 क्राउन, यानी नियरली 3,000 करोना। तो 25-26 में इन्होंने वो बढ़ाकर कर दी 4,000 करोना। इसीलिए तो ये स्टैटिस्टिक्स में दुनिया को बताते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। और जो 25-26 में इन्होंने 4,000 किया, तो इसके पर मंथ ये महीने किया, तो इन्होंने कम से कम जो इनके बंदे कमाते हैं तो उसके अंदर जो है ये एक महीना काम करने वाले के लिए 5,64,000 कम से कम जो है वो इसकी सालाना इनकम होती थी। लेकिन अब अगर आप 29,000 या 30,000
1: ये जो 30 जुलाई डेनमार्क में बाकायदा सर्विस जो है होने जा रही है, इसका आगाज कोपेनहेगन से होगा। पहले मरहले में तकरीबन 600 इलेक्ट्रिक टैक्सियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। ये तकरीबन गाड़ियां इस नाम से होंगी, ज़्यादातर जो है टैक्सियां हैं विनफास्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जिनमें मुख्तलिफ मॉडल भी शामिल हो सकते हैं, VFE 34, VF5, दीगर जदीद इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी। शाह साहब, ड्राइवर कैसे बन सकते हैं? अगर आप ग्रीन GSM के साथ काम करना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको ये चीज़ें दरकार होती हैं, डेनिश टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस, साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड, CPR नंबर, डेनमार्क में काम करने की कानूनी इजाज़त, बुनियादी डेनिश या अंग्रेजी जबान की सलाहियत, कमाई कितनी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है, अतमी तनख्वाह कंपनी कितने देती है? लेकिन डेनमार्क में टैक्सी ड्राइवर अमूमन बुनियादी तनख्वाह के साथ बोनस या कमीशन की बुनियाद पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी होने की वजह से ईंधन के अखराजात भी कम होते हैं। तनख्वाह और कमीशन की तफसीलात कंपनी की जानिब से मुलाजमत के वक्त दी जाती है। मुसाफिरों के लिए सहूलियात, मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग, 100 इलेक्ट्रिक और माहौल दुरुस्त सफ़र, 100% मतलब है 100% टैक्सी नहीं, 100% माहौल, डिजिटल अदायगी, जदीद और नई गाड़ियाँ। शाह साहब, अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, GSM जो है ग्रीन GSM है, तो शाह साहब बुनियादी तनख्वाह एक बंदे की या एक ड्राइवर की सहूलियात के साथ कितनी हो सकती है तकरीबन?
2: देखिए जी, जो आपने बात की आपने बिल्कुल सही बात की है। ये जीए ग्रीन GMS आने के बाद और यहाँ के जो हालात हैं, इससे इसका निचोड़ एक ही निकला है कि यहाँ पे अब पानी गंदला हो चुका है। ये इसलिए इन्होंने पानी गंदला किया है कि इस कानून के तहत जो है वो लोग अब मुलाजमत करेंगे और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको मिलेंगी और लोगों को सर्विस जो दी जाए। अब ये जो सबसे ज्यादा फॉरनर जो थे वो टैक्सी चला रहे थे और कैब ऑनर बने हुए थे और उनके पास उनकी जो इनकम सी जो वो कभी सही तौर पे यहाँ आगे पीछे कुछ लोग सही शो करते थे, कुछ लोग आगे पीछे, क्योंकि यहाँ आपको ये बताता चलो कि पिछला जो लॉ गिवनिंग था, जो टैक्सा नेमन का कानून था, उसके अंदर वोनमैन को बहुत बड़ी सहूलत थी। उसके अंदर यह था कि वोनमैन जो था, जब उसको बबीलिंग दी जाती थी तो वो बबीलिंग जो है ना पुलिस ले सकती थी ना टैक्स वाले ले सकते थे, उसके लिए उसको अदालत में लेके जाना पड़ता था और बबीस करना, सबूत देना पड़ता था कि ये इस आदमी ने ये घपला किया, और ये अदालत में होता था कि क्या उस बंदे के साथ वो कोई जुर्माना वगैरह करके उसको छोड़ दिया जाए या उसको कोई वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए या उसे वो बबीलिंग वापस ले लिया जाए किस हद तक, ये सारा कुछ अदालतों पे डिपेंड करता था। लेकिन अब जो है ये कानून बदल के इन्होंने मिनिस्ट्री को दे दिया। मिनिस्ट्री ने क्या किया कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको ये अख्तियारात दे दिए। अब आप ये देखें कि एक बड़ी कंपनी बाहर से, जितनी भी कंपनियां आ रही है सब बाहर की है, डेनमार्क की कोई कंपनी नहीं है, सब बाहर की आ रही है। और अब इनका मुकाबला जो था आखिर एक सेल्स के रह गई है जो कोपेनहेगन की कंपनी है, लेकिन अब उसका भी कुबाड़ा हो जाएगा और वो भी जो है बहुत जल्द जो है वो हाथ पांव उनके सुन हो जाएंगे और वो छोड़कर इसको। मैं तो ये समझता हूँ कि वो ड्राइवर जो है, अभी मेरी कल शाम को 3-4 ड्राइवर से बात हो रही थी,
1: मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक देन टैक्सी के पास भी 600 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, क्या बात सही है?
2: जी बिल्कुल, सबके पास है गाड़ियां हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या वो ये जो जी ड्राइवरों की अब कमी आ गई है, ड्राइवर नहीं मिल रहे, क्योंकि ड्राइवर चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी हो, ड्राइवर ये चाहते हैं कि हमें ये सिक्योरिटी हो कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी के पैसे मिले, हमें पहले दिन से बीमारी के पैसे मिले, हम ये नहीं कि वोमन कह के जी तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। ये जो नई कंपनी की जो शरायत है ये बहुत ही खुशानदार शरायत है ड्राइवर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर लेस पे है तरह जो है ये डैनिश आइन के खिलाफ है, इसमें मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगा। लेकिन जो उनका असूल है बाकी तरीके जो है उनके कि हम आपको देंगे क्या नाम है फायदा देंगे, आप बीमार हो जाते हैं, आप अनसेट हैं, आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आपको छुट्टियों पे विद पे मिलेगी, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दूसरी कंपनियां जो हैं या वो बंदे जो कहते हैं जी कि हम अभी तक वॉनमैन हैं, क्या वो अपनी अपने अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकेंगे? क्या जो आवाम है गाग जिसको हम कहते हैं वो सस्ती टैक्सी और अच्छी टैक्सी और एक ऐसी, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कल भी पढ़ रहा था कि बेशुमार लोगों ने ये डेंशो ने लिखा है कि ये जो फॉरनर्स की टैक्सी थी, ये जो फॉरनर उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है फॉरनर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रेप होते थे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे, ये अब ये चीज खत्म हो जाएगी, अब हम ऐसी टैक्सी में बैठेंगे और ऐसी टैक्सी हम चाहते हैं डेनमार्क के अंदर के जो कंपनियां चलाएं और कंपनी जो है वो जवाबदेह होगी। तो पहले तो दूसरा सिस्टम चल रहा था तो इन्होंने सारा सिस्टम जो है उसको खत्म किया है। तो अब राजा साहब जो बातें हमने वार्निंग दी थी, एडवाइसल दी थी इन लोगों को, खुदारा मतलब प्रस्ताव बने सामने आए और अपने जो है इस वॉर्मैनशिप को इसको बचाएं। तो अब ये झटका जो है जुमे को लगने जा रहा है और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा डीएसबी और बड़ी बड़ी जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ये तो अब ऐसी सस्ती गाड़ियां लेंगे जिसके अंदर यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर बैठे हुए हैं, एंस वाली ड्राइवर बैठे हुए, उनको पता है कि हमने पूरी तरह लेनी है, उनको इस बात नहीं परवाह कि ये 100 करोड़ का टूर है या ये 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का टूर, इससे इसका उनसे लेना देना कोई नहीं, वो अपनी ड्यूटी करेंगे जैसे वो फर्मों में करते थे, फैक्ट्रियों में करते थे, 7-7.5 घंटे काम किया और उसके बाद खुदा हाफिज गाड़ी खड़ी की और अपने घर चले गए। और ये एक बहुत अच्छी खुशानदा बात है और इनके लिए, लेकिन ये उनके लिए जो जिन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी हुई है।
1: अब ये सवाल ये पैदा होता है, चले पहले लोगों ने गाड़ियां ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, बड़ी महंगी गाड़ियां ली, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो यहाँ सड़कों पर गाड़ियों का मौजूद नहीं है। शाह साहब

0: दूसरी कंपनी में, फिर उनके लिए वापसी का रास्ता क्या हो?
1: मैं कह रहा हूँ जी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने आप को जो है इस कंपनी में चले गए हैं, उनको पहली फुर्सत में 3,000 ड्राइवर चाहिए थे और मेरा ख्याल में कि उनका जो है वो काफी, क्योंकि अगर वो 590 टैक्सियां निकालते हैं तो उनको कम से कम 16-1700 ड्राइवर जो होते हैं दिन रात के लिए उनको चाहिए थे और वो उन्होंने पूरे कर लिए, उससे ज्यादा ड्राइवर वो रख रहे हैं ताकि वीकेंड पे जो लोग छुट्टियां करेंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमने वीकेंड में भी काम करना है, नहीं, आपने 5-6 दिन जो मुकर्रर है, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, और इसी के असूल पे जो वो काम कर रहे हैं तो उनको जो तनख्वाह मिल रही है और फिर उसके ऊपर जो बोनस मिल रहा है ये उनके लिए अच्छा है, फिर उनको हर किस्म की छुट्टी है। सबसे बड़ी छुट्टी उनके लिए यह है कि उनकी अपनी कैब नहीं है, उनको ये मसला नहीं है कि मैं वर्कशॉप में गया तो वर्कशॉप, वो वर्कशॉप तो कंपनी की अपनी है, उन्होंने अपनी गाड़ियां ठीक करनी है, उसको कहना है कि भाई ठीक है तेरी गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया तो उसको तो पे मिलेगी। अब मसला जो खड़ा हो गया है, जो दोबारे बर्लिन खड़ी हो गई है, दोबारे चीन खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो हमारे भाई वॉनमैन बने हुए, अपने आप को वॉनमैन कहते हैं, सॉरी टू से मैं माफी चाहता हूं माजत के साथ, उनका क्या बनेगा जिन्होंने इतनी इतनी महंगी गाड़ियां ली हुई है, जिनके अपने नंबर हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या वो इस गर्मी के अंदर, ये जो अगस्त के आ रहा है आगे से यूल फेयर ये आएगी उसके अंदर, फिर जनवरी फरवरी आएगी, क्या उसके अंदर वो इतना पैसा, मैं खुद वॉनमैन रहा हूँ, मैं खुद सेल्सकेप चलाता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जो सज्जय खब्बे की मारते हैं ना वो मैं, इसके अंदर कितना मुश्किल हो जाता है, आपको ड्राइवर नहीं मिल रहे, आप ड्राइवर लगा नहीं सकते। मैंने कितने लोगों के साथ बात की है कि यार आप बेकार, उन्होंने कहा शाजी सर जापाल आपके लिए अच्छी, और इवन टर्किश जो है वो भी चले गए, बहुत ज्यादा फॉरनर जो थे वो अब इसमें जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये एक फिक्स नौकरी है, ये वैसी नौकरी है जैसे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 5 दिन काम करना है, आपको फिक्स तरह मिल रही है, आपने कोई सड़कों पे से सवारी नहीं उठानी, आपने रेडियो टूर उठाना है, अगर सड़क से कोई मिल गया तो उसका आपको बोनस मिलेगा, बाकी जो गवर्नमेंट उससे अगर कंपनी आपको दिन में 10 टूर देती है या 5 टूर देती है तो उसका आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको तो अपनी तरह मिल रही है, वो आपको मिल रही है, तो ये चीजें ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ ये हो गया कि अब जो वॉनमैनशिप थी वो खतरे में हो गई है और जो पुराना कानून था वो हमारे लोगों ने खुद खत्म कराया है, और इस बात पे जी कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम डैनिश में बहुत ज्यादा माहिर हैं और अब जो चीजें हैं वो सामने आ गई है। जी राजा साहब,
0: शाह साहब, ये जो फलके पेंशन वाले हैं उनके लिए क्या होगा? क्या वो 20-25-30 घंटे काम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे या छुट्टियों में काम करेंगे या वो 37 घंटे भी फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, ये कोई पता लगा आपको?
1: जी बिल्कुल, वो जो फलके पेंशन वाले हैं वो काम कर सकते हैं और फोर्सेस पेंशन वाले जो हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद में रह के इससे ज्यादा आप भी कर सकते हैं और आप कितने घंटे जो है, अब क्योंकि अगर आप काम करेंगे टैक्सीज के अंदर तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे की वो चेकअप होगा कि भाई ये कितने जा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होगा ऑटोमेटिकली, ये नई कंपनी जो है ये कितने पैसे देती है बंदों को वीकेंड में चलने के लिए या दूसरे कितने देते हैं, लेकिन आप काम कर सकते हैं। अगर आप फलके पेंशनिस्ट हैं तो फिर वो आपको, अगर आप फुल टाइम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो आपको ही सिर्फ ग्रीन ग्लोब जो होता है ना वो आपको देंगे, आपको दूसरे जितने डिलक्स वगैरह मिलते हैं वो आपके खत्म कर देंगे और आपको कहेंगे ठीक है कि आप जाएं। अगर आपको 5,000 या 6,000 या 7,000 मिल रही है वो, फिर इसके साथ ये होगा कि जो आपको जो फोर्सेस पेंशनिस्ट या जो पेंशनर हैं इनको जो बोली यूल से मिलता है, यानी कि जो पैसे वो देते हैं कि भाई आपका किराया बहुत ज्यादा है ये वो खत्म हो जाएगा इससे, लेकिन अगर आप सिर्फ वीकेंड में
0: चल, ये तो नेचुरल बात है शाह साहब, अगर बात बिलफर्ज में मिसाल के तौर पर चले आपका नाम ले रहे हैं, अगर आप फलके पेंशन है, अगर आप अब गाड़ी चलाते हैं तो कितने घंटे चला सकते हैं जो आपकी पेंशन पर आपके जो छिलेगे इस पर कोई फर्क ना पड़े?
1: देखिए, अगर सिर्फ मैं सोचता हूँ कि

0: मैंने वीकेंड में चलानी है, पहले तो मुझे काम कौन ही देगा अगर मैं फुल टाइम चलाता हूँ। और दूसरा ये है कि जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, इसके मुताबिक ये है कि आपको चेक एंड बैलेंस जो है ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कर दिया, ये देख रहे हैं। इससे मुझे जो इजाजत होगी अगर मैं वीकेंड में काम करता हूँ तो मैं पूरे महीने के अंदर जो है वो 7,000 से ऊपर का करोड़ जो है वो नहीं कमा सकता। अगर मैं 7,000 से ऊपर कमाऊंगा तो वो उसका मतलब ये हो गया कि वो मेरी जो सिर्फ ग्राउंड क्रॉप है वो देंगे, बाकी में कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो फिर मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी जो घर की इनकम है वो स्टिया कर जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो उसके अंदर ये होगा कि आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा, एक आपकी इनकम पे टैक्स देंगे, एक आप इनकम टैक्स देंगे जो आप पेंशन में कटौती करा रहे हैं, फिर दूसरा वो देखेंगे कि आपके घर के जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, घर में साथ रह रहे हैं, उसकी हाउस होल्डिंग जो है उसकी इनकम कितनी है। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और इससे हमारे लोग जो है वो नुकसान में हो जाते हैं। अब डेनिशों के लिए ये है कि डेनिश जो है वो हमारी तरह झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं ठीक है भी वो अवेयर फंसा है, वो कहते हैं जी कि ठीक है वो तो हमें उनको तो परवाह नहीं कि हम शादीशुदा करके साथ रहते हैं या नहीं रहते, वो लादा लादा भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली इस गवर्नमेंट ने जो इशारा किया था 2022 के अंदर और उसके फॉर्म है जो कानून इन्होंने बनाया था, वो खसूसी तौर पर ये देख रहे हैं कि ये जो फॉरनर्स हैं ये ज्यादातर, क्योंकि इसमें जो हम बाद में इस पर डिबेट करेंगे जरूर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि लोग जो हैं वो डेनिश तलाक ले लेते हैं लेकिन लोग मियां बीवी इकट्ठे रहते हैं और ये साबित करते हैं अपने सामफोन में अपने लोगों के, ये कहते हैं हमारा ये जुर्म है। और इस पे वो काफी तहकीक कर रहे हैं और काफी लोगों को जुर्माना भी हुआ है और अब इसके ऊपर वो कितनी सख्ती कर रहे हैं करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
1: चलें शाह साहब आते हैं, शाह साहब इतनी गाड़ियां और आ जाएंगी 600 के करीब आ जाएंगी तो शाह साहब पार्किंग कहाँ होगी? शहर तो उतना ही है, कोपेनहेगन से चलेंगी, शहर तो उतना ही है।
0: जी ये अब कोपेनहेगन कम्यून का मसला है कि ये अब पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसको ये सोचना पड़ जाएगा कि मैंने जो पहले अपना टिल्डाल से, मैं प्रवीरिंग नहीं कहूंगा, जो पहले मैंने टिल्डाल से इजाजतनामे मैंने दिए थे वो मैंने दिए थे कि पूरे डेनमार्क के अंदर चले, वो तो वो सारे के सारे कोपेनहेगन में ही रह गए और बड़े शहरों में रह गए, अब छोटे जगह में नहीं। तो अब ये जो नई गाड़ी आ रही है ये भी, तो अब आप ये खुद अंदाजा लगा रहे कि जब 3500 से लेके 5000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन के अंदर घूमेगी, तो इस टैक्सी के अंदर अब काम उसको मिलेगा जो सबसे सस्ती होगी। अब यहाँ पे ये मुकाबलाबाजी होगी कि हमारा मीटर कितने पे चलता है, हम कितनी सस्ती देते हैं, हम फास्ट टूर देखे, ये जो फास्ट टूर वाला काम इन्होंने किया है ये डेनमार्क के अंदर जो है ये इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि एक ड्राइवर, अगर ये जो अभी मैं रॉस किल्डे का पढ़ रहा था और मैंने आपको भेजा भी है वो कटिंग मैंने आपको भेजी भी है ताकि कोई कहे कि शाह साहब झूठ बोल रहे हैं तो वो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। रॉस किल्डे से लुफ्त हवन का 530 या 540 करोड़ का वो टूर लेके गया और अगर वो रश आवर्स में जा रहा है तो वो बेचारा जो है वो थका हुआ है, 40-50 मिनट का टूर है और वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो वॉनमैन अगर वो खुद भी वॉनमैन है तो वो अपने अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा, वो किस तरीके से गाड़ी के अखराजात जो है वो एक घंटे के लिए अगर वो 500-600 करोड़ कमा रहा है तो उसको तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि जब वो इस सारी चीज को डील करेगा इंश्योरेंसों में गाड़ी के खर्चे में सारा कुछ, तो उसको क्या मिला, उसको 80 या 90 करोड़ से जायद या हद कर दें आप तो 100 करोड़ उसको इस पूरे टूर का जेब में आएगा, तो उसको क्या फायदा हुआ। ایک گھنٹے میں 100 کروڑ, اس سے اچھا ہے وہ جا کے تو
1: سوشل. بہت بڑا کھیل ہوتا ہے کاروباری کھیل, اسے کہہ لیں, ظاہر ہے روزگار بھی لوگوں کو ملتا ہے. تو شاہ صاحب انشورنس انوالو ہوگی, روڈ ٹیکس انوالو ہو گیا, اب تو فکس چیزیں آ گئی ہیں, انشورنس بھی فکس ہو گئی ہے. ہر کمپنی, اتنی کمپنیاں آ گئی انشورنس والی کہ وہ گری نہیں جاتی, لوگ زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں جہاں سہولیات ہیں اس طرف جانا چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب آپ کوئی مستقل مزاجی والی بات نظر آتی ہے؟
0: جی, جب تک مستقل مزاجی والی بات اس وقت ہوگی جب ہمارے جو کونسلر حضرات ہیں یہ اس مسائل کو سنجیدگی سے دیکھیں اور وہ اٹھائیں اس کو کمیونوں کے اندر. اگزامپل عیسائی میں کتنے ٹیکسی وومین یا ٹیکسی ڈرائیور رہتے ہیں, ٹاسرو میں کتنے ہیں, ایلبرسٹون میں کتنے ہیں, کوپنہیگن میں کتنے ہیں, تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ بھائی لوگوں کیسے کیا کریں. اب میں آپ کو یہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو نئی کمپنی آئی ہے, ابھی تک یہ قانون ضرور تھا کہ آپ 33,000 سے لے کے 35,000 تک فاسٹ پریس پہ آپ ڈرائیور کو رکھ سکتے ہیں, پھر ان کو ان کی انشورنس ہے, ہر چیز ان کو آپ نے دینی ہے. لیکن 39,000 جو ہے یہ, اور پھر اس کو ہر قسم کی سہولت دینی ڈرائیور کو, یہ وومنشپ کو ختم کر دے گی. اور اسی طرح بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں, اگزامپل اب بالٹ ہے یہاں پہ اوبر ہے, تو یہ کیا کریں گی؟ یہ بھی اسی طریقے سے جب لوگ اپنے نمبر واپس کرنا شروع کر دیں گے, تنگ آ جائیں گے, ان کی گاڑیاں بک نہیں سکتی تو وہ گاڑیاں کھڑی کر دیں گے, ان کو نقصانات ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے کہ کمپنیاں ان سے ہر ایک چیز لے لیں گی سستے داموں, اور پھر ان کے اندر اپنے ڈرائیور جو ہیں, جس طرح انہوں نے این سیٹ کیا, انہوں نے تنخواہ دار بندے ملازم رکھے ہیں, وہ بھی ان کو کہیں گے کہ اب آپ ہمارے پاس کام کریں, آپ ہمارے لیے پیسہ کمائیں اور ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, یہ آپ نے کام کرنا ہے. تو اب یہ کمپنیاں, بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں یہ سامنے آ گئی ہیں. تو راجہ صاحب اس میں جو ہمارے بڑے بڑے ڈریمز ہیں, بڑے بڑے
1: مطلب الیکٹرانک طریقے سے سارے کام ہوں گے لین دین والے.
0: بالکل جی, یہ سب کچھ آپ اب اخباریں بھری ہوئی ہیں کہ جو لوگ فیریے پہ گئے ہیں وہ کارڈ نہیں استعمال کر رہے, کیش پیسہ استعمال کر رہے, ان کو ساتھ قسم کی آپ انفارمیشن.
1: شاہ صاحب دیکھیں نا, اس پر نظر رکھنی چاہیے, بار بار آپ کونسلر کا ذکر کرتے ہیں, ڈیفینیٹ اس کے لیے کونسلر نے اپنی اپنی کمونوں میں پہلے صف بندی کرنی تھی, پارکنگ یہ وہ دوسرا تیسرا. شاہ صاحب ہر پارکنگ اب پیسے سے ہوتی ہے, فری پارکنگ تو کہیں بھی آپ کو ملتی نہیں کہ آپ کریں, کچھ جگہوں پر ہے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 15 منٹ, اتنی زیادہ زیادہ میکسیمم اتنی پارکنگ آپ کو فری ملتی ہے. دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں آپ کو پرابلم نہیں ہے, آپ کا ویلا ہے آپ کو پرابلم نہیں ہے, لیکن سڑک پر تو آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے کہیں نہ کہیں.
0: دیکھیں جی, پارکنگ کا پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یہ میں گورنمنٹ کو اور کونسلرز کو کہہ رہا ہوں کہ جس اپارٹمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں, جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, آپ کا پرائیویٹ ویلا ہے تو اس کے اندر تو آپ کی پارکنگ جو ہے وہ گراتیز ہے, کیونکہ وہ تو آپ کے اپنی ہے, اس کے رائٹس دوسرے ہیں. اور جو اپارٹمنٹ لے رہا ہے اگر وہ کہیں سڑک پہ یا کسی پارکنگ میں گاڑی کھڑا کر رہا ہے تو وہاں پہ کیا جی اس کو جرمانہ لگ جاتا ہے. اگر اس کا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے, اس کا کوئی مہمان آ جاتا ہے, اس کو نہیں پتا, کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا کہ یہاں پہ فری ہے, گیسٹ پارکنگ ہے یا کیا, وہاں پہ وہ جرمانہ لگا کے چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.
1: شاہ صاحب اور بھی ہمیں شکایات ملتی ہیں, ہم سے لوگ بات کرتے ہیں, سر انفارمیشن دینے کے لیے ہم سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب جب آپ شہر میں گھومتے ہیں, ایک دن ہم نے بھی سروے کیا, آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیل چیز ویزا کاروباری گاڑیاں ان کی پارکنگ ہوتی ہے, یہ ہر وقت آپ کو خالی ملتی ہے. رات کو باہر نکلے آپ کے گھروں کے آگے پیچھے جہاں الیکٹرک پارکنگ ہے, یہ پارکنگ ہمیشہ خالی پڑی ہوتی ہے. لیکن آپ وہی کا جو کام والی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں, الیکٹرک گاڑیاں وہاں کھڑی نہیں کر سکتے. وہ بھی کام والی بھی الیکٹرک گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ علیحدہ سسٹم بنا ہوا ہے. تو شاہ صاحب ایک آپ نے روڈ ٹیکس بھی دینا ہے, اس کے بعد آپ نے پارکنگ بھی کر رہی ہیں, پھر آپ نے وہ پیس کی وا جو لکھا ہوتا ہے پارکنگ کے پیسے بھی ڈالنے ہیں. تو شاہ صاحب اس کی وضاحت, جو آپ سٹی کونسلر جو بیٹھے ہوتے ہیں کمونوں میں, سب سے ذمہ دار لوگ تو یہ ہوتے ہیں, پاور تو ان کے پاس ہوتی ہے کمیٹیوں میں. تو شاہ صاحب یہ مجھے ایک بڑا منظم جو ہے وہ منظم جو کہتے ہیں وہ سپل نظر آتی ہے, گیم نظر آتی ہے, سکک نظر آتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां पे खड़े होके अपने कम्यून के अंदर खड़े होके ये फौसले दे सकते हैं, वहां पे ये फौसले दे के कह सकते हैं कि देखे यहाँ पे पार्किंग के अंदर नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, जब लोग यहाँ के 38 से 40% बल्कि 90% हर बंदा जो डेनमार्क के अंदर रहता है, खसूसी तौर पर कोपेनहेगन और वेस्ट हाइन में रहता है, ये 90% से ऊपर टैक्स देता है। वो टैक्स इसलिए कि इसके अंदर जो वो टैक्स देता है पर्सनल टैक्स देता है, फिर उसके अंदर जो चीजें बाय करता है मम्स वगैरह देता है, ये जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा चली जाती है, ये तो 90% से भी ऊपर चले जाते हैं जो टैक्सेस हम पे करते हैं, तो ये हमें क्या दे रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि 80s में एक एक्सपर्टीज टैक्स का मेरे साथ बैठा था, तो वो मुझे कहने लगा कि तुम लंबे टूर लेके जाते हो या छोटे टूर, तुम किस पे राजी हो, किस पे खुश हो? खुश हो? मैंने कहा यार जितने ज्यादा मुझे पैसे बने मैं उस पे खुश हूँ। तो उसने हंस के कहा, उसने कहा देखो तुम्हारी टैक्स कार्ड तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ, वो तो हर बंदा जो काम करता है उसके पास है। तो उसने कहा जो तुम्हारी फ्रॉड लिखी हुई है ना 5,000 या 4,000 या 2,000, वो जो तुम्हारी मंथली लिखी हुई है ना उससे 1,000 करोड़ ऊपर का लो, ये तुम्हारे तुम्हारी असल बचत है, इसमें तुमने गुजारा करना है, बाकी तो सारा ये मम्स और टैक्स में तुमसे छीन के ले जाएंगे। तो मैंने उस वक्त यंग था तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ तो मैं जब ये पेपरों को ऊपर लिख लिख के पेंसिल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उस बंदे को याद करके कहता हूँ कि वो कितना अकलमंद आदमी था कि आज से 40-45 साल पहले उसने मुझे ये वार्निंग दे दी थी, और ये चीज डेनमार्क में हो रही है। अब डेनमार्क क्या कहता है कि हमारी ऑफिशियल जो है दुनिया को ये बताता है कि हमारा जो कम से कम बंदा है वो 3,72,000 करोड़ से कम कमाता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप ये देखें ये जो आ रही है तो ये कंपनियां जो है ये तो 2,40,000 करोड़ सालाना है, तो फिर इनकी इसके ऊपर कौन बात करेगा, इसके ऊपर काउंसलर ने बात
1: है ना। शाह साहब पहले पार्किंग की तरफ आते हैं, ये चूंकि बुनियादी सहूलियात हैं, जिसने भी गाड़ी रखी होती है, जिसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अब रखेगी, अब तो चंद सालों में जो है बिल्कुल हर गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वाला तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, शहर की बात कर रहा हूँ। तो शाह साहब इसकी कोई मनसूबाबंदी की जाती है? आप देखें 600 गाड़ी आएगी, किसी भी कंपनी की गाड़ी है, दूसरी गाड़ियां भी हैं, आपने पार्क भी करनी है, जो लोकल लोग बिल्डिंगों में रहते हैं आगे उन्होंने भी गाड़ियां पार्क करनी है, पार्किंग की कोई सफाई भी नहीं करता। तो शाह साहब आने वाला जब हम मुस्तकबिल देखते हैं, बात एनवायरनमेंट की करते हैं, तो पार्किंग प्लेसेस तो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं।
0: नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। जैसे मैंने 2017 में बात शुरू की थी कि ये ऊपर आ जाएगी और ये छा जाएंगे, इनको रहने दे, अपना डिफेंस करें, मैं इसी तरह ये कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। अगर आप आज की अखबारों में इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ें तो जो टेस्ला का जो मालिक है उसको कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और उसको सिर्फ इसीलिए कि अब लोग जो है वो खरीद नहीं रहे, बल्कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और फिर उसने उसको कवर करने के लिए अपने अक्षा की जो कीमत है अपने उसको कम किया ताकि लोग उसको खरीदे, और वो मेरा जो नुकसान मुझे हुआ है पहले पहले 3 माह के अंदर उसको कवर किया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसें कोपेनहेगन में चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि उनको कितनी प्रॉब्लम था। ये चीजें जो हैं अगर जाती हैं, मैंने खुद अपने घर में अपने बच्चों की बेटों की गाड़ियों को देखा है कि नुक्स के लिए 7-7 महीने लग गए, उनको पता ही नहीं लगा, उसकी जगह उन्होंने फिर नई गाड़ियां दी हैं। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। लोग जो है अगर खुदा ना खासा कल को ये जो कंप्यूटर का ये जो चल रहा सिस्टम, अगर ये एक दूसरे के कंप्यूटराइज सिस्टम को बंद कर दे, कुछ ये कर दे, सैटेलाइट्स को बंद कर दे, कोई ऐसी टेररिज्म सिस्टम हो जाता है,
1: चलती रहेंगी। लेकिन फैसले जब हो जाते हैं, जब अक्सरियत, तो आपको पता है हम जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जब जमहूरी
0: मुल्क खत्म हो गया जी, जमहूरी मुल्क खत्म हो गया, ये जमहूरी मुल्क होता तो ये पार्किंग का जो था सिलसिला ये लोगों के लिए आसान करता, ये बूढ़ों के लिए आसान करता। 8,000-8,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ हूसला है कोपेनहेगन के अंदर, उसकी पार्किंग का जो है کوپن ہیگن میں میرے پاس اتنی زیادہ رپورٹس آئی ہیں, آپ نے بھی کچھ بتایا تھا, کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک ایک لائری کے اندر جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ 3500 سے لے کے 4000, اور جو مہنگا ایریا وہاں پہ 4000 سے بھی اوپر جو ہے ایک پارکنگ پلس کا وہ لے رہے ہیں. اگر ایک گھر میں دو گاڑی ہیں تو وہ دو پارکنگ پلس اگر لے رہے ہیں تو وہ تو 5000-6000 کو ادھر دے رہے ہیں. تو یہ
1: سوال پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب, آپ پارکنگ میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو پارکنگ میں کیا سہولیات ملتی ہیں؟ لائسنس آپ نے لیا, اس کے باوجود آپ پیسے دیتے ہیں.
0: جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پارکنگ فری ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو پارکنگ فری, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو آپ کی جو آئنڈم ہے جس کے اندر آپ نے لائے کیا ہوا ہے یا آپ نے گھر فلیٹ خریدا ہوا ہے, ایک تو وہ ڈبل کمائی کر رہے ہیں.
1: اور اس کے ساتھ بات کی طرف میں آتا ہوں, تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. شاہ صاحب ایک بندہ ایک گھر میں, چار بندے فلک ہیں, دو بندے فلک ہیں, ایک گھر میں چار گاڑیاں اسی ایڈریس پہ یا تین گاڑیاں, تو شاہ صاحب پارکنگ کا پرابلم تو آئے گا, ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے.
0: نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن گاڑیوں کو بجائے لیزنگ کرنے کے, گاڑیوں کو یہ کرنے کے, گاڑیوں کی پرائسز نیچے کر کے گاڑیوں کو بائے کرنے کے لیے اگر رکھے تو کسی آدمی کے پاس 40-50 ہزار کروڑ اتنا کیش نہیں ہوتا کہ وہ جا کے برانڈ نیو گاڑی جو ہے اس کی اوٹ بچنگ جو کر سکے. اب لیزنگ کا جو مسئلہ ہے کہ آپ 40-50 ہزار کروڑ لیز کر دیتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں اور اس کی 3-4 ہزار کروڑ جو ہے وہ منتھلی آپ دیتے ہیں, اور بعض لیزنگ اتنی سستی ہے کہ آپ اس کے اندر 20 ہزار کروڑ دیتے ہیں تو آپ گاڑی لیز کر لیتے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ اس کو لیزنگ گاڑیوں پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پارکنگ کی پرابلم اس لیے ہوگی ہے کہ پارکنگ جو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ پارکنگ جو ہے وہ فری ہے, تو وہ فری پارکنگ والی اسٹریٹ پہ جا کے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. اور جو پیمنٹ کرتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں, آپ ان کے پارکنگ میں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے کیونکہ اب تو آپ کے فلیٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس پارکنگ میں. میں اگلے دن بیلاروپ گیا تھا تو وہاں میں نے ایک ٹرکش کے پاس جانا تھا تو وہاں پہ وہ بادشاہ نیچے آیا, اس نے کہا کہ گرد تم یہاں گاڑی نہیں پارک کر سکتے, تمہیں باہر کھڑی کرنی چاہیے کیونکہ یہاں ہر لائلی کے لیے ایک ایک پارکنگ پلیس ہے اور وہ اس کے اندر اپنی گاڑی کھڑی کر سکتا, دوسرا نہیں کر سکتا, نہیں تو فوراً جرمانہ لگ جائے گا. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اتنے دور سے میں چل کے پیدل اب آؤں گا. تو یہ جو مسائل ہیں یہ کنہوں نے کیے,
1: آہستہ آہستہ لوگ جو ذہنی غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں.
0: بالکل جی, اور یہ کمیون کے اندر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے, یہ ان کی نیکلیس ہے. یہ لوگ اس چیزوں پہ بات نہیں کرتے کہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فوٹو سیشن ہو رہا ہے, ہم کہاں اپنی تصویر لگائیں, ہمیں کون بلا رہا ہے, کس پارٹی میں ہمیں نہیں بلایا گیا, کس پارٹی میں ہم جائیں گے, کس شادی بیاہ, بس یہ ان کا چیز رہ گیا. یہ میں عرفے ہمیں یہ کہوں گا
1: شاہ صاحب, اس کا مطلب ہے کہ ووٹر کو جو ووٹ دینے والا اس کو اپنی پاور کا پتہ ہی نہیں ہے.
0: پتہ ہی نہیں ہے, یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانی سیاستدان ہے, پیور پاکستانی, یہ ڈینش سیاستدان نہیں ہے. کیونکہ ڈینش سیاستدان جو ہے وہ کہیں بھی تختی نہیں لگاتا کہ یہ میں نے یہ کام کروایا اس پہ میرا نام آیا, نہیں, وہ کہتا ہے یہ کمیون نے کرایا, گورنمنٹ نے کرایا, اور جو وہاں کا باؤ منسٹر ہوتا ہے اس کا بھی نام نہیں لکھا جاتا. تو یہاں پہ سارے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈینش جو ہیں وہ جب کسی بھی اسمبلی میں ہو, بشک وہ کمیون کی اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا پارلیمنٹ میں, تو وہ تیاری کر کے آتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس سبجیکٹ کے اوپر بولنا ہے. تو جب آپ سارا دن اپنے کاروبار میں رہیں گے, اپنی جاب کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ تھکے ہوئے جائیں گے, پھر آپ نے اپنی بیوی بچوں کو سنبھالنا, پھر آپ نے کسی شادی بیاہ پہ جانا, تو آپ وہ کہتے ہیں جی آپ نے
1: کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں نا کہ جو تنظیمیں لگاتار کام کرتی ہیں, جن کا مطلب عرصہ دراز سے اپنا کام کرتی ہیں, وہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے. شاہ صاحب یہ آموں کا فیسٹیول جو ہے وہ اس کا بالکل جو ہے وہ رش آیا ہوا ہے, جو سلما ہاؤس جو ہے فل جا رہا ہے. لیکن ڈی پیک جو ایک تنظیم ہے, غالباً پاکستانی ڈینش بزنس افیئر کونسل ہے, ये पिछले 7-8 साल से ये करा रहे हैं, देखिए मुसलसल करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं। इनका प्रोग्राम हुआ बहुत कम या प्रोग्राम था कसीर तादाद में, मैं नहीं समझता कितने लोग कभी किसी प्रोग्राम में गए हों, लेकिन शाह साहब वो तो तसलसल से करा रहे हैं। उनका कहा था हमें कोई जो हमें जिस कीमत पे मिलते हैं हम आगे बेच देते हैं, आगे लोगों को सर्व कर देते हैं, मेहनत होती है, अखराज डेफिनेट अखराज तो निकालते होंगे जो समझ आती है। लेकिन शाह साहब हर रोज मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है, तो शाह साहब अगर कभी हमने अपने मसाइल की भी एडवर्टाइजमेंट की है कभी?
0: नहीं जी, हमने कभी नहीं की। और ये जो है ये खुद मसाइल में गिर चुके हुए, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि टैक्स की और जो है वो अपना मम्स वगैरह की उनकी नजर पड़ चुकी है इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा पाइपलाइन में है और बहुत ज्यादा लोगों ने क्रय किया कि वो 4,000-5,000 करोड़ जो है वो देते हैं बकायदा एक टेबल का। तो ये चीजें जो है बाहर निकल चुकी हैं, लोगों के टेलीफोन टेप होते हैं तो हर चीज, लेकिन ये आसा आसा ये आप याद चीज याद रखे, ये वाइकिंग है, ये बैरी करजाक है, ये बड़े बड़े शिपों को लूटते हैं, ये छोटी छोटी डैनिश छोटी छोटी चोरी नहीं करते। तो ये जब पकड़ते हैं तो ये छोटे छोटे चोरों को इंतजार करते हैं कि इनका माल उतना हो जाए जब ये एक बड़े शिप के बराबर, तो फिर हम इनके इनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो लिहाजा मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा कि हम लोगों ने अपने हाथ काटे हैं, अपने पांव काटे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। और अगर ये चीजें जो है रजिस्टर्ड होती हैं, ये चीजें जो है हम ऑफिशियल तरीके से करते हैं और अपने आप को भी खुश रखते तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो चीज होने जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है, और किन किन के ऊपर होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सोर्सेज हैं, मैं चिड़िया तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी चिड़िया ये है, क्योंकि मैं डेनिश सियासत में हूँ और जो मैं स्टडी करता हूँ, और इस वक्त जो पुराने सियासतदान जिनसे गुफ्तगू होती है डेनिशों से, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त 800-900 से ज्यादा टैक्स केसेस जो है वो इन पाइपलाइन जो बड़े किस्म के टैक्सेस हैं, और ये कब खुलेंगे, कब आएगा, ये जो है वो
1: बात हो रही है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे कि यहाँ के रहने वाले शहरियों को अपनी अपनी कम्यूनों में बैठकर क्या करना चाहिए?
0: ये इनको जब तक ये आवाम से रब्ता नहीं रखेंगे, ये आवाम से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जनरल तकलीफात क्या हैं, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर आइन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पे आप जाकर बात नहीं करेंगे उस वक्त तक। देखिए हमने कितनी दफा कहा है कि ये लोग कम्यूनों में ये जाके कानून बनाए, कभी किसी ने आके कहा काउंसलर ने कि जी हमने इसके ऊपर बात की है? नहीं। ये चीजें जो है,
1: कभी आपको दावत मिली है किसी काउंसलर ने कहा होगा जी आज आए हमारी डिबेट हो रही है आप आए हमारे मेहमान बने?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको बुलाते हैं कि जो उनके आगे बार बार करे ताड़िए करे। वो एक शायर था तो वो शेर शायरी कर रहा था तो बंदे वाह वाह वाह वाह कर रहे थे, तो मैंने एक पकड़ के पूछा, मैंने कहा बंदे ने पुत्र इतनी वाह वाह कर रहे हैं, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा जी बड़ा अच्छा कह रहे। मैंने कहा क्या कह रहा था? उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका वो बोल कह रहा था? तो आगे जो वो मेरा मुंह देखने लगा, हाथ चढ़ के चला गया। तो ये चीजें हैं कि ये वाह वाह करने वाले लोग हैं, हमें बुलाएंगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो उनको बताएंगे तुम्हारे लिए बेहतरी है भाई, ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है, ये जो 400 के करीब कानून बने हुए हैं ये आइन के खिलाफ है, या आप इसके ऊपर बात करें, और वो कर सकते हैं, बेहतरी उनकी है, लेकिन वो क्या करेंगे?
1: तो शाह साहब ये जमहूरी मुल्क का आखिरी सवाल है, जवाब इसका दें, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ तो सारे काम जमहूरियत से होते हैं, जहाँ जमहूरियत जिस तरफ ज्यादा होगी वही कानून बनेगा, वही बंदा जीतेगा। तो शाह साहब पहले सबसे पहले तो आवाम को जमहूरी बनना चाहिए।
0: देखिए जी ना, हम लोग जमहूरियत को समझते नहीं है, हमें पहले यही नहीं पता कि जमहूरियत आई कहाँ से। हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी जो है ये यूरोप से आई है, ये इनकी है, हालांकि इनका कानून पढ़े तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी हम लेके आए थे कैस्कस दुनिया से, ओल्ड टर्की से हम लेके आए थे, वहां किनकी थी? वहां पे इस्लाम था। अगर आप इनसे पूछे जी क्या पाकिस्तान में, सुने जजों से सुने दूसरों से, वो कहते हैं जी ये जो कैद खाने हैं ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रखे। इस्लाम को देखे, इस्लामी हिस्ट्री को देखे तो कैदियों के साथ जो हौसले सलूक किया जाता था वो वो इतने जालिम नहीं थे जितने आज के लोग जालिम हैं। तो ये चीजें जो है डेमोक्रेसी लाने वाले मुसलमान थे।
1: नया सवाल आ गया हमारी तरफ शाह साहब, चूंकि हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत को देखते हैं जहाँ जहाँ दुनिया में चल रही होती है, हमारे साथ रिलेटेड होते हैं कि यहाँ की जमहूरियत। शाह साहब, आजकल जो जमहूरियत ने कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, सब पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, बसें भी दी जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों का भी ऐलान हो रहा है, मोटरवेज का भी ऐलान हो रहा है, तो शाह साहब ये चीज़ें तो वक्त से पहले भी हो सकती, चले देर आए दुरुस्त आए, तो शाह साहब ये जो ख्वाब लोग देख रहे हैं, वोट तो उन्होंने देना है, उन्होंने सोच समझ कर देना है, लेकिन शाह साहब हर पार्टी अपना डीजल पेट्रोल तो बेचती है।
0: देखो जी सारी ये आपने बात सही है, पेट्रोल फेंक रहे हैं सारी पार्टी, पेट्रोल फेंक रही है सारी पाकिस्तान जो पार्टीज हैं इस वक्त, जितनी भी पार्टीज हैं उसमें काफ हो, नून हो, पीपल हो, पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, फजल रहमान की फे हो, ये सब की सब जो है ये पेट्रोल फेंक रही है अवाम के ऊपर, अवाम को आपस में लड़ा रही है अपने वोट के मकसद मकासद के लिए। लेकिन कल को होगा क्या, कल को ये होगा कि वहां पे नफरतें फैल जाएंगी आपस में, खानदान इस इलेक्शन के अंदर खानदान जो है वो बट चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हमारे गुजरात में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, जो रह रहे हैं कि तुमने इसको वोट नहीं देना, इसको वोट देना, आपस में इन्होंने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया इनके झूठे। लेकिन कल को इन्होंने कोई काम नहीं करना, कल को इन्होंने कोई ऐसी काम नहीं करनी, ये है पेड बाय UAE, ये एजेंट्स हैं और ये लोग आए हैं, और जब तक ये
1: शाह साहब आपने कम्यून के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहीं पे ब्रेकिंग न्यूज दी थी, तो शाह साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो हम अपने सामान्य नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग जो है अगले इलेक्शन में हुकूमत बनाने जा रही है, कुछ भी हो सकता है आखिरी टाइम पर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो आज की जो ताज़ा मैं आप ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि कश्मीर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और ये अकल भी कहती है और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जितनी बड़ी कंपेन की जा रही है, जितने बड़े तरीके से की जा रही है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, शाह साहब वोटर सपोर्टर को तो नज़र आता है, हमें सहूलियात क्यों कौन देगा, पंजाब को देखा जाए दूसरे जब सूबे देखते हैं तो वो कहते हैं पंजाब में क्यों तरक्की हो रही है, बजट तो हमें भी मिलता है, बजट तो कश्मीर की तरफ भी जाता है, बजट तो KPK में भी जाता है, बजट तो सिंध में भी जाता है, डेफिनेट तरक्की हो रही होगी जहाँ जहाँ हो रही है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, शाह साहब आप क्या कहेंगे इस पर, थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि नून लीग का हुकूमत बनाने जा रही है आज़ाद कश्मीर।
0: नहीं बना सकते, अगर असूली तौर पर देखें जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके मुताबिक ये जाकर आजाद कश्मीर के जो अपनी अपनी उनकी अवामी ताकत है, उनके अपनी जो पार्टीज हैं, उनके अंदर ये इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके आप पंजाब से उड़े या आप अपने इलाके इस्लामाबाद पिंडी से जाएं तो आप आजाद कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जब आपको ये अख्तियार वो आईन नहीं दे रहा तो फिर आपको ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमारी सियासी पार्टी है। देखिए जब इंडिया वाले जो है वो सूबा कश्मीर में अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वाकई ही कश्मीरियों के हक पे दोनों मुल्क जो है ये डाका डालते हैं, इनको कोई हक नहीं कि आईन के मुताबिक ये जाकर और ऐसी बातें करें और ये कहें जी कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी पार्टी जीतेगी, ये इनको नहीं कहना चाहिए, बल्कि इनको आजाद छोड़ देना चाहिए। आजाद कश्मीर के लोग जो है वो खुद अपनी पार्टी बनाए और उनको ये हक हासिल है कि अगर वो पाकिस्तान
1: में, तो उनकी अपनी बनी हुई है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका अपना वजीर आजम है, उनके अपने वजीर कानून है, उनके अपने सदर पार्टियां तो बनी हुई है। तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عدنان امین علی اور سید توقیر اسر بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب، موسم تو بڑا اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بادل بھی تو نہیں، آج جو تو صاف موسم ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، اور آپ کیا کہیں گے موسم موسمیات بیماریوں کے متعلق، موسمی بیماریاں؟
1: بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی ہے کہ موسم آج گرم ہے، آج اور آج 28 کے قریب گرمی ہے، اور کل بھی جو ہے وہ فوکتی بام جس کو ہم کہتے ہیں نا پڑاس والی، پنجابی میں پڑاس والی وہ پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر وہ جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پر لگے ہیں، تو یہ اسی وقت نکلتے ہیں جب بارش کا موسم ہو یا فوکتی ہل بہت زیادہ ہو یا جس کو ہم کہتے ہیں پڑاس کا موسم.
0: شاہ صاحب، کس کیڑوں کی بات کرتے ہیں؟ سیاسی کیڑوں کی بات کر رہے ہیں یا نارمل کیڑوں کی؟
1: یہ نارمل کیڑوں کی، سیاسی کے تو سارے سوئے ہوئے ہیں، تو یہ نارمل کیڑے جو ہیں ان کو پر لگے ہیں، اور وہ بےچارے کو ایک یا زیادہ سے زیادہ دو دن ان کی زندگی ہوتی ہے اور وہ پھر چلے جاتے ہیں.
0: عدنان، آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی، آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب ذرا پوچھئے گا عدنان کے کیا سیاسی خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے شہر میں؟
1: دیکھیں جی، میں سوال رکھتا ہوں عدنان کے سامنے کہ عدنان، یہ جو اس وقت واردات ہو رہی ہیں، کرمنل واردات ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ اسلامسٹ اور مسلمان کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی یوکرین کا یا کوئی باہر کے یورپی ممالک کا بندہ کرائم کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھا جاتا. تو آج کل یہ جو ہمارے بچے ہیں جو 20 سے 18 19 20 21 سال کے، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کریں تاکہ یہ جو انہوں نے اب پارلیمنٹ کے اندر جو بحث جاری ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کرمینلز کو جو ہے اور ان کی فیملیز کو ملک بدر کرنے کا قانون بنایا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
2: شاہ صاحب، اس قانون کے بعد میں یہی کہوں گا کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. ایگزامپل جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ 90s کے اندر کے اندر بھی ایک کانفلکٹ چل رہی تھی ڈینمارک کے اندر، جو یوروکو کی چل رہی تھی، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پتا نہیں کیا کیا مارا گیا تھا اس وقت بھی. تو ان چیزوں کو مکس آف نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ڈیبیٹ چلی ہے جو بیلین میں ہوا ہے، جرمنی میں ہوا ہے انسیڈنٹ ویکینڈ میں، اس سے آپ ایک بات دیکھیں کہ کچھ دن پہلے ہی، دو چار دن پہلے ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ناروے کے اندر اومتم پچھلی پہ، تو وہ بھی تو ایک گورا تھا نا. تو اس کے لیے مسئلہ یہ پڑا ہے کہ کچھ لوگوں نے نا اس دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی ہے کہ دیکھیں آپ بہت جلدی ڈیبیٹ لے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں اور اسلامسٹ کے بارے میں، مگر یہ پہلے دیکھا کریں کہ کس وجہ سے اس نے یہ کیا ہے اور اس نے کیوں یہ اٹیک کیا ہے. یہ جو جرمی میں ہوا تو غلط ہے، مگر ہر چیز کو مکس آف نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کو ایک پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے اور ایک ویریئس سے دیکھنا چاہیے. جو ہمارے یگسٹر یہاں آگے آ رہے ہیں اور جو پراپرٹی سیاست میں آئیں گے، ان کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کون کون سی کانفلکٹس پہلے رہی ہوئی ہیں. 80s میں بھی آپ دیکھیں راکو کی لڑائی تھی جس کے اندر بینڈیٹس کہتے ہیں بل سٹریٹ اور ٹینزنس کی لڑائی ہوئی تھی، پھر 90s میں لڑائی ہوئی تھی جس کے اندر کیا کہتے ہیں ونس اگین ہوئی تھی راکو کی لڑائی ہیلس اینجلس اور بینڈیٹس کی، اس میں بھی ایک ہی بندہ شامل تھا جس کا نام تھا جس نے 1984 میں بھی ایک بندہ مارا تھا، اور 90s کی کانفلکٹ میں بھی بول تھا. تو آج ایک بندے نے اس کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھا ہے اور کیا کہتے ہیں اس پہ کامنٹس بھی آ رہے ہیں کہ بندہ ہر چیز کو مکس کر دیتا ہے اور بندے کو چیز مکس نہیں کرنی چاہیے. آبویسلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یانگسٹر کرائم کرتے ہیں اور یانگسٹر یہ چیزیں کرتے ہیں، उसके लिए मसला ये होता है कि हमारी जो कम्युनिटीज है ना उनको उसको कंडेम तो करना चाहिए मगर उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करना चाहिए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं कि उस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं।
1: अदनान सवाल ये है कि हमारी कम्युनिटी के जो लीडरान हैं, हमारी कम्युनिटी के जो एग्जांपल कल्चरल सेंटर्स में जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन यंगस्टर को सीधे रास्ते पे दिखलाना है, वो तो इस पे बात नहीं करते। वो तो कोई ऐसे तजर्बाकार अफारिंग लोगों को सामने बुलाकर तो उसके ऊपर वो बात नहीं करते। वो लोगों को ये नहीं समझाते कि आपने किस तरीके से यहाँ के कानून से बचना है, किस तरीके से आपने बात करनी है। यानी कि हमारे अंदर वॉल जो है वो बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हमें आ गया है। इसकी वजूहत जो है, इसकी बैकग्राउंड मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि भाई लोगों को समझाएं कि ये इतना शदीद गुस्सा क्यों हो जाता है कि ये घरों से छुरी और चाकू उठाकर चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए, और फिर जाते भी उस जगह पे हैं जहाँ पे आम पब्लिक होती है।
2: क्या साहब, देखिए मैं सबसे पहले कहूंगा, मुझे पता है इस बात पे लोगों को पसंद नहीं आता। हम एक कॉन्फ्रेंस में थे कुछ देर पहले, क्योंकि मैं खुद 2-3 दिनों से बीमार था और आज भी मुझे एक कब्जा लगा हुआ है, चेकअप हो रहा है, तो इसलिए मैंने इतना ये क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली बैलिन का नहीं देख सका। मगर मैंने ये देखा है कि प्रॉब्लम इसमें दो भी हैं कि हम लोग, मैं इस जैसे आपको भी रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता और किसी को कहना नहीं चाहता और कोई इंसान गुस्सा ना करे इस बात का। इसके अंदर दो पहलू, एक तो ये पहलू है कि कुछ वालदैन जो होते हैं वो बच्चों को रोकते नहीं है, जब बच्चों को कंप्लेंट भी आए, बच्चों को बताया भी जाए वो इस डायरेक्शन पे है तो वो मानते नहीं है। मैं आपको एक 2 मिनट आप मुझे देना, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, हमारा ही है ये एपिसोड में ही था, डेनमार्क में वाक्य था, वो बच्चा रिलीज्ड हो गया होगा डेनमार्क से, उसको बाहर निकाल दिया गया होगा। मैं आपको बात बताऊं, मेरे सामने वो गाड़ी लेके चोरी करके रहते थे, वो उस इलाके में गाड़ी लेके चोरी करके आ गया। एक बंदे ने उसकी अम्मी को फोन करके कहा कि तुम्हारा बच्चा गाड़ी चोरी करके ले आया है। आप इमेजिन नहीं कर सकती, इसकी अम्मी उसके घर लड़ने चली गई सिर्फ कि वो अपने बच्चे को रोक। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कुछ सालों के बाद उसने बहुत बड़ा वाकया कर दिया। क्या हुआ, वो उलझिस्ट हो गया। आज भी उसकी अम्मी कहती है कि मैं उस वक्त बात सुन लेती तो मेरा बच्चा उलझिस्ट ना होता। तो मैंने उससे यही उसने आंटी को कहा, मैंने कहा जब हम लोग आपको समझाते थे तो आप बात नहीं थे सुनते, आप जब बात नहीं सुनेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो बच्चे ने तो बाहर ही जाना है। आप ये आपको पता होगा कि टॉस्टॉप में जनवरी में एक केस हुए थे जहां पे बच्चों ने एक दूसरे को मारा था, नीचे हुआ था, वो 16 साल का लड़का है, उसको भी उद्देश्य कर दिया हुआ। और उसके वालदेन की जो एडवाइजर थे और जो वो एडवाइजिंग टीम थी उनका मुझे पता था, उसने कहा हम माँ बाप को जाके जब बताते थे कि हमारी हेल्प करो अपने बच्चे को कंट्रोल करने में, ये करने में, कहते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इसके अंदर ये बनता है कि जब कोई बंदा आपके पास आता है, आपको क्राइम कराने की चीज बताता है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब हमें दर्जना पता है कि छोस्तों भूलकर में क्या हो रहा है, लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जिनकी कुछ लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसको वो सीरियस ले ही नहीं रहे। जब उनने सीरियस नहीं लिया तो आप देखे कि छोस्तों भूलकर में रात को जाना हो तो बंदे को देख के जाना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि एक माहौल वो गलत बन गया। और जब वो माहौल ही गलत बन जाए तो बंदा उसको
0: तो फिर हालात ठीक नहीं होते, कानून हरकत में होता है। कोई नौजवानों के बारे में कोई लीडर भी तो नहीं बोलता ना कि नौजवानों को समझाए, नौजवानों के बारे में बात करे, खामोशी से बातें होती है। हमें मुजीब रहमान कुरैशी साहब जिनका तल्लुक SF से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेनमार्क के सदर भी है, मुजीब साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरम राजा साहब और मेरे बड़े प्यारे भाई तोकीर शाह साहब और बरखुरदार अदनान साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने 10 मिनट पहले आपको ज्वाइन किया है, आपको फोन जब आया तो मैं थोड़ा रास्ते में था, तो मुझे डिबेट में सुन रहा हूँ। माशाल्लाह शाह साहब भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदनान भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये चीजें हमें पता चल रही। मैं तो एक नुक्ते पे खाली सिर्फ चीज कहूंगा कि जहाँ पे बंदे ने रहना होता है, जैसे हम डेनमार्क में रह रहे हैं, तो हमें डेनमार्क के कानून की जी एहतराम करना चाहिए। और क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और कानून पे अगर कानून का एहतराम करेंगे तो मेरा ख्याल है जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो कम होंगी। तो सबसे जरूरी है कि हम बूढ़े सीनियर क्या, जो जवान है वो क्या, जो लड़कपन वाले हैं वो क्या, सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। बाकी है कि जैसे मोहतरम शाह साहब और नान जो है वो उन्होंने नजर रखी होती है हर चीज पे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो वो तो आपको पता है कि दुनिया के हर ममालिक में ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन हमारे यंगस्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तो अगर अगर आप उसमें 100% में से अगर कोई 5-10% अगर हो जाता है तो हमें उनको भी प्यार से, जैसे अदनान ने कभी एग्जाम्पल दी कि उस बच्चे को विश कर दिया गया, तो अगर हम बड़े समझाएं बताएं और ये बस ध्यान में डालें कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करना है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो मैं तो यही कहूंगा जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, जो जितनी मेरी चीज मैंने सुनी है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां पे भी रहना हो इंसान ने उस मुल्क के कानून का एहतराम करें।
1: ये
0: शाह
1: अमरा
0: साहब,
1: मजीद
0: जरा मैं
1: करीम
0: बात को
1: साहब,
0: थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। रेडिकेल वेंस्टा की जो मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, जो हैं वो अपना समैरा नवा, उनकी मैं बयान देख रहा था। वो फरमा रही थी जो मौसम गर्मा की शानदार खबरों में उनका जिक्र है कि डेनमार्क की लेबर मूवमेंट की बिजनेस काउंसिल का आज तजिया पढ़ना कितना अच्छा लगा, जिसकी सुर्खी से खैर मगरबी पस मंज़र रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। शाह जी, ये तो भी तो खबर ही है ना, ये तो रेडिकल वंस्टा की तरफ से कहा जा रहा है।
1: ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो असल सब्जेक्ट है जिसपे अदनान ने अभी रोशनी डाली है, ये मैं सवाल मुजीब कुरैशी साहब से भी पूछूंगा और अदनान से भी। असल में बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने पहले क्राइम किए थे, तो उनको उलविस कर दिया जाता था या उनके फैमिली पे कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जो इन्होंने 2024 में जो कानून बनाया, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है, उसके मुताबिक ये है कि अब बोली सेल्स के जो है, ये अगर कोई बच्चा बार बार मना करने या पुलिस अनमेल्ट होता है या उसके ज्यादा जरायम हो जाते हैं, तो वो बोली सेल्स के जो है उसको बगैर नोटिस दिए 1-15 दिन के वार्सर से घर से निकाल सकते हैं और पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये फैमिलीज जो अपने बच्चों को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर रही, वो किस कम्यून में जाएंगी, कौन उनको एक्सेप्ट करेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये मैं मुजीब कुरैशी साहब से भी पूछना चाहता हूँ और इतलान से भी।
3: मोहतरम शाह साहब, ऐसे है कि मैंने अभी थोड़ी देर जो ना, जो क्योंकि मैं हम जो तजिया करते हैं या हम जो देखते हैं खबरें, हमारे लोगों की तादाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर कानून बन गया तो कानून कोई पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं बना ना, वो तो सबके लिए है,
1: जी जी
3: वो तो
1: जी जी
3: डैनिश डैनिश कम्युनिटी के लिए भी है। ये अगर मेरे पास डैनिश पासपोर्ट है, अगर मेरे घर में कोई ऐसी बात होती है, ये तो नहीं कहेंगे कि जी आप डैनिश हैं आपको हम कुछ नहीं करेंगे, ये कानून तो पूरे मुल्क के लिए। तो पूरे मुल्क में अगर कानून है, तो मैंने पहले अर्ज किया कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, हमें कानून की चीजों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, और हमें उसमें उसके अंदर रह के इस मुल्क में रहना चाहिए ताकि हम अपनी चीजें बेहतर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इसलाह करनी, अपनी भी इसलाह करें, अपने बच्चों की भी इसलाह करें, और जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी भी हम देखें, उनकी भी इसलाह करें। इसलाह करने से कानून में भी बेहतरी आती है और लोगों में भी बेहतरी आती है।
1: अदनान अदनान सवाल ये है कि अगर हम रेडियो पे बैठ के ये कानून की बातें नहीं करेंगे तो आम आदमी को जो घरों में बैठा है या काम करके अपने घर में चला जाता है या गाड़ी में बैठा हुआ काम कर रहा है या ट्रक में बैठा हुआ है, तो उसको किस तरह समझ आएगी? उसके पास तो टाइम नहीं कि वो कानून को कंगाले या इस चीज को समझे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि हम लोग इसको इस तरह के कानून जो बन रहे हैं उनको डिस्कस करें और पब्लिक के सामने लेके आए ताकि वो मुताहत रहे? क्या मैं सही कह रहा हूँ?
2: आपकी बात कराइट है। मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो पूरा कानून बना था ना 2024 में, और ये जो जब बनाया गया था, तो ये कानून जब बनाया गया था ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये वार्निंग देंगे, और वो वार्निंग को सीरियस बंदा नहीं लेगा तो फिर बंदा घर से बाहर निकल सकता है। और ये कानून इसलिए बना था कि ये जो क्या कहते हैं ना, कंट्रोल, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है, मगर उसके अंदर अभी भी मसला ये है कि ये कानून जो है ना, इस कानून को चैलेंज किया गया हुआ है और दो केसेस हैं जो मेरे ख्याल से सोलेंस के बाद हॉयस्टगार्ट में है, और जब ये हॉयस्टगार्ट में वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि दो बंदे इस कानून को चैलेंज कर चुके होंगे, क्योंकि ये कानून किसी ह्यूमन राइट्स और किसी के अगेंस्ट भी जाता है। तो अब देखते हैं इस कानून के साथ क्या है, मगर बात वही है जैसे मेरे बुजुर्ग ने भी कहा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, क्योंकि हम रिस्पेक्ट लॉ करेंगे और हम उस चीज में रहते हैं तो हमें उस मुल्क को देख के चलना होता है, जिस मर्जी कानून हो हमें उस चीज को फॉलो करना होता है, और हम कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो हम इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए, हमें इस मुल्क में रह के हमें आईन और कानून जो होते हैं ना वो ही फॉलो करने होते हैं, और लोगों को बहुत सारे कानूनों का पता भी होता है और लोगों को अंदाजा भी होता है कि कानून कैसे हैं। तो ये कानून तो हमारे लिए नहीं बने, ये सबके लिए कानून बने हैं। मैं रिसेंटली 10 दिन पहले एयरपोर्ट पे गया हुआ था और वहां पे मैं देख रहा था कि फॉरनों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी पड़ी, क्या कहते हैं, चेकिंग में, जितनी गौरों को प्रॉब्लम पड़ी हुई थी, क्योंकि गौरे जो हैं वो पुराने कानून से जा रहे थे तो उनको भी नहीं था पता। सो एवरीबॉडी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, और यहाँ पे ये फर्क नहीं करते कि गोरा कौन है, चिट्टा कौन है, कौन है, ये देखते हैं लॉ को सबसे पहले।
0: अदनान, आप कानून कायदे की बात कर रहे हैं, शाह साहब आपके लिए भी ये सवाल है, मजीब साहब के लिए भी सवाल है, आप तीनों सियासतदान भी हैं और गहरी नजर भी रखते हैं कि कम्यून के इलेक्शन के बाद जब सारे मामलात सारे सेट हो गए तो अगर पिछले 3-4 महीने की या 2-3 महीने की एक्टिविटीज देखी जाए तो शाह साहब जो हमारे गैर मुल्कियों की क्या एक्टिविटीज हैं, स्पेशली आप

0: आप देखेंगे कि इनको चाइन ही नहीं है, ना इनका साहिब है को, ना मॉडर्न मास्टर स्मिथ को, ना हमारी वजीर आजम जो है उनको, ना दूसरों को। ये डेली तीन तीन चार चार जो है वो लॉज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। ये बकायदा फलके थिंग के जो डिबेट्स उलैनिक के बारे में वो पेश कर रहे हैं, जो फौसले नंबर 9 है उसको पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो है उलैनिक्स को जो नेशनैलिटी दी जाती है उसको कैसा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसका इसका मुहावर क्या है, इसका असल बात यह है कि हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मर हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन असल काम ये है, ये इंफॉर्मेशन देने का ये काउंसलर्स का है, वो आकर बताएं कि भाई देखे कि आपने अगर कोई फेस्टिवल लगाना है या आपने कोई किसी ने कोई मेडिसिन हेल्प लेनी है, आपने कोई आपको कोई बीमारी पे है, आपने छुट्टियों में सडनली पाकिस्तान जाना या किसी और मुल्क में जाना, तो आप किस तरीके से कौन से पैराग्राफ पे आप छुट्टियां ले सकते हैं, किस तरह आप अप्लाई करेंगे, ये काम बताने का हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम क्यों बताएं जब
1: शाह साहब आप यहाँ फरमा रहे हैं। जी साहब देखे ना, आपने शाह साहब ने जिक्र किया कानून कायदे की, तो देखे ना कानून कायदा समझने के लिए आप देखे ना कि 8-9 फंक्शन हो चुके हैं पिछले चंद दिनों में या हफ्तों में कह सकते हैं, और आगे भी फंक्शन होंगे, तो हमारी जो तरजियात का हमें पता चलता है कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमारी सोच क्या है, थिंक टैंक शाह साहब आप लोग इसी तरह एनालाइज करते हैं। मुजीब साहब आपने सुना,
2: मैंने एक मिनट राजा साहब मुझे एक मिनट बाहर जाना पड़ेगा टेलीफोन से, मैं आपको फिर
1: चले ठीक है ठीक है इतना आप करें। जी मुजीब साहब
3: मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जितनी इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी अच्छी बात है, कानून के बंदों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे मोहतरम शाह साहब नजर रखते हैं हर रोज, इन्होंने सारी अखबार को देखना होता है।
1: मुजीब साहब अगर वो नहीं देना चाहते तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करती होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, पुलिसमैन तो नहीं है,
3: हम तो कह ही सकते हैं ना जी, अगर वो नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको ना मेरे ख्याल आज से 3-4 महीने पहले आप वक्त कह चुका हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो कारकर्दगी पे होगा, अगर किसी की कोई कारकर्दगी नहीं हुई तो उन्होंने अपने सर पैर पे खुद इलेक्शन लड़ना है, तो फिर देखेंगे वो कैसे वो कामयाब होते हैं, लेकिन अगर कुछ बताएंगे कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो कामयाब है। तो मेरा ख्याल है इस पे हमें ज्यादा अभी छुट्टियां हैं खत्म होने दें, तो इनशाला इसके ऊपर हम बात करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे, हमने वोट दिए हुए हैं, हमने मेहनत की हुई है, हमने पार्टियों को जिताया हुआ है, आज अगर 8-10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो खुद तो नहीं बन गए, उनको हमने बनवाया हुआ है और हमारी वजह से वो बने हुए हैं, तो अगर उनको अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो भूल जाए। मैं तो एलानिया रेडियो पे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं नहीं कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, तो उनको चाहिए कि एक साल तो गुजर गया है तो बाकी जो टाइम रह गया उसको अपने आप को सामने लेके आए और जो छोटा मोटा काम हो रहा है जो भी उनकी चीज है उसको उजागर करें। आपका प्लेटफॉर्म हाजिर है और मीडिया है जिसपे मर्जी आए आके अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने एरिया में लोगों को बताएं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए, ये काम कर रहे हैं बल्कि हमारे लिए नहीं, जिस कम्युनिटी से वो मुंतखब हुए पूरी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ताकि ये तो नहीं कि खाली हम लंदन जा रहे हैं या हम पेरिस जा रहे हैं या हम बोसनिया जा रहे हैं या हम स्पेन जा रहे हैं, शहरों पर लग जाए, ऐसा काम नहीं चलता। आप काम वो वाले खत्म हो गए, यंगस्टर माशाल्लाह सब सियासत को समझते हैं, और जो नेक्स्ट यंगस्टर आएंगे हो सकता है फिर जो भी यंगस्टर है उनको फिर वो छुट्टी करा दे, तो इनको चाहिए कि अपने काम की तरफ तवज्जो दे और जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दे। राज साहब ऐसे है कि मैं भी थोड़ी देर टेलीफोन से निकलूंगा, आप मुझे इजाजत दे दें तो इंशाल्लाह आप बात करें, मैं आपको रेडियो सुनूंगा जरूर, लेकिन मैं एक बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बंदा खड़ा है उसको मिलने जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपका रेडियो
1: सुनूंगा। अदनान भी आ रहा है तो अपना शाह साहब आपने बात सुनी, शाह साहब हमारी तरजियात क्या है,
3: जल्दी फारग हो गया तो मैं अंदर आ जाऊँ। ठीक है
1: ठीक है
3: ओके जी खुदा
1: हाफिज़। शाह साहब हमारी तरजियात क्या है
0: जी,
1: हमारी तरजियात क्या है,
0: हमारी तरजियात जो है वो गबियत करनी, शो ऑफ करनी, माजरत के साथ मसाइल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी डिस्कस नहीं करता, जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो किसी भी सियासी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं तो वहाँ पाकिस्तान के मसाइल जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, अगर आप किसी दोस्त को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं, यहाँ के मसाइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो मसले मसाइल है ये कह देना कि देखो जी मैं तो मेरे पे तो ये बात नहीं फिक्स हो रही लेकिन दूसरे पे, लेकिन ये देखें कि जब एक कानून बनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बंदा सही काम कर रहा है या ये बंदा सही

0: काम नहीं कर रहा, वो तो सब जड़ी है। और हादसा किसको कहते हैं? हादसा वो होता है जो सडनली होता है। ये शोर बहुत हो रहा है अजान के रेडियो में।
1: अजान गाड़ी का या माइक बंद करें, माइक आवाज आती है, डबल होती है।
0: और मसला ये है कि हमने जो चीजें हाईलाइट करनी है, अब आप ये देखें कि जिस पे चीज पे हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, वो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो नई टैक्सी आई है यहाँ पे, ग्रीन टैक्सी, ये अब
1: और ड्राइवर भी मिल रहे हैं अभी।
0: जी नहीं नहीं ड्राइवरों को काफी मिल रहे हैं। वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ड्राइवर्स का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। अब नुकसान में जो दूसरे जाएंगे, देखें एक मैं अगर इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तो फिक्स रेट मिल रहा है। मुझे तो ये परवाह नहीं कि सवारी बैठती है नहीं बैठती, पैसे देती है नहीं देती, मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है। ये चीज जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर ये है कि अगर मैं जाता हूँ और मेरे मुझे कोई ऐसा टूर मिल जाता है, ऐसी ऐसी सवारी मिल जाती है, दे देती है कंपनी, जो कि टाइम ओवर हो जाता है, तो उसको मुझे बोनस मिलेगा कि भाई तुमने ये काम जो है ओवर टाइम लगाया, उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो ये ज्यादा ज्यादा जो है बेहतर है। और ये आगे और अब एक नई बहस चली शुरू हो गई है कि जो टेस्ला और ये दूसरे जो कंपनी हैं ऊबर वगैरह, अगर ये बगैर ड्राइवर के गाड़ियां जो है, ये सोच रहे हैं कि इस क्रिसमस में या न्यू ईयर के बाद यहाँ पे फेंक देते हैं, सड़कों पे ले आते हैं, तो फिर ये हमारे वॉनमैन हजरात क्या करेंगे? देखे एक वॉनमैन का कम से कम जो है 30 से लेकर 40 हजार करोड़ जो है सिर्फ गाड़ी का खर्चा है। और अगर उसकी गाड़ी का इतना खर्चा है तो वो कम से कम 70-80 हजार करोड़ कमाएगा, तो उसको वो पैसे मिलेंगे। और अगर उसको दो दो तीन तीन घंटे के बाद 200-300 करोड़ का 250 करोड़ का टोल मिलता है, तो वो उसको वो तो खत्म होकर रह गया। और कौन इतनी महंगी गाड़ियों को बुलाएगा जब मार्केट में आपको जो है एल्बर्स्टोन से एयरपोर्ट जाने के लिए 300 करोड़ में अगर आपको बिजी आर में गाड़ी मिल जाती है, तो किसी का दिमाग खराब है कि वो इस तरह की सेल्स के जो नॉर्मल प्राइस पे जा रही है उसको कौन बनाएगा? तो इस तरीके से आबसे बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, लोगों में जो असाइनमेंट बढ़ेगी, और ये चीजें जो है ये कम्यूनों पर बड़ा असर डालेंगी। और कम्यूनों को अभी चाहिए कि ये जो काउंसलर्स हैं इनको चाहिए कि कम्यूनों पे इस पे बात उठाएं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आवास के रिलेटेड जो हैं, उनको चाहिए कि अभी से ये बैठ के बात करना शुरू कर दें कि अगर यहाँ पे या तो सबके लिए एक फिक्स कर दें। अब मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कि एक वॉनमैन फंस जाता है, वो कहते हैं जी कि काम ही कोई नहीं, अब उसने गाड़ी को गाड़ी से कैसे जान छुड़ानी है, इतने लाखों की उसने गाड़ी ली हुई है, पीछे उसके उसका सरमाया उसने देना है, फिर उसके वो किस तरीके से उसे।
1: शाह साहब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, शाह साहब एक अब कंपनियों के हाथ में सारी गेम चली गई है। आप देखें ना, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आप वाई हेल्प को फोन करते हैं, वो बंदा आता है, वो आपके टायर पे सुराख, खड़ी गाड़ी पे टायर पे सुराख करके कहता है जब अपना वर्कशॉप में ले जाओ, बाकी जो ठीक कर लो। जब आप वर्कशॉपों में जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जी पंचर नहीं लगता, ये आपका टायर 2-2.5 हजार का है, तो फिर ये आपको पंचर नहीं। शाह साहब ये पहले होता था, आते थे वो पंचर टायर उतारते थे, खोल के देखते थे, पंचर लगा के फिट करके वो चले जाते थे। तो शाह साहब ये जो खेल चल रहा है ना सारा, ये खेल अब बड़ा लंबा खेल है जो हमारी लोगों की समझ से नहीं, आप क्या कहेंगे?
0: मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, जो अक्लमंद है वो अभी से ये सोच ले कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट है, कि अगर मैं 30,000 तनख्वाह मैं अपने मुश्किल से अपनी गाड़ी में निकाल रहा हूँ, तो कई दफा मैं 30,000 भी नहीं मुझे आ रहा, तो फिर तो 30,000 की जो नौकरी है वो उसके लिए बेहतर है कि उसमें से टैक्स दे के तो वो अपनी जान छुड़ा सकता है, ना उसको पेंशन गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, ना उसको वर्कशॉप का खर्चा, ना कुछ। यहाँ पे तो जो मुलाजमत है, मुलाजमत के अंदर तो जो मर्जी हो जाए, वो तो कंपनी का सरमाया लग रहा है।
1: चलिए अदनान से ऐसा पूछते हैं, अदनान से, चूंकि अदनान भी काफी स्टडी करते रहते हैं, मार्केट को देखते हैं। अदनान, ये नई कंपनियां आ रही हैं, हमारी जो सियासत है आपको पता है हमारी क्या सोच है, हम किस तरह सोचते हैं, हम टोटल अपना मफाद देखते हैं, बाकी जितने मर्जी कानून सख्त हो जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी ज़ात को कितना फ़ायदा होता है। जब नई ब्रांच आ गई है, इनका काम शुरू हो गया, इनकी 300-400 टैक्सियाँ खड़ी भी, इनकी पार्किंग प्लेस भी है, वर्कशॉप भी इनका अपना, सफाई भी ये खुद करके देते हैं, सहूलियात तो इतना आ रही है, आप क्या कहेंगे
2: साहब? ये तो आ रही है और ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे जैसे ये पता नहीं अब इनको आने तो दो पहले मार्केट में और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इनका सिलसिला क्या होता है, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये हाल ऐसे ही होना है जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे ये फॉस्टेनमार्क बंद हुआ था तो पत्तों का बिरार कोई थी, तो इस तरह काफी कंपनियों की वजह से आने से काफी चीजों की क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, और ये तो फिर गवर्नमेंट को और सियासी बंदों को देखना चाहिए ये किस किस को परमिशन दे रहे हैं। आपका पहला जो सवाल था कि हमारे जो काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, होपफुली वो अपनी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कमिंग मंथ है इसमें तो उन्हें काफी बिजी होना है, क्योंकि बजट का फैसले होने हैं हर कमून के, और होपफुली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब वो काउंसलर बने हैं तो बाहर निकल के अपनी कम्युनिटियों को भी बताएं कि कौन कौन सी क्या कहते हैं कमियां हैं, क्या क्या होना है क्या नहीं होना। जैसे शाह साहब मैं बैठे हुए हैं ये हमिस्टन कमून के अंदर, हमारा तो अगले 2-3 साल बंदा कह ले कि हमें वो जो स्टेट स्कूल मिलते हैं वो ना मिले तो बजट अभी नहीं पूरे होने, क्योंकि 2031 के अंदर जाके करीबन जब ये सारे हमारे मकान वगैरह सब कुछ बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर 100% बजट हमारा बनता है। तो इसी तरह बाकी की कमूनों में मसाइल हैं, ब्रॉनबी में भी होंगे रेफिनरी कुछ मसाइल हैं, वहां पे भी क्या कहते हैं एक पॉन पिस्ता नाम हो जिसको वो पूरा कंप्लीट चेंज कर रहे हैं क्योंकि उधर भी मसल मसाइल थे, तो इस तरह की चीजें बाहर निकल के हमारे काउंसलर को बताने की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि मैंने ये देखा है 14 दिन पहले और देखा है कि जितने मैंगो फेस्टिवल पे और जिधर जिधर हम लोग गए हैं जिन जिन को पता है वो डेफिनेटली सवाल पूछते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछे, मैंने कहा देखे हर सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी क्या कहते हैं हाउस स्प्लिट होती है, मगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लीगली होती है और मुझे पता होता है कि मैं बता सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, और मैंने जैसे अभी भी कहा है कि मेरे पास काफी हमारी जो वेस्टर्न की कमूनों में मीन बंदे बैठे हुए हैं, हमें कुछ तलावे हैं पर वो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनको बता सकते हैं और क्या है, क्योंकि काफी क्या कहते हैं चीजों में तब्दीली आएगी, काफी चीजों में बदलेगी। जैसे अब आप देखें बड़े लोगों को, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोस तो स्विमे है एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मुझे एक बंदे ने उस दिन पूछा, कहता है कि ये पूरा ये जो बंद रहा है ये क्या सिस्टम है, मैंने कहा ये डैम बन रहा है, कहता है ये क्यों डैम बन रहा है, मैंने कहा डैम इसलिए बन रहा है कि इतने पानी बचाना है, कहते है ये हम लोगों को पता ही नहीं, तो मैंने कहा ये तो फिर हम लोगों को आप लोगों को बताने की जरूरत होती है, आप लोग हमसे सवाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे, मैंने कहा ये ग्लोस तो कमून डैम बना रही है क्योंकि फ्यूचर में पानी बचाने के लिए, जब पानी की कमी होगी तो ये डैम जो है ये बारिश के पानी को बचाएंगे, मैंने कहा इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सारे, ये जो चीजें होती है ना बड़ी जरूरी होता है कि हम अपने लोगों को जाके बताएं।
1: अदनान आप ये इन चीजों की बातें कर रहे हैं तो ये आगे मैंगो फेस्टिवल कितने आ रहे हैं?
2: मैंगो फेस्टिवल अभी 2 आ रहे हैं, लाइक एक मैंगो फेस्टिवल हफ्ते को आ रहा है और एक आ रहा है आजादी के 7 मैंगो फेस्टिवल 8 अगस्त को, जो उनने आजादी का प्रोग्राम के साथ मैंगो रख दिए, तो 2 मैंगो फेस्टिवल रह गए हैं, उसके बाद तो मैंगो का सीजन ही खत्म हो जाना है, तो फिर क्या कहते हैं मैंगो के इतने नहीं रहने हैं, तो इसलिए।
1: अदनान ये जो स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं तो क्या ये जो सेहत वाले होते हैं, महकमा होता है सेहत वाला, तो जिस तरह के तरीकेकार होते हैं तो क्या ये अलाउ होती है सारी चीजें लीगली?
2: इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है कमून के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रूव कर दें तो फिर कोई मसाइल नहीं होता, और ऑब्वियसली वो 100% ज्यादातर अप्रूव कर देते हैं क्योंकि उनको अभी तक तो ये उनने पहले तो पता नहीं किस तरह से है, मगर आगे वो देख रहे हैं इस चीज को किसका क्या कहते हैं लॉ की इवनिंग बदलनी है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा क्योंकि
1: मैं शाह साहब आप प्रोग्राम को क्लोज करें और मेहमानों से इजाजत भी लें।
2: इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: ये राजा साहब लास्ट में मैं ये कहूंगा कि लोगों का शुक्रिया कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ये काउंसलर्स हजरात का काम है कि वो आकर बताएं कि जो पेंशनर्स हैं या बिफोर टर्म जिन्होंने पेंशन ली हुई है या वो फैमिली वाले जिनके लो इनकम है इस डेनमार्क के अंदर, और वो जो लेवेस्ट इनकम के यानी कि सबसे कमतर इनकम के अंदर गुजारा कर रहे हैं उनको किस तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कोई भी काउंसलर बात नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर जितनी नई बोली अब बन रही है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज्यादा छोटी और कम और तंग कमरों वाली बना दी इन्होंने कि अगर किसी को मजबूरन वो कमरे ले लेता है तो पहले तो वो वहां पे उनको सोने के कमरे में ही बेड डबल बेड भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर जो सर रेंट है वो इतना ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका गुजारा जो है बहुत मुश्किल। और
1: तो बच्चों वाले लोग जो बन सकता किराया हर आदमी हर कंपनी अपनी मर्जी से किराया रखती है
0: जी। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है ये 85-86 में हमने कोपेनहेगन में इसके ऊपर डिबेट की थी, लेकिन वहां पे फिर वही बात हो गई थी कि जो डिप्लोमेट्स थे जो बड़े बड़े उम्बसमैन थे वो कम्यून को चकरा गए थे और चक्कर दे के तो एक्साइट हो गए थे, तो सियासतदानों को जो काउंसलर्स थे उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो ये डिबेट्स जो है ये होनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हर कम्यून के अंदर जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिलीज वाले हैं जिनकी इतनी हायर इनकम नहीं जिस तरह के डेनमार्क वाले डेनमार्क गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, तो उनको सस्ते जो है वो फ्लैट्स जो है वो देने चाहिए और मुहैया करने चाहिए ताकि वो बच्चे जो है वो बजाय डोमेस्टिक वायलेशन या क्राइम की तरफ जाए या तरसे कि हमें बाहर गर्म मौसम है हमें आइस नहीं मिल रही फलानी चीज नहीं मिल रही। तो राजा साहब ये चीजें जो है ये डिस्कस करने के लिए हमें चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी वक्त आप बुखारी साहब को भी लाएं, किसी काउंसलर को लेके आए जो बड़े ठंडे दिमाग से हमारी बातों का जवाब दे और हमें अच्छे तरीके से ये बताए कि कौन सी कम्यून में वो काम कर रहे हैं और क्या उनकी कम्यून में ये फैसिलिटीज है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्राइम रेट को रोकने के लिए।
1: वोटर सपोर्टर को भी ये पूछना चाहिए ना कि हमने आप लोगों को वोट दी जिस तरह मुजीब साहब फरमा रहे थे कि हमने वोटें दी हैं, तो वोटर सपोर्टर को भी चाहिए ना भी आपको वोटें हमने किस लिए दी थी, आपको मेंबर बनाने के लिए दी थी, आपका कैरियर आपके जॉब बड़े अच्छे आपका कैरियर बनाने के लिए हमें आपकी वोटें दी थी।
0: वो अगर से क्या दे दी अंकल जी अगली दफा मत दीजिएगा वोट, आपने दे दी आपका शुक्रिया अगली दफा ना दीजिएगा, हमने आपको समोसे चाय खिलाई थी बस शुक्रिया आपने इस दफा वोट डाल दिया अगली दफा बेशक आप ना दे। तो बात में असल में ये होती है कि अगर ये लोग आके लोगों को ये बताते हैं इन्फॉर्मेशन तो इससे सहूलियात जो है वो बढ़ जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि 85% या 86% लॉज जो बनते हैं यहाँ पे कम्यूनों के अंदर उनका किसी को भी इलम नहीं, और लोग बाहर आके बात नहीं करते क्योंकि लोग उसके अंदर बैठते नहीं है, बताते नहीं कि कौन सी डिबेट हुई है। आप यकीनन किसी से भी टेलीफोन पर कोई कह दे कि आए मुझे ये बताएं कि आज आप इस हफ्ते आपकी किस चीज पे डिबेट हुई है, तो वो आपको गुड़बड़ बात करके तो भाग जाएंगे वो नहीं बताएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है हमें ये बात करनी चाहिए बताना चाहिए कि भाई आपने हमें अलर्ट किया है हम इस कम्यून में गए हैं इस कम्यून का मंशूर ये है। अब जिस तरीके से कोपेनहेगन कम्यून को आप ले लें वहां आपको जो इलेक्ट हुए हैं उनको चाहिए था कि आपके जरिए या दूसरे मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अवाम को बताते कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अवाम के लिए सड़कों के लिए पार्किंग के लिए हाउसेस के लिए बूढ़ों के लिए बच्चों के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वह वो पूरा साल वो प्रोजेक्ट पे बैठे, पूरा साल वो उनके चलता रहे, लेकिन मेजर चीजें उनको बतानी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है आप किस तरीके से अमल कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार है किस तरह आपने रायजे लेना है, किस तरह आपने करना है। ये इन चीजों पर वो तो बात ही नहीं कर रहे। जब तक लोगों को ये चीजें इल्म नहीं होंगी, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। देखे फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हर मिनिस्ट्री ने बहुत सर्विस बनाई हुई है। ये वायद कोपेनहेगन की बहुत सर्विस है या वेस्टर्न की बहुत सर्विस है, जिसके अंदर सिर्फ तीन चीजें आप जाके उनसे हल करवा सकते हैं, बाकी का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने अगर खेवकार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है या कम्यून से किसी के, तो वो बाकी है उनके लिए कोई रिलेटेड ऐसा नहीं कि कोई आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, वो नहीं ले सकते। और आपको इवन आप एल्बर्सोन बॉमिस्टर को टेलीफोन करें ना, तो उसका उसका नंबर ही कोई नहीं है। तो ये कैसी कमी उन्हें है जिसके अंदर कोई बॉमिस्टर से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप कहीं जाकर टाइम नहीं ले सकते, आप किसी काउंसलर से नहीं मिल सकते। आप पूछे कम्यून से पूछे कि कोपेनहेगन ये अपना एल्बर्सोन कम्यून के अंदर कौन कौन से काउंसलर है, उनके टेलीफोन नंबर हमें दे, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका कौन सा ऑफिस है, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये अवाम को मिलनी चाहिए। जी राजा साहब,
1: मैं मजीब साहब की तरफ पढ़ते हैं। मजीब साहब, आप चूंकि ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, आपके घर से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डिप्लोमेसी डिप्लोमेट जो मिलती रहती हैं, लेकिन हम किसी काम की तरफ नहीं जाते मासवाय तनकीद के अलावा।
3: आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह आप देखें ना मुकरम शाह साहब बहुत से तजिया करते हैं, लेकिन हम कह के अपनी जुबानें भी थका लिए हैं, अपने गले भी खुश कर लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है असर नहीं ना, इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा। और इसका एक ही इलाज है, मैं जो समझ रहा हूँ कि बेहतर जो इसकी दवाई है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें सोच समझ के अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर कमून के अंदर कोई भी काम हो रहा, कमून के देखें जो अपने हमारे कैंडिडेट मुंतखब उनके प्राइवेट नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको ऑफिस वाला नंबर ही हमें चाहिए, वो भी नहीं उठाते। लोग कहते हैं जी आपकी खातर वोटें दी थी तो बंदे किधर है, तो हम कहते हैं जी फिर आप इस सफर तो आपने हमारी खातर दे दी है, तो नेक्स्ट टाइम आप कारकर्दगी पे दें, जो बंदा कारकर्दगी दिखाए उसको आप वोट जरूर दें, और जो बंदा नहीं दिखाए आप उसको बिल्कुल वोट ना दें। और बेशक मैं आ जाऊं, बेशक आपके पास शाह साहब आ जाए, बेशक आपके पास राजा गफूर साहब आ जाए, आपने वोट नहीं देनी, आपने वोट उसी बंदे को देनी है। और यही देख लें आज माशाल्लाह अब अगस्त शुरू होने वाला है, तो अभी नवंबर तक तो एक साल हो जाएगा, तो अभी एक साल में कोई चीज मुझे किसी कम से मेरे पास कोई ऐसी कोई ऐसी खबर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी काउंसलर ने या रीजन के बंदे ने या कोई ऐसा कोई स्टेप उठाया है कम्युनिटी के लिए, या कोई काम हो रहा है, या कोई ऐसी चीजें जो कि पाइपलाइन में है किसी का, वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ऐसी बातें तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर जो हैं, जो हमारे नए काउंसलर बने थे, उनको चाहिए कि वो अपनी फील्ड को और मजबूत करने के लिए मैदान में आए और अपने मीडिया पे आकर लोगों को बताएं कि भाई ये काम हो रहे हैं, ये काम पाइपलाइन में, ये काम
1: नंबर। मुजीब साहब, ये बात तो जज्बे की होती है, बेचारे मेहनत तो करते हो गए, फिर वो कहते हैं हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो इनको पहले कहा जाता है सियासत में बंदे के पास टाइम नहीं, तो उसे सियासत में आना ही नहीं चाहिए।
3: देखिए जी, फैमिली के लिए टाइम जरूरी है, अपने काम के लिए टाइम जरूरी है, अपने दोस्तों के लिए टाइम जरूरी है, लेकिन अगर आपने सियासत में हिस्सा ले लिया है और एक बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आपका तल्लक है, तो फिर आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, आपको उसके लिए टाइम निकालना। आप अपना एक प्रोग्राम बनाए, एक प्लान बनाए, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप उसमें से कह दें जी बस हमने 3 दिन जो है ना वो सियासत पे काम करना है, 4 दिन हमारे जो है ना फैमिली दोस्त है हमने उनके साथ गुजारे, तो फाइन। लेकिन 3 दिन जो है उसके अंदर कम अज कम इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं।
1: तो शाह साहब से पूछें, शाह साहब ये मीटिंगों में जाते हैं, ये मुफ्त जाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं?
0: नहीं जी, मैं अपना मजीब कुरैशी साहब से भी एक सवाल करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। देखिए उडनसे में आज उसमें यूलैंड में इनसम बनी हुई है जमातें, जहां जैसे यहां पर 70s-80s में कोपेनहेगन में होती थी इनसम, यानी कि आप अकेले हैं, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आप जाके इकट्ठे बैठे और आपने जैसे लोगों से जो है वो बैठ के तो आप बातचीत करें, खाना खाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे ना वेस्टाइन में कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोपेनहेगन में ऐसी चीज है। वो पैसे कहाँ गए वो बोलिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं था, क्या नाम है, वेंसा की तरफ से मैं इलेक्टेड था, इसके अंदर इंट्रोगेशन हुआ कोपेनहेगन के अंदर, तो वहां पे कुरैशी साहब के बड़े भाई भी थे, तो हमारे सामने बजट आता था कि कौन कौन सी तंजीमात हैं, किन किन को ये पैसे जो है वो मिलते हैं, और ये सारा कुछ जो था वो हमारे थ्रू हमारे से बहस करके तो वो लेके जाते थे। तो अब मसला ये है कि ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने देखना है कि ये चीजें कहाँ गई, ये पैसा सरमाया कहाँ लग रहा है, आखिर कोई ना कोई इसको उद्म्यूट कर रहा है, कोई ना कोई इससे फायदा ला रहा है, ले रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो अब ये है कि मैंने ये सोच रखा है कि छुट्टियों के बाद मैं इनको लेटर लिखूंगा, और मैं ये जो है फलके सिंह का ओम्बसमैन और जो कोपेनहेगन ट्रिब्यून है उससे मैं ये इंफॉर्मेशन मांगूंगा कि मुझे ये ऑफर नहीं बताया जाए कि यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर जमाते हैं और कौन कौन से कल्चरल सोसाइटीज हैं जो किसी ना किसी बहाने में जो है वो फॉरनर्स के लिए कल्चर सिस्टम के लिए पैसा लेते हैं। तो इनको इनको जरा मुझे ये बताएं, और ये मेरा राइट है सियासतदान यहाँ पे, तो वो बताएंगे इंशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, और ये मैं लूंगा क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, इनके पास पोली होता है। मैं आपको बताऊं कि 1997-98 में तकरीबन 24-25 मिलियन करोड़ जो था सिर्फ थिंगबिया के लिए गिना गया था। आप ये हिसाब लगा लें कि थिंगबिया जो है उसके अंदर 63% जो है वो फॉरनर्स हैं और 37% जो है वो डेनिश हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, वहां पे जो पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है।
1: लेकिन बेसिक बात तो यही है ना कि जो कम्यूना में काउंसलर हजरात बैठे होते हैं, कमेटियों में बैठे होते हैं, वो जो फैसले करते हैं वही माने जाते हैं ना।
0: अगर वो वहां डिबेट लेते हो जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, मजीब साहब बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इदलान कर रहा है, आप सवाल कर रहे हैं, अगर ये हिस्सा लेते हो, जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे साथ आके बात करें, हम इनसे सवाल करें कि भाई वो फलानी फलानी थी बात, वो उसके ऊपर आप हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, हम एक कल्चर ट्रेनिंग बनाना चाहते हैं, हम कहाँ अप्लाई करें, कौन से कितना हमें जो है वो बजट मिलेगा, किस तरीके से हम उसकी एक हिस्से और दूसरी चीजें बनाएंगे। तो ये चीजें जो है ये आपको कम्यून वालों ने देनी है, और अगर वो जो काउंसलर जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो अपने अपने दोस्तों अहबाब में और अपनी फैमिलीज में ही वो ये सब कुछ अगर लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए, ये सामने आनी चाहिए कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि ये तो मजीब साहब को भी पता है और मुझे तो 100% पता है कि मैं इतने सालों से डेनिश सियासत में हूँ, ये तो मुझे 100% यकीन है कि हर कम्यून के अंदर ऐसे बजट रखे जाते हैं जो मुख्तलिफ जो फॉरनर्स है उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, उनकी मीटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं।
1: मजीब साहब आपने शाह साहब की बातें सुनी, मजीब साहब एक सिस्टम तो होना चाहिए। आज पुराने वक्तों की अगर आप बात देखें तो काउंसलर बड़े मेहनत करते थे, अब भी करते हैं, अब नहीं, ये नहीं कि अब नहीं करते, करते हैं सारे अपने अपने तरीक़ेकार से करते हैं, बाज का नज़र आता है, बाज कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम नज़र नहीं आता। बात तो वैसे आपकी रिकॉर्ड चलती रहती है, लेकिन मजीब साहब नौजवान बच्चे हैं, यहाँ पैदा हुए, उनको भी कानूनी राइट्स हैं, उन्हें भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और चूंकि ये यहाँ पैदा हुए, इनकी सोच जो है वो दूसरे बच्चों की, ये हमारी तरह तो सोच नहीं है, ये अपने आप को डेनिश समझते हैं, डेनिश शहरी समझते हैं, तो हकूक लेकर देना सियासतदानों का काम होता है। आप क्या कहेंगे?
3: मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जैसे मोहतरम शाह साहब ने कहा कि किसी जमाने में इंसान हुआ करती थी, मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप है एल्ड्रा ग्रुप जो जिसका नाम है सीसा, और वो जो 67 ईयर्स के बाद जो जो लोग हैं उनका उस अभाव जो लोग हैं उस उनका ये एक ग्रुप है, और उसमें तकरीबन अगर नैरो ग्रो में देखा जाए तो ये खाली जो है फार्मर्स लेडीज जेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के कोई वो 60 से ऊपर उनके मेम्बर हैं। वो हर ट्यूसडे को बैठते हैं काफी के लिए बातें करने के लिए, हर महीने में एक दफा वो या दो महीने में एक टूर लगाते हैं चुवाली का, या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी और जगह का, ये पिछले दिनों बोनो गए हुए थे ये बैरा रूप में, म्यूजियम में, ان کو باہر لے کے جاتے ہیں, پھر کبھی کبھی ان کو کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, پھر ان کو کبھی کبھی فلم کے لیے لے کے جاتے ہیں, کبھی کبھی ان کو تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فریننگس تو ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں انفارمیشن دی جائے جی ایسی آپ فریننگ بنائیں اور ایسے کاموں کے لیے وہ چیز ہے, اور اس کے لیے آپ کو آخر ان کو بجٹ ملتا ہے تو وہ کھانا بھی دیتے ہیں, کافی بھی پیش کرتے ہیں, فروٹ بھی دیتے ہیں, میٹنگس بھی کرتے ہیں, لے کے بھی جاتے ہیں. تو یہ پولیا ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر کمون میں ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میں وہ بات آتی ہے کہ وہ جو چودراہٹ ہے نا ہماری, وہ ہمارے میں لے کے ڈوب جاتی ہے. اگر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ انسان کی طرح کو فریننگ بنائے تو کیا ہوگا, پیچھے دو بندے کھڑے ہو جائیں گے, نا جی شاہ صاحب اسے کیوں بڑھا دیے, اسے آپ نے بڑھا لیے, شاہ صاحب کو تو ایڈے مطبیر آ گئے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری مینٹیلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. میں بھی یہ کہوں گا سب کو, کوپن ہیگن کمون والے کوپن ہیگن میں, البرٹ سون والے اپنی اپنی ایک فریننگیں بنائیں, اور فریننگیں بنا کے بیٹھنے کی جگہ لیں, آپس میں بیٹھ کے بات چیت کیا کریں, قانون کو آپس میں شیئر کیا کریں, اپنی دوسری جو ترجیحات ہیں اس پہ بیٹھ کے بات کیا کریں. تو یہ ایک ہمارے لیے ضروری ہے.
1: دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ سے کہوں, چونکہ آپ خود بھی سیاست دان ہیں لیکن آپ زیادہ سیاست جو ہے وہ ڈائنر سیاست کرتے ہیں, تو مجیب صاحب آپ سیاست دان آپس میں بیٹھے نہیں چاہتے. پہلے لوگ سیاست دان سارے بیٹھتے تھے آپس میں, یہ بڑے لوگ دیکھے نا کہ یہ سارے آپس میں بیٹھتے ہیں, جو نیچے ہوتے ہیں ان کو نہیں, یہ آپس میں اکٹھا بیٹھے ہیں, ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ سیاسی دشمن تصور کرتے ہیں.
3: لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کونسلر ریجن میں لوگ ہیں, ان کو منسٹروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, پارلیمنٹ کی طرف, ان کو اپنا ایک گروپ بنانا چاہیے. بار پچھلی دفعہ ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کم از کم جو ہمارے کینڈیڈیٹ منتخب ہوں یہ اپنا ایک گروپ بنائے, اس گروپ میں مطلب لوگوں کو شامل کریں, پڑھے لوگ لوگوں کو شامل کریں, اس میں ایک دوسرے کو انفارمیشن دیں, کوئی قانون آتا ہے اس کے اندر ڈال دیں. لیکن جو میں فریننگ کی بات کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ وہ فریننگ, کیونکہ اس جو سسٹم ہے اس کا جو سٹوڈے جو گروپ ہے نا اس کا میں اس بھی سلسلے میں ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو فنڈ بھی مل رہا ہے, ان کو ہر چیز مل رہی ہے, اور وہ چلا بھی رہے ہیں, اور ان کا مطلب کہ لوگ جو ہے اس کے اندر آتے ہیں بیٹھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ تنہائی ہے, اور لوگ جو مطلب کہ اس عمر میں چلے جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے آپس میں کوئی بات چیت کریں, کوئی ملکی حالات دیکھیں, کوئی ویسے بات چیت.
1: جی شاہ صاحب اس کو ذرا آپ کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں, آخر میں کوئی شاہ صاحب حال بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں.
0: جی اس کا حال بس یہی ہے کہ لوگ سامنے آئیں اور آ کر کھل کر بات کریں.
3: بالکل
0: یہ جو مجیب قریشی صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ دیکھیں کہ ہر فرائیڈے کو وہاں پہ مختلف فائننگ جو ہیں, کسی کا فرائیڈے کو ہے, کسی کا ٹیوزڈے کو ہے, کسی کا وینسڈے کو ہے, اوڈنسے کے اندر, اسی طرح دوسرے شہروں کے اندر یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ پرابلم یہ ہے, وہاں کسی میں جیسے مجیب قریشی صاحب نے بولا کسی میں چودراہٹ نہیں, سارے ملکوں کے, کوئی ٹرکش ہے, کوئی مراکو کا, کوئی الجیرین ہے, کوئی افریقہ کا, سب بھائیوں کی طرح ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں, لے کے بھی آ رہے ہیں, کسی کے ذمہ یہ چیز ہے, وہ کوئی کافی بنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ویٹنامیز بھی ہیں, سب اکٹھے مل کے, اور یہ صبح سے لے کے شام تک یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں, مارننگ میں بریک فاسٹ سے لے کے, تو ان میں کافی
1: کنورسیشن. اپنے پاکستانی سیاست میں ملوث تو نہیں ہو گئے
0: راجہ صاحب اس کے اندر کونسلر بھی آگے بیٹھتے ہیں, جو وہاں پہ الیکٹڈ کونسلر ہیں نا وہ بھی آگے بیٹھتے ہیں, وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آگے مسائل کیا ہیں, آپ بتائیں, آپ فلانے جگہ
3: بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں, جھٹے بیٹھ کے ساری بات چیت ہوتی ہے.
0: تو اگر یہاں پہ ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون جائے گا, کون؟
1: تو شاہ صاحب یہاں آ کر جو پاکستان میں مجیب صاحب بہتر سمجھتے ہیں, جو جن کے لیے ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں آ کر کیا دیتے ہیں؟
3: وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن راج صاحب دیکھیں میں ابھی جو سسٹم کی بات کر رہا تھا نا, اس کا ایک نیارا برو کا گروپ ہے, ایک اس کا سود ہے.
1: بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ جاتے ہیں آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے,
3: اور اس کے بعد ایک آما کا گروپ ہے, ابھی اگست کے آخر میں ایک نارتھ ویسٹ کا گروپ وہ شروع کر رہے ہیں وہاں, حالانکہ آما میں اور سود آؤن میں زیادہ لوگ نہیں ہیں, سب سے بڑا گروپ نیارا برو, لیکن وہ مختلف لوگ ہیں, بیٹھتے ہیں مختلف نکل, سارے فارمر اور 67 سے اوپر آپس میں بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تھوڑا سا دو سے تین گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, وہ دو سے تین گھنٹے, تو دو سے تین گھنٹے تو کم از کم لوگ باہر تو نکلتے ہیں نا, باہر نکل کے یہ بڑی ضروری, گھروں سے باہر نکلنا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ سینئر سٹیزن ہو جاتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو گھروں میں بیٹھ کے بیماریاں لگتی ہیں, تو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں. تو میرا خیال ہے اس پہ سب کو کام کرنا چاہیے اپنے اپنے کمونوں کے اندر, اور جو کمونوں کے اندر منتخب ہوئے ہیں ان کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے ہیں, وہ کم از کم ان چیزوں کے لیے اپریشیٹ آگے آئیں اور کہیں جی آئیں 15-20 بندے اکٹھے ہوئے ہیں, ہمیں فریننگ بناتے ہیں, پھر اس میں آستہ سے لوگ بڑھتے جائیں گے. تو اس میں ایک ہی چیز ہوئے گی کہ بھائی چودراہٹ کسی کی نہیں ہے, یہ سب کی فریننگ ہے, اور سب آئیں بیٹھے کافی پئیں باتیں کریں, 2-3 گھنٹے مخصوص ہو ہفتے میں ایک دن, سب کا دل بھی خوش ہو جائے اور سب اپنا آ کے ایک دوسرے کے ساتھ بے شمار چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. ہم ٹیلی فونوں پہ بھی شیئر کرتے ہیں, جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا.
1: بڑی اچھی تجویز ہے شاہ صاحب, آپ کلوز کیجیے گا.
0: جی بالکل میں اگری کرتا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ان سم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ بہت ہی سم فون میں بالکل معاشرے میں اکیلے رہ جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ فائننگ میں ممبر بن سکتے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے یہ کمیون جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرتی ہے, اس کے پیسے وہ دیتے ہیں. جتنے زیادہ ممبر آپ کے بنے گے اتنے زیادہ ممبر لیڈیز ہوں جینٹس ہوں یہ ان کے لیے وہ کرتے ہیں. مسئلہ بھی یہاں پہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے, جن کا مجھے علم ہے کہ کئی لوگوں نے ایسی فائننگز بنا کر وہ پیسہ اپنے 3-4 بندوں میں چودراہٹ میں بانٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد مسئلہ جو ہے وہ وہی کا وہی رہتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آدمی جو ہے وہ جمپ کر کے اس طرح کی چیز بنائے, اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کونسلر کیونکہ ان لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں, وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے, اور اس طرح کی فائننگ نہیں بن رہی. لیکن اب کیونکہ یہ فیس بک پہ بھی آ رہا ہے, یہ اس چیز کو ڈیلش جو ہے سیاستدان وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انٹرگریشن جو ہے یہ سٹاپ ہوئی بھی ہے ان واندرا کی طرف سے, اس کو بحال کرنا چاہیے. اور یہ اس کو بحال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائننگز بنانی چاہیے جس کے اندر ڈیلش بھی آئیں, دوسرے بھی آئیں, اپنے لوگ بھی آئیں. ٹھیک ہے آپ ان کا ٹیبل, آدھا ٹیبل پر وہ بیٹھے ہیں, آدھا ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے ذہنی طور پہ جیسے مجیب قریشی صاحب نے کہا, آپ بہت اپنے آپ کو ہلکا اور چست محسوس کریں گے, اور یہ آپ کا سلسلہ بن جاتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ یہاں سے ہم فائننگ کے نام پہ پیسے لے کے پیچھے محل پر بنائیں, ان کو اب ختم ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں گالیاں دینے یا بدوائیں دینے کی بجائے ہمیں یہ کم از کہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو بیانات ہیں, یہ جو لاز ہیں, یہ ہمیں بتا کر گئے تھے اور اس سے ہم فائدہ جو ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں.
3: جی راجہ صاحب, میں ایک چیز مینشن کروں گا کلوز کرنے سے پہلے, یہ جو میں سیسن گروپ کی بات کر رہا ہوں, یہ کیا ان کا ریویو آتے ہیں, یہ آ کے آپ کو کمون کا بتاتے ہیں, جی آپ کمون کے اندر آپ کو کیا کیا سہولیات ہیں, آپ کیا کیا مدد لے سکتے ہیں. باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے میڈیسین میں کیسے ہے. یعنی کہ جو کام ہمارے کونسلروں کے ہیں وہ یہ آ کے کمون سے بندے بلوا کے باقاعدہ ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ ایسے ہے, ایسے ہے, ایسے ہے, یہاں تک کہ آپ نے جو فل مک دینا ہوتا ہے وہ کیسے بنانا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, یہ ساری انفارمیشن آ کے نا وہ ان گروپوں میں آ کے دیتے ہیں, جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو مزید معلومات ملتی ہے. تو ایسی چیزوں میں اور ایسی ٹریننگ میں حصہ لینے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اکتوبر کے بعد میں اگر ایک ایس ایف سے میری میٹنگ ہو جائے نیرو برو میں, جو نیرو برو کی ہماری کریس ہے, تو میں ان سے کوشش کروں گا کہ آپ ادھر نیرو برو کے اندر ایسی ایک کوئی انسان کو بنائیں کہ جس میں ہم کم از کم جو لوگ ہیں نا ان کو اکٹھا بٹھا سکیں اور اس کے اوپر مختلف چیزوں پہ بات کر سکیں. میں کوشش کروں گا کیونکہ آلریڈی یہاں پہ سیسم ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے زیادہ نہ بن سکے, لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا, اور اس سے نقصان کوئی بھی نہیں ہے, بے شمار آپ کو معلومات.
4: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دھوپ اور سایہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, سیاست بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو اس وقت ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں کہ ان کے پاس آج کیا ہے. شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو.
5: آپ کے ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام شاہ صاحب. موسم اور یہ ساری چیزیں, ٹھنڈا گرم چلتا رہتا ہے, سیاست بھی چلتی رہتی ہے, آج کیا لے کر آئے ہیں ہمارے سامعین ناظرین کے لیے؟
0: دیکھیے اس وقت موسم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے, हम लोग पिछले एक हफ्ते कुछ गर्मी हुई थी, लेकिन बारिशों की वजह से, क्योंकि सख्त पानी की कमी हो रही है पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पानी, पीने वाले पानी की कमी हो रही थी, इसलिए बारिशों का डेनमार्क के अंदर होना बहुत ही जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा मौसम यहाँ पे बना दिया कि आज भी वो कह रहे हैं कि डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेज, जो जिसको स्काइप कहा जाता है, वो बारिश होगी। और ये अच्छा शगुन है कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, नबातात और हर किस्म के जो दूसरी चीजें हैवानात पर हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है। जमीन के अंदर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पानी की बहुत शदत से जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और उनकी भी जो है प्रॉब्लम वो बारिश की वजह से सामने आ रही है, हर एक चीज हो रही है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल इस तरह का मौसम है जैसे कि हम मरी में आए हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और ये हवा जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब सेहत के लिए बहुत अच्छी है, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फिर जो है सियासतदान बात करेंगे, अभी तो छुट्टियां पर हैं, तो अभी तो शुगर लगा हुआ हर तरीके का, खबरें फिर भी आ रही हैं, तो क्या खबरें भी तो कुछ बताएं हमें।
0: देखिए जी, खबरें इस वक्त तो इंतहाई पूरा दुनिया, पूरा यूरोप, इवन डेनमार्क जो है यूरोप के अंदर, हमने अगले दिन भी ये बात की थी कि यूक्रेन के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हालात जो है वो सियासी, वो इस वक्त डेनमार्क के अंदर खराब है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान सिर्फ इस बात को ये अजम उठाए हुए हैं कि हमारे, हमारी फैमिली, हमारी बात, हमारा ये जो घूमना है बात छुट्टियों पे, ये बहुत जरूरी है, हम छुट्टियों पे हैं, तो फिर वो सियासतदान ही है, फिर के वो आम वर्कर हैं जो कि छुट्टियों पे चले गए हैं और उनको अवाम और सियासत का कोई उनका ओना बिछोना आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं है। सियासतदान, जैसे मैंने पहले कहा था नाज़रीन को, कि सियासतदान वैसी है जैसे एक जज होता है हर वक्त ड्यूटी पे, जैसे एक पुलिस वाला होता है हर वक्त ड्यूटी पे, एक फौजी होता है हर वक्त ड्यूटी पे, तो सियासतदान जो होता है वो हर वक्त सियासत ही करता है, क्योंकि उसका जो अज़्म होता है वो अवाम की बेहतरी के लिए होता है, अवाम को इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, अवाम के साथ उसका रابطہ जुड़ा रहता है ताकि अवाम कल को उसको यतीमी की सूरत में बनाकर लोगों के सामने जाकर ये ना कहना चाहिए कि जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे वोट डालें, नहीं, बल्कि लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये उनके लिए जाग रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। तो हमारे सियासतदानों को आना चाहिए। अभी अगस्त का महीना आ रहा है, ये जुलाई का महीना तकरीबन खत्म हो गया, तो सितंबर, 5 सितंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकलने जा रहा है जो फॉरनर्स के खिलाफ है। इसी तरीके से जो कवानीन है यहाँ के, मैंने हजार बार ये बात आपके रेडियो से, आपकी जरिए से ये बात नशर की है कि डेनिश आइन और डेनिश लॉज में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे लोग, हमारे सियासतदान जो हमारी जुबान, अहले जुबान है हमारे, वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि जी नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे वो कानून को सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप महफिलें लगा रहे हैं, आपके पास इस वक्त बहुत बड़े चांस है, इतने मैंगो फेस्टिवल्स हो रहे हैं कोपेनहेगन के अंदर, कोपेनहेगन से बाहर हो रहे हैं, आप वहां पे जाके अपने स्टॉल लगा सकते हैं, लोगों को हर जुबान के अंदर इंफॉर्मेशन मुहैया कर सकते हैं, आप लोगों से जाती तौर पे, यानी कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए जाए मैंगो खरीद रहे या अपना फोटो सेशन कराने के लिए मखसूस लोगों से जफे मारने के जरिए आप जाएं, या अगर कहीं क्रिकेट में जाहिर होकर आप ये कहें जी कि इससे लोगों पे बहुत ज्यादा हमारे असरात पैदा हो गए, नहीं, ये गलत चीज है। आपको ہر انسان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان سے ان کی مشکلات کا پوچھنا چاہیے، صرف سلام علیکم کرنا یا فوٹو کا سیشن کرنے سے نہیں، آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو، خصوصی طور پہ جو ہماری وہاں پہ بہنیں بیٹیاں آئی ہوتی ہیں لیڈیز، آپ کو ان سے مخاطب ہونا چاہیے، ان کو اوپنلی یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کیا بنے ہیں، یہاں پہ کیا سختی ہیں، اب کمیون میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا بتائے، یہاں کے جو میڈیکل بیماری پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ علم نہیں کہ جب ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر سے تو لکھوا لیتے ہیں لیکن جا کے اس کو اپوتھیک سے بائی نہیں کرتے، جب تک وہ اپوتھیک سے بائی نہیں کرتے تو کمیون کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے، گورنمنٹ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں لیکن یہ چیزیں اس نے خریدی نہیں، تو اس پہ اس کا جھوٹ سچ پکڑا جاتا ہے، بعد میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں جی کسی نے ہماری شکایت کر دی، دیکھیں جی فلانے نے یہ کر دیا، دیکھیں جو میڈیسن جو آپ کلیئر کر رہے ہیں، جو آپ یہ ڈاکٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے گھٹنوں کی یا مجھے کمر کی یا مجھے جو بیماری ہے اس کی دوائیات جو ہیں وہ جو بھی وہ لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر وہ آپ کو بائی کرنی پڑیں گی، اگر آپ بائی نہیں کرتے تو وہ آپ کے کمیون کے پیج پہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ دوائی لی، اس کا کتنا آپ کے دوائیوں کا سالانہ خرچہ کتنا، ماہانہ خرچہ کتنا، یہ وہاں پہ آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، یہ کام ہمارا بتانے کا نہیں، یہ کام ہے جو سیاستدان جو کام کر رہے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم ویلفیئر تنظیمیں چلا رہے ہیں، یہاں پہ جو تنظیمات بنی ہیں یہ ان کا لوگوں کا کام ہے کہ آ کے لوگوں کو اویئرنیس دے، اسی طریقے سے جیسے یہ مینگو فیسٹیولز ہیں یہ دوسری چیزیں ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ پبلک میں بھی آ رہی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو یہ کان دھرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلوڈ ہو چکی ہیں، کب اس کے اوپر کام ہوگا میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو چکے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، یہ ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ یہاں پہ مینگو فیسٹیول لگ رہے ہیں، کرکٹ ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو لیگلائز طریقے سے لے کے چلیں، لوگوں کو انفارمیشن دیں، راجہ صاحب میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جہاں پہ بھی فوڈ فیسٹیول لگتے ہیں آپ یہ فوڈ فیسٹیول جو ہے یہ باقاعدہ آپ کو حکومت یعنی کہ لوکل کمیون کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لگا سکتے، آپ کو کمیون کو ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کون کون سی فوڈ ہوگی، کون کون سی چیزیں ہوں گی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ لاگو ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا پڑے گا، تو یہ کافی چیزیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں پڑھنے میں آ رہی ہیں، اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا ہے، اتنا زیادہ پیجز ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، پہلے چند ایک ہوتے تھے کہ واٹس ایپ پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، ایک تو سوشل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے مسائل پہ آ گیا، اب تو آپ دیکھیں کہ پولیس کی اپنی ایک ویب سائٹ بن چکی ہوئی ہے جو ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کہ پورے شی لینڈ میں کیا ہو گیا، یو لینڈ میں کیا ہو گیا، فیون میں کیا ہو گیا، کون کون سے کرائم، کون کون سے رجسٹرڈ ہوئے، وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، کس نے گاڑی تیز کی، کس نے گاڑی کس کا چلان ہوا، وہ سب کچھ جو ہے، تو ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے لوگوں کو یہ علم بتائیں کہ دیکھیں بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں، بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، مخالفین جو مرضی کے اس بات پہ، سکندر صدیق جو ہے ملک سکندر، اس نے 2-3 آرٹیکلز لکھے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس نے لکھے ہیں کہ یہاں کی جو اویئرنیس ہے، حالانکہ وہ بھی بچوں کے ساتھ میرا خیال میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے یورپ میں کہیں گیا ہوا تھا، تو اس نے بھی کافی بات کی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے دوسرے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے حالات کے بارے میں بتائیں، بلکہ یہ نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بیک بائٹنگ جس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کی غبیت کریں، تو میں اپنے ینگسٹر سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے راستہ بنائیں، کیونکہ فلکے تھنک الیکشن جو ہیں وہ کسی وقت بھی اس ملک میں دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں, کیونکہ اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت کو پی ڈی ایم کو لے کے چل رہی ہیں ان کے اندر اختلافات بڑے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سوشل ڈیموکریٹ نے کیا کیا ہے, مونس لوکیٹوف نے فورن سے پہلے جو ان کی فورن پالیسی رولنگ پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے, اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, اور اب جو ہے سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ بالکل جو اس کے اندر پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا صحیح سوشلزم کے جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بلو بلاک کی جو پالیسی سوشل ڈیموکریٹ میں گھسائی ہوئی ہے اور حکومت کر رہی ہے اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے پر دوبارہ پھیلا رہی ہے. اور اب سوشل ڈیموکریٹ کیا کرنے جا رہی ہے یہ بھی ایک ڈیٹ ماہ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں تک اثر رسو رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مونس لوکیٹوف جو ہے یہ بہت ہی ایک قابل انسان ہے اور انسان ہمدرد, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ڈینش آئین ہے سوشل ڈیموکریٹس کی اس حصے کی جو آئین پہ علمداری چاہتے ہیں جو آئین پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں مونس لوکیٹوف اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا کردار ہے. اب وہ اس پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیکل وینسلا اور اس کے ساتھ ایس ایف اور اس کے ساتھ جو الٹرنیٹو جو ہماری کمیونسٹ پارٹی ہیں یہ اب حکومت کا حصہ ہے, لیکن ابھی تک جتنے بھی سوشل ڈیموکریٹ کے جو انٹرویشن کے منسٹر ہیں جو ان کی آئین کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہاں جو انہوں نے نئے لو فاصلے کے اوپر باتیں کی ہیں اس کے خلاف کسی ایک پارٹی نے نہ کوئی پروٹیسٹ کیا نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ یہ ہماری پارٹیوں کے خلاف ہے. وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کیا وہ اس چیز کا انتظار
1: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ تو بہت ساری کی جاتی ہیں, میں غیر ملکیوں کی بات کروں گا, ڈیمانڈ تو یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, ہر پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہر پارٹی میں شامل بھی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتا ان کی ترجیحات کیا ہیں. جب بھی کوئی مسئلے مسائل بنتے ہیں اس وقت یہ سیاستدان کھل کر باہر نہیں آتے, اپنے پارٹیوں میں جا کر یہ بات نہیں کرتے, لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے, ٹاؤن ہال کے سامنے نہیں جاتے, پارلیمنٹ کے سامنے نہیں جاتے, جمہوری حق مانگنے کے لیے جاتے. یہاں تو جمہوریت حق مانگنے کے لیے یہ تو سب سے بہترین ملک ہے.
0: جی بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہاں کا جو آئین ہے وہ عمر لاہور, سب سے پہلے میں نے ہی 80s میں اس بات پہ بات کی تھی, بلکہ جو اس وقت ڈی آر ریڈیو ہوتا تھا اس کے اوپر سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوشن کی بات میں نے ہی کی تھی کہ یہ عمر لاہور ہے اور عمر لاہور جو ہے وہ انسانیت کا تقاضا کرتا ہے, لیکن ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے جس میں میں خود شامل ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو میں برا کہہ رہا ہوں, میں خود بھی اس میں شامل ہوں ایز اے سیاست دان جو میں نے یہاں پہ سیاست کی ہے, کہ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھے تو میں نے ان کے لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں دی جو مجھے دینی چاہیے تھی. حالانکہ میں لوگ مجھے کریٹیسائز کرتے ہیں, لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, کرنے دیں, لیکن جو قانون ہے قانون جو ہے یہاں کا آئین آج بھی انسانیت دوست آئین ہے, یہاں کا آئین جو ہے آج بھی وہ ہمیں 100% پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ بات نشر کی تھی کہ یہاں کے جو انسانیت دوست آرگنائزیشنز ہیں وہ حکومت کے اس قانون کے اوپر کہ ایک سال کا جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کو رپورٹ کر دیا جائے, اس ملک سے نکال دیا جائے, تو اس کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہی آرگنائزیشنز جو ہیں اور بہت سارے ڈینش, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 99.2% جو لوگ ہیں ڈنمارک کے اندر وہ ریسسٹ نہیں ہیں, ہم لوگ خود ریسسٹ ہیں, ہم لوگ خود نفرت پیدا کرتے ہیں, ہم لوگ خود جو ہے وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے لاز کی خلاف ورزی ہم خود کرتے ہیں, گاڑیوں کو اس طریقے سے ہم پارک کرتے ہیں, ہم گاڑیوں کو اس طریقے سے تیزی سے چلاتے ہیں, ہم لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا دیکھیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی انکم نہیں تو ہم نے اتنی بڑی گاڑی لے لی ہے, کیا یہ شو مارنے کے لیے, اس کا کیا فائدہ ہے, نجائز حرکتیں ہم خود کرتے ہیں اور اس نجائز حرکتوں کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بدنامی صرف اس لیے कि हमने ये बताना है कि हम हमारे पास पैसा है और हम ताकतवर हैं। देखिए पैसा तो आपके पास आ गया, पैसा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईस्टर्न गेट के लोग भी पैसा कमाते हैं, निशाई भी पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका हाल क्या होता है, उनका हशर क्या होता है, वो आखिर में जेलों में और घर सड़ के उनकी जिंदगी गुजरती है। तो पैसा ही हर चीज नहीं, आपकी जेब में एक रुपया नहीं, एक क्राउन नहीं, लेकिन आपकी इज्जत है, लोग आपको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। और इसी तरीके से जैसे 70s में हम लोग यहाँ पे आए थे और तकरीबन 1990 तक हम लोग जो थे एक मोहब्बत एक एक कुंभा बनकर, हम एक कबीला बनकर इस मुल्क के अंदर रह रहे थे। आज वो कबीला जो है, आज वो कुंभा जो है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर दौलत के अंबार लगा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। आप ये देखें कि शादी ब्याह होते हैं तो उसके अंदर भी अच्छे दोस्तों को, बुरे वक्त के दोस्तों को साथ में, जो बुरे वक्त में आपके काम आ रहे हैं उनको भूलकर आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखे जी हमने अपनी बच्ची या बच्चे की शादी की है, क्या हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते आप किस चीज को इनविटेशन दे रहे हैं, आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, इनको रोकने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए हमारे यंगस्टर्स को छुट्टियों के बजाय, जो हमारे सियासतदान है उनको छुट्टियों के बजाय यहाँ के जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद कराना बहुत ही जरूरी है। आप देखें ये इंडियंस हमारे बाद में आए हैं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त 100 के करीब यहाँ पे सरदार और इंडियन नेशनल यहाँ पे इस मुल्क के अंदर थे, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा थी। अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजूहत क्या है कि वो इस मुल्क के आइन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस मुल्क के आइन को पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम दोगला पासी कर रहे हैं। हमने वो जो पाकिस्तान में और यहाँ पे अपनी इज्जत को, अपने सर के ताज को ऊंचा करने के लिए हम जो भी वायलेशन, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को मैं लता रहा हूं, हम वो वायलेशन कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो राजा साहब इससे जो इंतशार है वो दिन ब दिन,
1: आप वजह फरमा रहे हैं जो इंतशार है वो ज्यादा फैलता जा रहा है। तो जाहिर है जिन्होंने कुर्बानियां दी होती है, जिंदगी का हिस्सा गुजारा होता है, तो हमें आगा नदीम साहब ने भी ज्वाइन किया है तो आगा साहब से भी पूछने की कोशिश करेंगे। चौधरी शौकत साहब जो बिजनेस कम्युनिटी से इनका गहरा तल्लक है और इस पर वो अक्सर बात भी करते रहते हैं, सियासत से भी वो उनका ओढ़ना बिछोना भी है साथ साथ, उनसे भी बात करेंगे। आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सियासत को आपने देखा, आपने फौज को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यूरोप को देखा, दुनिया को देखा। हम लोग मुतालबात बहुत करते हैं, जो प्रैक्टिकली जमहूरी हमारे काम होते हैं वो हम खुद नहीं करते, हम जो है वो गुलामी की तरफ जाते हैं। जी आगा साहब, लगता है आगा साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। चलो शौकत साहब आपको हमारी आवाज आ रही है?
6: जी आगा साहब भी बोल पड़े हैं।
1: आगा साहब आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपको समझ आ गया है?
6: एक्चुअली चूंकि जब बात की कुछ वक्त में फोन में प्रॉब्लम थी तो अभी आप फरमाइए।
1: आगा साहब आपने सियासत में बड़ी कुर्बानियां दी और दुनिया को भी आपने देखा और अपनी जॉब को भी देखा, नौकरी को भी देखा, यहाँ के हालात को बहुत करीब से देखा। तो आगा साहब यहाँ देखा कि जितने भी गैर मुल्की सियासतदान हैं मुतालबात तो बहुत करते हैं लेकिन काम वो करते हैं जो गुलामी वाले हैं।
6: बारा जी वो एक मुहावरा है ना, जो चीज इंसान की फितर में शामिल हो जाए ना उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं आदत तब्दील हो जाती है, नेचर नहीं चेंज होती। तो अब जब जन्म गुट्टी में चीज गुलामी की आ जाए ना तो उसको रफा करना जो ना वो कुछ नामुमकिन सा होता है। गरचे बंदा बड़ी कोशिश भी कर लेना तब भी उसमें जर्म्स ऐसे कायम रहते हैं। तो लिहाजा जो लोग इन चीजों से आदि हो चुके हैं वो तो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जी
1: आगा साहब आपने देखा होगा कि यहाँ जमहूरी मुल्कों में, खासकर मैं डेनमार्क की बात करूंगा, यहाँ तो जमहूरियत से ही सारे काम होते हैं, जो मर्जी कर ले, कानून कायदा जो है वो जमहूरियत से ही बनता है। अगर आपका इत्तेफाक है तो हर चीज में आप तब्दीली ला सकते हैं।
6: ठीक है जी ना। देखिये राजा साहब जहां तक बात है ना कानून की पासदारी, ये यहाँ की, अब हम यहाँ डेनमार्क में आए हुए हैं, डेनमार्क की यहाँ की जो भी कानून है, जो भी हम चीज देख रहे हैं, बहरहाल हमें तो उन चीजों की इतनी समझ नहीं आई जितनी कि आज के नौजवानों को है, क्योंकि वो यही पले बड़े, यही उन्होंने तालीम हासिल की, यहाँ के कानूनों से ज्यादा वाकफियत रखते हैं। हम अभी भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके कि हम इनके तमाम कानूनों को पढ़ सकें, देख सकें। लिहाजा अब ये हमारे नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को लेके आगे चले, क्योंकि यहाँ जो भी अमल होता है उसमें डेमोक्रेटिकली लॉ के मुताबिक चलते हैं। यहाँ कोई फेवरिज्म की बात मेरा नहीं जहन मानता कि कोई चलती हो, या जो कानून बोलता है, जो डेमोक्रेसी के जो रिमूव है, वो ही इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई इक्का दुक्का बीच में ऐसे आ भी जाए तो वो इतना अलफूल नहीं सकता जिस जो कि कानून की डिमांड है। तो लिहाजा ये जो चीजें है ना,

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।